100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, शक्षमवत 1948, तदनुसार 4 जून 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव पुत्र कृष्ण जो पापों और दुखों को दूर करने वाले हैं, परमात्मा है जो आत्मसमर्पण करने वालों के कष्टों का नाश करने वाले हैं, गोविंद को कोटि कोटि प्रणाम है। इसी मंगल कामना के साथ आइए प्रारंभ करें भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि।

इसी मंगल कामना के साथ आइए प्रारंभ करें भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि। आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। पुष्पांजलि का प्रथम पुष्प अर्पित है श्री गणेश के

विकट परिस्थिति में जब आपका विवेक काम ना करे, आपको सही गलत मार्ग चुनने में भ्रम हो, ऐसी स्थिति में करबद्ध हो नाथ से कहिए, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। अर्थात इस अवसर में प्रभु मेरे कल्याण के लिए आप ही सर्वोपरि हैं, कृपा कर इस संकट की घड़ी में हमारे सहायक बने।

प्रातः काल उठिके रघुनाथा मातु पिता गुरु नवाही माथा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल सोकर उठने के बाद सबसे पहले अपनी माता पिता और गुरु के चरणों में सिर नवाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। ये चौपाई हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो जाए, शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे अपने बड़ों के प्रति सदैव आदर और कृतज्ञता।

जब भक्त के मन में ये प्रश्न आए कि भगवान कहाँ है, तब ये चौपाई उसका उत्तर देती है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अर्थात भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, वे केवल प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं।

कुंद इंदु सम दे उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर ने करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।

जैसे नदी अपने जल के लिए, वृक्ष अपने फल के लिए और कभी चिंता नहीं करता, वैसा ही स्वभाव एक सच्चे भक्त का होता है। वह केवल श्रेष्ठ कर्म करता है और अपनी जीवन रूपी नैया उस परम मल्लाह अर्थात ईश्वर को सौंपकर निश्चिंत हो जाता है।

सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मैं इस पूरे संसार को सीता और राम के स्वरूप में अर्थात सिया राम से ओत प्रोत जानते हैं, इसीलिए अपने दोनों हाथ जोड़कर इस संपूर्ण जगत को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर या मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संसार के हर प्राणी का सम्मान करना और सब में प्रभु को देखना ही सबसे बड़ी पूजा होती है।

सिर्फ संतोष मांगिए, क्योंकि जिसके पास संतोष है उसके पास ईश्वर की दी हुई हर छोटी चीज भी अनमोल हो जाती है। परंतु जिसके पास संतोष नहीं वह महलों में रहकर भी उसे सदैव कमी नजर आती है। प्रभु हम सबका कल्याण करें इसी मंगल कामना के साथ मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगो के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य एवं सेवा परिवहन तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा और केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जन कल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जन भागीदारी और जन जागरण का व्यापक

अभियान बने। विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित उत्तर प्रदेश एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी और 15 क्षेत्रीय ज्ञान केंद्रों के बीच कल पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय में MOU हुआ। इस MOU के तहत अगले 5 वर्ष में हजारों युवाओं को हरित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की योजना है। साथ ही सरकारी अधिकारियों और स्थानीय निकायों के लिए नियमित क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए 3,539 पदों के लिए आयोजित

कुल 8,68,531 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग मुख्यालय में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई है। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलान बातार ओपनिंग रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। 4 दिन की प्रतियोगिता में भारत की ओर से पुरुष फ्री स्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धाओं में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह सीरीज 2026 यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज का 3रा चरण है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी। चलते रहे इश्क भी बढ़ जाते
1: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
2: आपके अपने रेनबो की जबानी।
3: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
4: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
5: ये प्रूफ
6: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
0: 100.7 FM रेनबो,
2: धड़कन लखनऊ की।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: शहर आपका, धुन आपकी।

कितना मुश्किल है जिंदगी भर इस अंदाज में सब्र करना, कितना मुश्किल है जिंदगी भर इस अंदाज में सब्र करना, तुम्ही से फासला रखना और तुम्ही से इश्क करना। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आकांक्षा आपके साथ प्रोग्राम सदाबहार गीत में। बस गुनगुनाने कुछ जज्बात, कुछ एहसास और उन गीतों के साथ जो वाकई आपकी यादों का एक बेहतरीन हिस्सा है।

अक्सर जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर कुछ ऐसी बात होती है तो हमें लगता है कि ये जो एहसास है, ये जो फीलिंग्स है, हर किसी को पता होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि कभी कभी हम अपनी खुशी में या फिर क्यों कहें कि अपनी तकलीफ में इतना मशगूल हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हर किसी को एहसास हो जाना चाहिए, पता हो जाना चाहिए कि हमारे दिल में, हमारे ख्यालों में क्या चल रहा है। लेकिन यकीन मानिए, कभी कभी जाहिर कर देना अच्छी बात होती है, क्योंकि सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप खुश हैं या वाकई आपको कोई तकलीफ है। वो कहते हैं ना कि थे ख्वाब एक हमारे भी और तुम्हारे भी, पर अपना खेल दिखाते हैं सितारे भी। ये जिंदगी है, यहाँ इस तरह ही होता है, सभी ने बोझ से लादे हैं कुछ उतारे भी। सवाल ये है कि आपस में हम मिले कैसे, हमेशा साथ तो चलते नहीं दो किनारे भी।

0: चलिया।
1: जी हाँ भाई, आपकी सपनों की रानी का तो नहीं पता, लेकिन आपको बता दें कि आप जुड़ गए हैं हमसे प्रोग्राम सदाबहार गीत में, जिसमें है आकांक्षा आपके साथ। और बेबसी का नाम सुना है आपने, कब ज्यादा बेबस हो जाते हैं हम, ये सोचने की बात है। जब दो चीजें हमारे सामने ऐसी हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तब हम बेबस हो जाते हैं कि हम चुने किसे।

और आज की जिंदगी में ये शब्द बहुत इर्द गिर्द हमारे घूमता है, क्योंकि भाई बातें भी ऐसी होती हैं, चीज़ें भी ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन माफ़ करने की भी गुंजाइश थोड़ी कम सी लगती है, वहाँ पर हम थोड़े से बेबस हो जाते हैं। लेकिन कहीं पर बहुत खूबसूरत एक बात लिखी थी कि जहाँ पर बात ज़रूरी ना हो, रिश्ता ज़रूरी हो, तो वहाँ पर बात को भूल जाइए और रिश्ते को अहमियत दीजिए। जिंदगी को आसान करने के लिए यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपनाना पड़ेगा ही, तभी तो जिंदगी रमैया वस्तामैया हो जाएगी। जी हाँ, एंजॉय करिए प्यारा सा गीत ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हम बात कर रहे थे एहसास और जज्बात की, जिसमें कुछ बातें ऐसी भी कहीं कहीं पर हम जब कंफ्यूज हो जाते हैं, या यूं कहें कि बहुत डाउट्स होते हैं हमारे पास कि क्या करना चाहिए, कहां पर हम सही हैं कहां पर गलत हैं। लेकिन कहीं कहीं जब जिम्मेदारी की बात आती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है, तो जैसा कि वो वक्त था ना 80s का, 70s का, 60s का, उस दौर के वो लोग सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी जिम्मेदारी को ही समझते थे। अपनी जिम्मेदारी करनी है पूरी, अपने काम करने हैं तो करने हैं, अब चाहे तुम्हारा उस काम के प्रति सबब क्या है, क्या रिस्पॉन्स है, उससे उन्हें कुछ कम ही मतलब होता था। क्योंकि कहते हैं ना कि कहीं पर बहुत खूबसूरत चीज लिखी थी कि लक्ष्मण के पास सब कारण थे रुकने के, फिर भी वो वन की ओर चले गए, क्योंकि कुछ रिश्ते तर्क से नहीं, कर्तव्य से निभाए जाते हैं। और सच कहूं तो जिंदगी ऐसे ही खूबसूरत बनती है।

जी हाँ, जिसको आप चाहते हैं और जिसको आप मानते हैं, अगर वही मिले तो बात कुछ अलग होती है। लेकिन इस दुनिया में कार्बन कॉपी जो शब्द है वो बड़ा पॉपुलर है। सुना है आपने इसके बारे में? कहते ठीक है, कोई और ही सही। और देखा जाएगा, बहुत सी क्वालिटीज सिमिलर हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं, तब हम कहते हैं ना कि अवेलेबल है इस दुनिया में कार्बन कॉपीज। लेकिन ये बात सच है कि कॉपीज तो कॉपीज ही होती हैं। असली चीज़, असली रिश्ता, या असली जिस चीज़ को आपने चाहा, जिन क्वालिटीज़ को आपने देखा, कहीं ना कहीं वो मिस हो जाती हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आपकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पिता के प्रेम की जगह कोई नहीं ले सकता, आपके भाई की जगह कोई नहीं ले सकता, कुछ रिश्तों की जगह कोई नहीं ले सकता, उनकी कोई कॉपीज़ नहीं होती। तो जब तक वो आपके पास हैं, उन पर शिद्दत से प्यार लुटाइए, सम्मान करिए और जितना हो सके उतना वक्त बिताइए, क्योंकि कुछ बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं हर वक्त। जब आप अपना पेशेंस भी खो देना, तब भी ये याद रहे कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।

बिल्कुल, वो पहली मुलाकात, वो पहली बात, और कहते ना कि पहला जो तोहफा होगा या फिर उस मुलाकात में कोई ऐसी खास बात, वो सब आपको याद रहती है। और कितना खूबसूरत लिख देते हैं ये गीत, और बखूबी हमारे जज्बात, हमारे एहसास कितनी सुंदरता से हमारे सामने ही रख देते हैं, और जब हम गुनगुनाते हैं तो हमें यही लगता है कि शायद शायद ये हमारी ही बात कर रहे हैं। किसी ने बहुत खूब एक और चीज़ लिखी है कि कभी कभी जब हमारे पास ऐसे रिश्ते होते हैं ना कि जिनको देखकर हमें लगता है कि अभी तो जीना शुरू किया है, तुमको देखकर मुझे जीना आ गया, जैसे इस सॉन्ग में ये लाइन थी, उसी तरह से जब हमारे आसपास कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं तो हम उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी रखते हैं कि जब हम मुसीबत में हों, तकलीफ में हों, तब वो हमें सलाह ना दें बल्कि हमें सुने, हमारी बात को सुने। क्योंकि जिंदगी की कुछ थकानें सिर्फ नींद से नहीं उतरती, जरूरत होती है कि कोई कोई तो हमें संभाल ले, समेट ले और जिंदगी का हर सुकून दे। बस इन्हीं सब एहसासों के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार गीत आकांक्षा के साथ।

7:47 आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार गीत आकांक्षा के साथ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, जब ये गीत हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई डोर है, कोई डोर जो दिखती नहीं है और कुछ रिश्तों के साथ ऐसे जुड़ी है ना कि वो खींचते रहते हैं हमें अपनी ओर। जी हाँ बिल्कुल। एक बात कहते थे पुराने ज़माने के लोग या भी अभी भी बोलते हैं कि खून खून को पुकारता है। वो बात अलग है कि जब अपने की किसी को तकलीफ होती है तो आपका दिल घबराने लगता है, आपको सब कुछ एहसास होता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनमें एक डोर होती है इमोशंस की, फीलिंग्स की, और वो दिखती नहीं है। बस कहीं अगर बात सुनाई दी तो बस यही मन करता है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, बिल्कुल इस गीत की तरह। और बेशक ऐसे रिश्तों के लिए अपने ज़िंदगी में गुंजाइश रखिए। कभी कभी रास्ते बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन मन हमारा वही रह जाता है उन्हीं फीलिंग्स के साथ। तो गुंजाइश ये रहनी चाहिए कि जब वो कभी भटक जाएं या कुछ ऐसा हो जाए तो कभी ये मत कहिए कि जाओ तुम्हें छोड़ दिया। नहीं, एक गुंजाइश रखिए ताकि वो वापसी कर सकें। और असल ज़िंदगी में अगर घर वापसी की बात होती है तो यही होती है कि आप ये मौका रखें अपनों के लिए, उनके लिए जो एक पतली सी डोर से जुड़े हुए हैं आपसे, ताकि वो आपसे जुड़ सकें जैसे आप हमसे जुड़ जाते हैं अपने मेल्स के जरिए। जी हाँ, रोशनी रावत का पहला मेल मुझे मिल गया था 6:10 से। ये हमारे साथ जुड़ी हैं और कहती हैं कि पुष्पांजलि प्रोग्राम सुनने के लिए उठती हैं। थैंक यू सो मच, आपका इतना प्यार। यही डोर है ना जो दिखती है कि आप हमसे कैसे जुड़े हैं। इसी के साथ योगेंद्र कुमार जी और कह रहे हैं कि गर्मी काफ़ी हो रही है और बारिश से राहत तो मिलती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए और मेल करने के लिए। इसी के साथ रामराज जी हमें मेल कर रहे हैं, सदाबहार गीत बहुत अच्छा लगता है और इनका फेवरेट प्रोग्राम है और गाना सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच अपना आशीर्वाद पहुँचाने के लिए। घनश्याम सिंह जी, जी हाँ, थैंक यू सो मच, आपको भी सुप्रभात, हम तो अच्छे हैं और पुष्पांजलि कार्यक्रम अच्छा लगा, सदाबहार गीतों का क्या कहना, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा इनको। और कहते हैं कि अच्छा बहुत ही मीठा बोलती हूँ, इन्होंने शायद अवधि में लिखा है कि जियरा खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच, और बहुत नीक लागत है। अच्छा, हमारी कोशिश ये रहती है कि यहाँ पर हम जो भी प्रेजेंट करें वो आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए। और हाँ, वक्त की भी बात सुननी पड़ेगी, 7:55, और ये वक्त कह रहा है कि प्रोग्राम सदाबहार गीत से आकांक्षा को दीजिए अनुमति। जी हाँ, अभी ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में हम मिलेंगे एक आवाज़ के साथ, एक दोस्त के साथ, और 8:00 आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:15 पे आप सुनेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।

प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग

0: बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी।

0: इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
1: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक

0: विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
3: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। कोड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। कोड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
2: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार।

0: समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। जी हाँ, आकांक्षा है आपके साथ। ये तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन मैंने कहा था आगे वादे के मुताबिक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में एक दोस्त रहता है हमारे साथ, तो ये सुन लेते हैं वो कौन है हमारे साथ।
1: वेरी गुड मॉर्निंग आकांक्षा, और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप आशा करता हूँ, यही आशा यही है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, और जैसे हम लोग यहाँ पे आपके साथ पूरी एनर्जी के साथ आज मिल रहे हैं, उसी एनर्जी के साथ आप अगले दो घंटे हमारा साथ भी देंगे। और जैसा कि हम हर रोज इस प्रोग्राम में बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं, बहुत सारी बातें लेकर आते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे गीत भी लेकर आते हैं आपके लिए, तो आज भी कुछ ऐसा ही हम आपके साथ जरूर

सौंपने वाले हैं बहुत सारी जानकारी भी देंगे और बहुत प्यारे प्यारे गीत भी आपको जरूर सुनाएंगे ये हमारा आपसे वादा है लेकिन आपको देना होगा हमारा भरपूर साथ आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग लखनऊ में

0: आज का मॉर्निंग मंत्र।
1: जी हाँ दोस्तों, 8:22 का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, और आपके दो दोस्त रतन और आकांक्षा आपके साथ हैं, और आपका हमारा ये प्यारा सा इस सुबह में साथ बना हुआ है। और अब समय हो चुका है कि आज के मॉर्निंग मंत्रा को भी आप तक पहुंचा दिया जाए। तो आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कह रहा है आकांक्षा?
2: विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, वो सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक हमारे व्यवहार में दिखती है।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव ये आज का मंत्रा, क्योंकि अगर जब तक विचार हमारे उत्तम नहीं होंगे तब तक वो हमारे व्यवहार में दिखेंगे भी नहीं, और झलक उनकी हमारे व्यवहार में ज़रूर ज़रूर दिखनी चाहिए, तभी ये सतर्क माने जाते हैं। वाकई में दोस्तों बहुत ही अच्छा मॉर्निंग मंत्रा, अगर इसी मॉर्निंग मंत्रा के साथ आज के अपने दिन की शुरुआत की जाए तो वाकई में दिन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो इसी के साथ हमारे साथ यूँ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
1: आठ बज के 30 मिनट, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में रतन और आकांक्षा है आपके साथ। और जी हाँ, दिन को खूबसूरत बनाने के लिए हमने जैसे पॉजिटिव थॉट तो दे दी, लेकिन कभी कभी रतन इस पूरी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत से ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, बहुत से दिन मनाए जाते हैं ताकि आपके ज़िंदगी में एक बदलाव आए, परिवर्तन आए और आप उससे कुछ सीखें।
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो दिन है या दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसीलिए कि एज अ रिमाइंडर ये होते हैं कि हमें याद दिलाने के लिए कि हाँ, हमें अपनी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उससे हटकर भी कुछ करना ज़रूरी है, और जो जिम्मेदारियां उन सारी जिम्मेदारियों से हटकर हैं उन्हें भी हमें निभाना बहुत बहुत ज़रूरी है।
1: आज सुबह मैं आ रही थी तो एक बस के पीछे लिखा था कि आपको पता है कि आपका किरदार इस दुनिया में सबसे अहम है क्योंकि आप इंसान हैं।
2: बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात यह है। और वाकई में अगर इस बात को समझा जाए तो इस दुनिया में जो सबसे अच्छा, समझदार और सबसे सुंदर अगर प्राणी या जीव की बात करें तो वो है सिर्फ और सिर्फ इंसान, जो कि सब कुछ कर सकता है, जिसके पास फीलिंग्स हैं।
1: बिल्कुल,
2: और शायद इसीलिए हमारी जिम्मेदारियां भी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
1: जी हाँ, और इन्हीं फीलिंग्स के कारण, इन्हीं इमोशंस के कारण, चाहे वो बेजुबान हो, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, इंसानियत तो हमें इंसान बनाती है। और अगर हम इन्हीं सब चीज़ों को भूल जाएं और एकदम इससे परे व्यवहार करने लगे, अलग ही नेचर दिखाएं, तो हमें क्या कहा जाएगा? हम इंसान की लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। आज ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज एक खास दिन भी है जिसके बारे में आपको बताएंगे, और आज का मुद्दा भी उस दिन से कोरिलेट करता हुआ है।
2: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। और आज का जो दिन है, हम सभी इस दिन को मना रहे हैं, और ये दिन है आक्रोश के शिकार निर्दोष बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन।
1: बिल्कुल
2: दोस्तों, हर वर्ष चार जून को ये दिवस मनाया जाता है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी स्थापना की थी, जब लेबनान युद्ध में बड़ी संख्या में बच्चों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी थी।
1: जी हाँ, और इसका उद्देश्य दुनिया भर में हिंसा, युद्ध, उत्पीड़न और शोषण के शिकार निर्दोष बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। लेकिन रतन, ये दिन जैसे कि बनाए जाते हैं कि हमें ये याद दिलाएं कि हमारा क्या कर्तव्य, हमारी क्या जिम्मेदारी है और किन चीजों के प्रति हमें अवेयर रहना है।

0: के टाइम पर जिस हिसाब से परिस्थितियां हैं, हम इंसान बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो देते हैं. एग्रेशन का कोई लेवल नहीं है. अगर गुस्सा आया तो हम कुछ भी करेंगे, और ऐसे कई केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं. सोशल मीडिया आप ओपन कर लीजिए, न्यूज़पेपर आप ओपन कर लीजिए, और बच्चों की ही बात तो स्पेशल है ही है. अभी हाल ही में एक केस हुआ जिसमें बच्चे के साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार हुआ, एग्रेशन का वो बच्चा शिकार हो गया. कई ऐसे केसेस दर्ज हैं, दिखने को भी मिलते हैं. तो हम ये पूछते हैं कि क्या वाकई ये हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इंसानों की कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं.
1: जी हाँ दोस्तों, और आज इस दिन में हम सब को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, और हमारे जो बच्चे हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना हम सबका कितना बड़ा जिम्मेदारी है, हम सब की कितनी बड़ी ये सोच और जिम्मेदारी के साथ साथ हमें इस बात को भी आगे बढ़ाना है कि आने वाली पीढ़ी में कि कैसे लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर किया जाए कि बच्चों को इस तरह से पीड़ित ना किया जाए, उनको इस तरह से सताया ना जाए, ना ही उनको इस तरह से किसी भी प्रताड़ना का शिकार बनाया जाए. जिस तरह से अभी आकांक्षा ने आपको बताया कि एक केस अभी ही हाल ही में हुआ जिसमें बड़े लोगों के गुस्से का जो शिकार हुआ वो एक नन्ही सी जान हो गई और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, ताकि उसका कोई दोष नहीं था, उसको भी जीने का हक था, पूरा हक था, लेकिन हुआ ये कि उसके साथ ऐसा दुर्घटना घटित हुई कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी. तो ये जो एग्रेशन है ये बहुत खतरनाक है, और उसका जो उसके जो शिकार होते हैं वो ऐसे ही नन्ही जान हो जाती हैं कभी कभी.
0: और रतन, आज का मुद्दा भी कुछ हम ऐसे ही लेना चाहते हैं और अपने लिसनर्स से भी इस पर राय मांगना चाहते हैं. तो आज का मुद्दा,
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, मुद्दा आज का पूरे समाज का.
0: जी हाँ, आज का मुद्दा आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि संवेदनहीन समाज क्या कारण है इसके, और आपके पास इसके उपाय क्या है. हमें लिख भेजिए.
1: हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com. इस मेल आईडी के माध्यम से आज के मुद्दे पर अपने विचार आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और अगर कुछ और भी कहना चाहते हैं तो ज़रूर हम तक अपने विचार साझा कर सकते हैं. हमें आपकी मेल्स का इंतज़ार रहेगा. आप हमारे साथ इसी प्यार इसी मोहब्बत के साथ जुड़े रहिए, और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमारा साथ यूँ ही निभाते रहिए. सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

0: जी हाँ बिल्कुल दीवाने बनिए और बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों के साथ रतन फुल पैकेज लाए एंटरटेनमेंट का
1: जी दोस्तों, और जब आपसे मिलने का मौका आता है तो वाकई में जो एक्साइटमेंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। हम दिन भर किसी से भी मिले, कहीं भी मिले, बातचीत करें किसी से भी, अगर कहीं भी मिलते हैं, लेकिन जो एक्साइटमेंट यहाँ आकर आपसे बातचीत करने का होता है वो शायद कहीं और नहीं मिल सकता।
0: बिल्कुल रतन, और जब पता है आपको, जब कहते हैं ना मंजिल और भी खूबसूरत लगती है जब रास्ते बड़े सुंदर हो, तो रास्ते जब आप आ रहे होंगे अगर वो रास्ते एकदम चमचमाते हुए भी बता रहे थे ना, वो दो पहिया वाली कौन सी वो गाड़ी होती
1: है? जी हाँ दोस्तों,
0: जिसमें ब्रश लगे होते हैं और वो रोड को क्लीन कर रही थी सुबह।
1: बिल्कुल सुबह सुबह, हाँ मैं आया तो देखा कि रास्ते में जब ये विधानसभा की तरफ से ही मैं आ रहा था तो देखा कि वो गाड़ी जिसमें नीचे वो लगे होते हैं ब्रशेस लगे होते हैं और उसमें से पानी निकलता रहता है और वो रोड को बिल्कुल साफ क्लियर करते हुए निकलते, तो देख ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कि सफाई अभियान पूरी भरपूर रूप से चल रहा है, प्रगति पर है और जितने भी लोग हैं इसमें पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं। और दोस्तों सहयोग देने की बात अगर करें तो वाकई में आज जब हम 4 जून है इस डेट पे यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं और कल है 5 जून, यानी कि कल पूरा विश्व पर्यावरण दिवस भी सेलिब्रेट करने वाला और इसको लेकर नगर निगम द्वारा बहुत ज्यादा तैयारियां की गई हैं।
0: जी हाँ, आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को नगर निगम की ओर से कई आयोजन किए जाएंगे और सभी 110 वार्डों में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा, जैसे कि पौधारोपण भी किया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि स्वच्छ और हरित लखनऊ बनाने का संकल्प सरकार ने लिया है, तो इसमें आपका जो भागीदारी है वो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि रतन सफाई अभियान तो चल रहा है लेकिन पीछे से जो आम जनता का अभियान है, गंदगी फैला देना या फिर ध्यान नहीं देना, वृक्ष लगे हैं, पौधे लगे हैं, सबसे पहले तो उनको वहाँ से छेड़े नहीं, उठाकर नहीं ले जाएं अपने घरों में। दूसरी चीज़, अगर आप वहाँ पे पानी डाल सकते हैं, ऐसा कोई आपको दिख रही है कोई लेन की पौधे लगे हैं पर वो सूख रहे हैं, तो उनकी आप हेल्प कर सकते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, जब सरकार इतना सब कुछ हम सब के लिए सोचती है, करती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम भी उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं। जैसा कि अभी आकांक्षा ने कहा कि आप गमले लगे हुए देखते हैं, तो कभी कभी कई ऐसे केसेस हुए, मैंने भी देखा कि लोग आए

0: कार से आ रहे हैं और गमले उठाकर ले जा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना किया करें, क्योंकि ये चीज, अगर कोई चीज खूबसूरत लग रही है, अच्छी लग रही है, हम रास्ते में चल रहे हैं और उसको देख के अच्छी फीलिंग आ रही, तो वाकई में जैसी वो फीलिंग हमें दे रहा है वैसी सबको वो फीलिंग देगा। तो सफाई रखना और अपने शहर को खूबसूरत बनाना, ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल। और आप अगर इतनी सी भी बात से कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, तो आपको एक और मैं बात बता देती हूँ कि कुछ ऐसी लेन्स हैं जहाँ पे ये हरित लेन बनाई गई है, ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, यहाँ पर प्रॉपर कैमरे लगे हुए हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो आपकी बाकायदा फोटो खींच सकती है। तो भाई देखिए, आपका सम्मान आपके हाथों में है, तो लखनऊ को, अपने शहर को, इवन अपने देश को सुंदर भी रहने दीजिए और अपना भी सम्मान।
0: और ये भी बताना चाहेंगे दोस्तों कि लगभग 110 जो वार्ड हैं लखनऊ भर के, उसमें सभी सार्वजनिक जो स्थल हैं, पार्क हैं, प्रमुख मार्ग हैं, बाजार हैं, सरकारी परिसर हैं और जितने भी अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं, वहाँ सब पर सफाई अभियान कल चलाया जाएगा। और पार्कों और सड़कों के किनारे उपलब्ध स्थानों पर भी पौधे लगाए जाएंगे, जितने भी मतलब आपके ऐसे स्थानीय प्रमुख मार्ग हैं वहाँ पर भी पौधरोपण किया जाएगा। गोमती नदी के तटों पर भी स्वच्छता अभियान कल विशेष रूप से चलाया जाने वाला है और अभियान के प्रभावी संचालन के लिए गोमती नदी के तटवर्ती क्षेत्र को 8 क्लस्टरों में बांटा गया है। सुबह 6 बजे से, यानी कल सुबह 6 बजे, गोमती तट के निर्धारित क्लस्टरों में एक साथ ये अभियान शुरू होने वाला है। तो आप भी इसमें जाकर अगर आप अपना सहयोग देना चाहते हैं, अपने शहर को बिल्कुल खूबसूरत और बिल्कुल साफ बनाना चाहते हैं, बिल्कुल स्वच्छ बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर इसमें अपना सहयोग दीजिए और कल के इस दिन को पूरी तरह से भरपूर रूप से सेलिब्रेट कीजिए।
1: इसी के साथ रतन भाई, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, कुछ लोगों के लिए ट्रेन का क्या टाइम है, क्या फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा मिल रही हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दें, देहरादून जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव यानी कि स्टॉपेज बुधवार से शाहजहांपुर स्टेशन पर भी हो गया है और ये स्टॉपेज आपको 2 मिनट का मिलेगा। ट्रेन 22545 लखनऊ जंक्शन देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 7:34 बजे शाहजहांपुर पहुंचेगी और इसी तरह वापसी में 22546 देहरादून लखनऊ जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस शाहजहांपुर रात 8:04 पर पहुंचेगी। तो अगर आपका ये रूट है या फिर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जहां पे आपको स्टॉपेज चाहिए, तो ये खबर आपके फायदेमंद हो सकती है।
0: तो बस इन्हीं तरह ताज़ा तरीन खबरों के साथ और इन्हीं ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार यूं ही जुड़े रहिए और आज के मुद्दे पर अपने विचार हमें भेजना मत भूलिएगा। हमारी मेल आईडी fmakashwani@gmail.com। 8:45 का समय, साथ में 32, 33 और 34 सेकेंड्स प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, साथ में आपके दो प्यारे से दोस्त।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: जी हाँ, 8:50 और कुछ दिन बहुत खास होते हैं और कुछ लोग भी हमारे जीवन में बहुत खास होते हैं। इन्हीं दिन को खास बनाने के लिए कुछ आयोजन भी रतन कराए जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन होने वाला है जो कि 7 जून को किया जा रहा है। चारा साज इस शो का नाम है, इस आयोजन का नाम है और सीजन 2 है इसका। आपको बता दें कि ये आयोजन बांदीवन साहस स्पोर्ट्स के द्वारा कराया जा रहा है भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में। बहुत कुछ खास है इसमें दिव्यांग जनों के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि सुनने में भी आ रहा है कि भाई इसमें जो चिकित्सक हैं, खासकर आप उनको जानते होंगे कि वो हमारे लिए हमारी हेल्थ का ध्यान रखते हैं कभी हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे खास बात है कि यहाँ पे चिकित्सक भी अपनी प्रस्तुति देंगे। तो आइए, इस कार्यक्रम के क्या खास बिंदु हैं उनके बारे में जानने के लिए बात करते हैं हम अध्यक्ष बांधवी फाउंडेशन की डॉक्टर सुधा वाजपेयी जी से। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार।
2: जी जी नमस्कार।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम रेनबो में प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में।
2: जी
3: मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम जानना चाहेंगे चारा साज सीजन 2 क्या है।
2: ये चारा साज एक संगीत का कार्यक्रम जो हम लोग कराने जा रहे हैं, लाइव म्यूजिक शो है। चारा साज का मतलब ही होता है कि हीलर, जो आपको हील करे। तो इसका कंसेप्ट बेसिकली ये था कि मैं दिव्यांगों के लिए 2010 से लगातार काम कर रही हूँ, जिसमें उनका स्पोर्ट्स में कराती थी, लेकिन उसके साथ साथ जब वहां पर बच्चे आते थे और कल्चरल में जैसे गाने में नृत्य में बहुत अच्छे बच्चे हैं कई और दिव्यांग हैं, तो वो चाहते थे कि उनको एक कहीं बड़ा मंच मिले कि वो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकें। तो उनके लिए कभी इस तरीके के बड़े कार्यक्रम नहीं होते थे, उनके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही होते थे। तो मुझे लगा कि जब बच्चे ये सब चाहते हैं तो हम उनको एक ऐसा बड़ा मंच दें जैसे हम सामान्य अपने कलाकारों को देते हैं, वैसे ही हमारे दिव्यांग कलाकार वो बहुत प्रतिभा संपन्न हैं, तो उनको एक मंच

0: देने के लिए मैंने प्रयास किया और ये बांधवी फाउंडेशन, साहस स्पोर्ट्स और भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ मिल करके हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसमें हम इन दिव्यांग कलाकारों का सम्मान भी करेंगे और इसके साथ साथ ये वहां पर बहुत ही सुंदर अपने नगमे गीत भी प्रस्तुत करेंगे। और
1: जी
0: चूंकि ये हमारे दिव्यांग आर्टिस्ट हैं, तो एक हमें लगा कि इनको हमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे भी एक कनेक्ट करना चाहिए कि जिससे हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना पाए, एक
1: बिल्कुल
0: संवेदनशील समाज बना पाए। तो उनसे भी हमने बातचीत की, वो सब भी तैयार हो गए और शहर के इसमें बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर्स जैसे सिविल हॉस्पिटल के पूर्व निदेशक हैं डॉक्टर आनंद ओझा जी, डॉक्टर राजेश सिंह जी, डॉक्टर आशीष माथुर पीडियाट्रिशियन हैं बहुत फेमस लखनऊ में, डॉक्टर निधि निरंजन मैम हैं, डॉक्टर रेणु जैन गायनकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर आलोक दीक्षित हैं, डॉक्टर समर हैं, डॉक्टर सचिन ओझा जी हैं। तो ये सारे डॉक्टर्स मिल करके उन दिव्यांगों को प्रमोट भी करेंगे और वो भी अपने गीतों से हम सबको मतलब आह्लादित करेंगे।
1: क्या बात
0: तो
1: है
0: ये राय उमानाथ बली ऑडिटोरियम में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं
1: जी
0: 7 जून को शाम को 5 बजे।
1: जी और मैम, क्या इसमें आम जनता के लिए क्या कुछ एंट्री या कुछ ऐसा है?
0: नहीं, कोई भी इसमें आ सकता है, मतलब जो प्रतिभागी हैं वो तो हमारे दिव्यांग कलाकार और डॉक्टर्स हैं, लेकिन उसके साथ इसको सुनने के लिए, उनको हौसला अफजाई करने के लिए कोई भी आ सकता है, कोई भी शहर का दर्शक। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए,
1: बिल्कुल
0: जिससे हमारी सोसाइटी जो है वो भी उतनी ही संवेदनशील बन सके और हम इन कलाकारों को प्रोफेशनली भी एक मंच दे आगे चल के, मात्र
1: बिल्कुल
0: इनके साथ सहानुभूति नहीं रखें बल्कि इनको भी एक सेल्फ सस्टेनेबल बनाए हम।
1: जी मैम, बहुत अच्छा ये आपका प्रयास। और वाकई में इस वक्त जो बहुत सारे ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं और अभी आप तक या फिर इस संस्था से उनका कनेक्शन नहीं हो पाया या वो नहीं जुड़ पाए, और आज के इस बातचीत को सुनने के बाद वो ज़रूर इस बात से प्रेरित भी होंगे और ज़रूर आपसे संपर्क भी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा बस आपसे यही कहना कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप ज़रूर उनका भी सहयोग करें। और साथ में आपका ये जो शो है वाकई में बहुत चर्चित है और बहुत प्रेरणादायक भी है उन सब के लिए जो कि समाज में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं।
0: मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से कि जो अन्य कलाकार भी इस तरह के जुड़ना
1: जी
0: चाहते हैं हमसे, तो वो
1: जी
0: भी जरूर हमसे संपर्क करें। मैं अपना कांटेक्ट नंबर बता देती हूँ,
1: जी
0: 9415835522।
1: जी
0: तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, वो सभी कलाकार, हमारे दिव्यांग कलाकार हमसे संपर्क करें और हम उनको एक बड़ा मंच प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
1: मैम,
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: मैम,
1: बहुत शुभकामनाएं आपके इस कार्यक्रम के लिए, और हम आशा करते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल भी होंगे और इस शो को, इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी अच्छी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत शुक्रिया।
2: तो दोस्तों, जैसा कि भाई बहुत से ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज में एक नया आदर्श और नई चीज़ें जोड़ती हैं, चार साज भी कुछ ऐसा ही है जहाँ पे दिव्यांगजन और चिकित्सकों का एक अनूठा संगम होगा। तो 7 जून को डेट मत भूलिएगा। इसके साथ ही जो लोग अभी भी इस आयोजन से, इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाए हैं, जैसा कि मैम ने बताया, डॉक्टर सुधा वाजपेयी जी ने बताया कि आप किस प्रकार से इनसे जुड़ सकते हैं, और इन सभी डिटेल्स के लिए आप उन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अपनी।
1: और अगर कांटेक्ट नहीं कर सकते तो आप कल के कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होइए। ये राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह कैसरबाग लखनऊ में आयोजित हो रहा है, तो आप कल के दिन इसमें ज़रूर शामिल होइए। बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ पहुँचने पर ज़रूर मिलेगी। आप हमारे साथ यूँ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: और चार सांस की जानकारी देने के लिए रतन हमारे साथ थी डॉक्टर सुधा वाजपेयी जी, जो कि अध्यक्ष हैं बांधवी फाउंडेशन की। तो बस ऐसी बहुत खूबसूरत अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने रहिए ऑनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

तो भाई गुड मॉर्निंग लखनऊ का पहला घंटा हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं, अगले घंटे आपसे मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, प्रातः के 9 बज चुके हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। दक्षिणी दिल्ली जैसे पॉश इलाके में कल सुबह होटल में आग लगने से 11 विदेशी नागरिक समेत 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग झुलस गए। इस खबर को आज सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने अपनी हेडलाइन बनाई है। दैनिक जागरण और वॉइस ऑफ लखनऊ ने लिखा है, दिल्ली के होटल में आग, 21 की मौत। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, लापरवाही का लाक्षाग्रह, दिल्ली में के होटल में आग, 21 की मौत, एक ही रास्ता और छत भी बंद थी। वहीं अमृत विचार ने लिखा है, दिल्ली में धधका 6 मंजिला होटल, 21 जिंदा जले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 31 मार्च 2026 तक जिला पंचायत के पास मानचित्रों के विकास प्राधिकरण नियमित करेंगे। नवभारत टाइम्स ने इसे सुर्खियों में शामिल करते हुए लिखा, जिला पंचायत के पास नक्शा विकास प्राधिकरण में भी वैध। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर से 2 लाख पुराने ट्रक बस को बाहर करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले और कर्नाटक में शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने को भी अखबार ने प्रमुखता दी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट देखने को मिली है। बुधवार को टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निष्कासित ऋतुव्रत बनर्जी को नेता मानते हुए विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी है। हिंदुस्तान अखबार ने इसे अपनी हेडलाइन बनाते हुए लिखा है कि बंगाल में टीएमसी टूटी, 58 विधायकों ने बनाया नया गुट। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में टीजीटी परीक्षा में 11 परीक्षार्थियों के पकड़े जाने और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा पंचायत चुनाव के संबंध में राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करने के आदेश को भी सुर्खियों में शामिल किया गया है। ट्रंप प्रशासन ने 60 देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर नए अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने बताया कि भारत, चीन, जापान सहित कई देशों पर 12.5% अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव है। अमर उजाला ने प्रमुख खबरों के साथ इसे के साथ

इसे सुर्खियों में शामिल किया है और लिखा है भारत समेत 60 देशों पर अमेरिका लगाएगा 12.5% टैरिफ। अमेरिका और चीन के बीच अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद बीती रात फिर सैन्य टकराव देखने को मिला। स्वतंत्र भारत ने इसे प्रमुखता देते हुए लिखा ईरान का कुवैत बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित होगा, आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
4: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
5: जी हाँ, वेलकम बैक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में, दो दोस्त हैं आपके साथ, रतन और आकांक्षा।
6: आकांक्षा आप मुस्कुरा क्यों रही हैं?
5: दिन क्योंकि देखिए आप जैसे फील, जैसे एक्सप्रेशंस रखते हैं वैसी बातें आपके दिल से निकलती हैं।
6: और हमारा तो मानना है कि जब हमारी मुस्कुराहट इसलिए आती है और हमारे चेहरे पे खुशी इसलिए आती है क्योंकि जब हमारे आसपास का माहौल बहुत अच्छा होता है, हमारे आसपास के लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो हमारे मुस्कुराहट और चेहरे पे एक खुशी और एक कहें तो चमक जिसको कहते हैं।
5: मुझे लगा आपको चाय मिल गई।
6: चाय नहीं मिल गई, हमें आपका साथ मिला है और हमारे आसपास वाकई में बहुत अच्छे लोग हैं जिस कारण से ऐसा होता है। और दोस्तों आप भी फील करके जरूर देखिए, जब आपके आसपास बहुत अच्छे पॉजिटिविटी से भरे हुए लोग रहेंगे तो वाकई में आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा और साथ में आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहेगी और आप पॉजिटिविटी के साथ पूरी तरह से भरपूर रहेंगे।
5: वेल, रतन ने तो पॉजिटिविटी का डोज आपको दे दिया है। बहरहाल बात है प्रोग्राम को फिर से अपनी, कहते हैं ना कि अपने उस पर लेके जाना है कि भाई आपको एंटरटेन करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। और जिन लोगों की अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुई उनसे कहते हैं भाई आप बेखबर क्यों हैं, क्योंकि एक घंटा वाइंड अप हो चुका है, तो इस घंटे को आप मिस ना करिए, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ।

0: जी हाँ, अगर आप मुद्दे से बेखबर हैं तो आपको बता दें, आज का मुद्दा हमने पूछा था कि संवेदनहीन होते हुए लोग, इसका क्या कारण है और आपके पास इसका क्या उपाय है। फीलिंग्स कम हो गई, इमोशंस कम हो गए, अपने अग्रेशन पे कंट्रोल नहीं रहता, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, कहीं ना कहीं हम परिस्थितियों और लोगों के प्रति संवेदनहीन होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है और आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है।
1: जी हाँ दोस्तों, आप इस मुद्दे पर आज अपने विचार, अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी मेल आईडी fmakashwani@gmail.com के माध्यम से। और 9:10 का समय हो चुका है, साथ में 16:17:18 और हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह सर, जो कि हमें देंगे ट्रैफिक की ताज़ा तरीन बिल्कुल अपडेट। चलिए करते हैं उनका स्वागत। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज वर्तमान में लखनऊ शहर में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है। पीक आवर्स का समय है सर, पीक आवर्स में थोड़ा ट्रैफिक लोड हमारा जो कमता चिन्हट और हमारा जो समिट बिल्डिंग के पास में रैंप है विजयपुर अंडर पास के पास, वहाँ थोड़ा सा प्रेशर रहता है। और मड़ियाओं इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ कानपुर मार्ग की बात करें तो स्कूटर इंडिया और 12 बिरवा चौराहा अवध चौराहा के पास में ट्रैफिक प्रेशर रहता है, और लखनऊ रायबरेली मार्ग पे उतरेटिया पीजीआई की तरफ। तो ऐसे में अगर आप पीक आवर्स में घर से निकलना बहुत जरूरी है तभी निकले, अन्यथा जो है आप पीक आवर्स के बाद जो है डिले करें थोड़ा सा, अथवा अगर आप जो है निकल रहे हैं तो थोड़ा समय से निकले ताकि आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। वैसे लखनऊ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रह करके सभी जगह सामान्य यातायात बनाए हुए हैं और हम प्रतिबद्ध हैं सुगम यातायात हेतु। आज सर 56 केंद्रों पे लखनऊ में परीक्षा चल रही है, टीजीटी की परीक्षा जो कि दो पालियों में है, एक 9:30 से लेकर 11:30 तक तथा दूसरा सायंकाल को 2:30 से 4:30 तक। तो ऐसे में हमारा जो परीक्षार्थी आते हैं वो लगभग हमारे बस अड्डों का और ट्रेन का ज्यादा यूज करते हैं, तो जो हमारे प्रमुख बस अड्डे हैं जैसे चारबाग, आलमबाग, कैसरबाग और अवध बस अड्डे, ये जो है प्रमुख जो है भीड़ के क्षेत्र रहेंगे और इस समय। और अगर आपको अपने गंतव्य पर जाना है तो ऐसे में ये जो समय है इसको थोड़ा सा अवॉइड करें ताकि जो है आप अपने गंतव्य तक समय से पहुंच सके। फिलहाल हमने बस अड्डों पर और जहां भी स्टेशन है रेलवे स्टेशन वहां पर ट्रैफिक पुलिस सिविल पुलिस की ड्यूटी लगा रखी है सर। जैसा कि आप सभी को विदित है गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम जब भी राइड करें तो जरूर प्री राइड चेक करें, साथ ही रोड खाली रहता है तो बहुत से हमारे बाइकर्स हैं जो स्पीड का जो है ज्यादा वो करते हैं कि स्पीड में अपनी बाइक चलाते हैं। तो सर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि स्पीड हमेशा जो है रोड पर ये हमें सड़क दुर्घटनाओं के लिए दावत देती है, तो ऐसे में जो है स्पीड में ना रहें। और स्पीड यदि आप बनाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है आपका, हमारे जो है रोड पर कैमरे लगे हैं उससे भी हम चालान कर रहे हैं, परंतु

0: सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपकी जिंदगी सेफ रहना और सुरक्षित तरीके से आप अपने गंतव्य तक पहुंचना, और साथ ही आपके जीवन के साथ साथ जो रोड पर इनोसेंट व्यक्ति चल रहा है उसकी भी जीवन की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो कृपया आप जो है यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और एंजॉय के साथ मिलते रहें। 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: क्या बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
0: धन्यवाद सर।
1: दोस्तों 9:13 का समय और विकास सिंह सर ने तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दी है कि आप बिल्कुल रोड पर जब चलिए तो अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान का भी विशेष ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए करना क्या होगा, आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना होगा।
2: बिल्कुल, ट्रैफिक रूल्स का आप पालन करिए, और साथ ही साथ अपनी जो कहते हैं ना कि हमारा प्रोग्राम अभी लोग सुन रहे हैं और उन्होंने बहुत मेल्स भेजे हैं कि भैया मुद्दा एक बार और रिपीट कर देते हैं, तो मुद्दा आपको बता देते हैं कि संवेदनहीनता जो आजकल बढ़ गई है लोगों में और रियलाइज नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं होता, तो संवेदनहीन होता समाज, और इसके क्या कारण, इसका क्या उपाय है, ये आपको हमें लिख भेजना है fmakashwani@gmail.com पर।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: 9:19 का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, और आपके दो दोस्त आकांक्षा और रतन आपके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज के मुद्दे पर मेल्स भी हमारे पास आ चुके हैं, चूंकि आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात भी कर रहे हैं, चूंकि आज हम सभी मना रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो ये जो दिन है बहुत चीज़ों के लिए हमें प्रेरित भी करता है, जागरूक भी करता है कि हमें अपने एग्रेशन को किस तरह से संभाल कर रखना चाहिए, किस तरह से हमें अपने एग्रेसिव मोड पे आने से अपने आप को बचाना चाहिए। और इसमें सबसे जो ज़्यादा शिकार बनते हैं वो बच्चे बनते हैं, महिलाएं बनती हैं। तो समाज को क्या हमें ऐसा अपना रूप दिखाना है, या फिर हमें समाज को इस ओर ले जाना है, इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं, और इन सब बातों से समाज को कैसे साफ सुथरा किया जा सकता है, समाज को कैसे इन सब बातों से दूर किया जा सकता है, आज यही हम आपसे जानना चाहते हैं। और हमारे पास बहुत सारी मेल्स भी आई हैं आकांक्षा
1: जी।
0: अगली मेल जो पहली जो मेल हमारे पास आई है इस प्रोग्राम की, वो हम ले रहे हैं अभय पांडे जी की। मैं अभय किंतूर बाराबंकी से, इनका ये मेल हम तक पहुंचा है और कह रहे हैं, मैं रेडियो चैनल का नियमित श्रोता हूं। आपके शो न केवल हमारा मनोरंजन करते हैं बल्कि समाज के अहम मुद्दों पर सोचने के लिए भी मजबूर करते हैं। आज मैं एक ऐसे ही गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, और वाकई में संवेदनहीनता जो आज हमने टॉपिक लिया है उसी पर ये अपनी बात हम तक पहुँचा रहे हैं कि संवेदनहीन होता समाज। इनका कहना कि अक्सर हम देखते हैं कि किसी दुर्घटना के समय लोग पीड़ित की मदद करने के बजाय अपने फ़ोन से वीडियो बनाने में व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा बुज़ुर्गों का अकेलापन और आधुनिक जीवन की भागदौड़ में आपसी जुड़ाव कम होना भी एक चिंताजनक विषय बन गया है। बिल्कुल सही बात है, और इस सामाजिक असंवेदनशीलता के पीछे कई मुख्य कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण डिजिटल अकेलापन। वाकई में दोस्तों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और इन्होंने ध्यान हमारा आकर्षित किया, और यही हम आपका ध्यान, इसी लिए आपका ध्यान भी हम उसी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम समाज को किस रूप में आगे बढ़ाएँ, और अपनी जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको हम क्या दें।
1: इसी के साथ रोशनी रावत का भी हमारे पास मेल आया है। गुड मॉर्निंग आपको भी रोशनी जी, और प्रोग्राम सुनने के लिए, तारीफ करने के लिए धन्यवाद। और ये हमें जिला उन्नाव से मेल कर रही हैं, चंडीगढ़ से ये प्रोग्राम सुन रही हैं। मुद्दे की बात पर लिखती हैं, समाज और रिश्तों में लगातार कम होती संवेदनाएं गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चिंता है। इसके जो कारण है, तनावपूर्ण जीवन शैली है, डिजिटल उपकरण, हम बहुत ज़्यादा फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, और कह रहे व्यक्तिवाद का बढ़ना शामिल है। थैंक यू सो मच। और एक और रिक्वेस्ट रतन, मैं लोगों से भी करना चाहूँगी, अगर आप मेल कर रहे हैं, हम जो भी मुद्दा पूछ रहे हैं, आप थोड़ी सी कोशिश करिए कि अपने शब्दों को लाइए, अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए कि आपको क्या लगता है। देखिए, हमें ऑनलाइन तो सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, हम सर्च करेंगे हमें सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, वो चीज़ें सबको पता भी हैं, तो यहाँ पर मुद्दा और भी खूबसूरत हो जाएगा, ये संवाद और भी खूबसूरत हो जाएगा।
0: दोस्तों, ऑनलाइन जो चीज़ नहीं मिलेगी वो नहीं मिलेगी हमें आपकी सोच,
1: बिल्कुल
0: आपका पर्सनल अनुभव, वो ऑनलाइन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका पर्सनल अनुभव है वो आप हम तक शेयर कीजिए। आपने कभी क्या कुछ ऐसा फेस किया है, या आपने किसी को ऐसा करते हुए देखा है, तो आपके मन में क्या आया और आपने उसको रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए, वो आप हमें बताइए। शिवेंद्र गुप्ता जी की मेल हम तक पहुँची है, कह रहे हैं, तथाकथित बढ़ती हुई भौतिकता ने लोगों के अंदर अनावश्यक घमंड भर दिया है, जिससे उनकी सहनशीलता कम होती जा रही है। जीवन में अनावश्यक चीज़ों का अभाव बहुत ज़रूरी है, सीमित आवश्यकताओं के साथ जीवन में संवेदनशीलता आती है। ये बात आपने सही लिखी कि सीमित अगर हम अपने जीवन को और अपनी आकांक्षाओं को रखते हैं, तो वाकई में हमारा जो जीवन है वो बहुत सिंपल और सादे रूप से आगे बढ़ता रहता है।
1: इसी के साथ महेंद्र दीपन जी का हमारे पास मेल आया है, गुड मॉर्निंग आपको भी, और कह रहे हैं कि आज के विषय पर छोटी सी राय है कि संवेदनशील समाज वह नहीं जो सिर्फ कानून के दायरे में चलता है, बल्कि वह

0: जहां इंसान के दिल में दूसरों के लिए जगह हो। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम एक दूसरे से जुड़े तो बहुत रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हमें समझने की जरूरत है, इट इज सो प्राइवेट दैट पीपल हैव नथिंग लेफ्ट बट टू गेस। लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि जब किसी को मदद की जरूरत हो तो हम सबसे पहले वहां मौजूद रहें। मेरा मानना है समाज तब संवेदनशीलता की ओर आगे बढ़ेगा जब हम दूसरों की सफलता में जलने के बजाय खुश होना सीखेंगे और किसी की परेशानी को मानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान से आप हमें मेल कर रहे हैं, जिला नागौर से।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वाकई में दोस्तों बहुत जिम्मेदारी की ये बातें हैं और हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा होता है हमें उसका विरोध ज़रूर करना चाहिए। मूक दर्शक बनके या फिर उसका वीडियो बना लेने से हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है, हमें उन सब चीज़ों को सुधारना भी होगा, आगे बढ़कर आना होगा ताकि हम समाज के लिए एक प्रेरणादायक एक हम एग्जाम्पल सेट कर सकें कि हाँ जब तक हम आगे बढ़ के किसी चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे या फिर किसी की मदद नहीं करेंगे तब तक कोई और भी आगे ऐसे नहीं आएगा। इसलिए किसी के कहने का इंतज़ार मत कीजिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मतलब के आप अगर दूसरों की मदद करते हैं तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा कहें तो प्रेरणादायक एग्जाम्पल तो होगा ही, साथ में एक बहुत बड़ी मदद होगी उसके लिए जो जिसको ज़रूरत है आपकी मदद की।
0: बिल्कुल, तो ऐसे ही अपने मेल समय भेजिए। मुद्दा है हमारा आज का, संवेदनहीन होता समाज, क्या रीजंस हैं और आपके पास क्या सॉल्यूशन है इसका। हमें लिख भेजिए अपने एक्सपीरियंसेस fmakashwani@gmail.com पर।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: रतन, गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है और कुछ लोग ये गुंजाइश या फिर उम्मीद कर रहे हैं कि भाई साहब कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी बौछारें जब आंधी हवा चली थी ना, थोड़ा अच्छा लगा था लोगों को कि बारिश हो गई, थोड़ी राहत मिली। क्या वो राहत की गुंजाइश आज है? तो इसको जानने के लिए हम चलते हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानी जी के पास और जानते हैं मौसम का हाल।
4: वेरी गुड मॉर्निंग सर।
5: गुड मॉर्निंग।
4: तो सर, आज लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों का किस तरह का मौसम रहने वाला है, प्लीज बताइए।
5: इसके मौसम की बात करें तो आज मौसम साफ रहेगा, हालांकि दोपहर के बाद थोड़ा बादलों की आवाजाही जा सकती है, और लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो थोड़ा गर्मी का सबब बने रहेगा दोपहर में। और ये सिलसिला अगर हम कहें तो कल और परसों जैसे कुछ पश्चिमी शुभ सक्रिय हो रहा है, तो कल और परसों थोड़ा सा राहत की उम्मीद लग रही है। थोड़ा सा तापमान में गिरावट के साथ कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी का असर कल परसों संभावना है।
4: क्या बात सर।
5: उसके बाद फिर साफ रहने की संभावना है
4: जी, यानी थोड़ी सी राहत भी मिलेगी बीच में।
5: राहत मिलेगी लेकिन उतार चढ़ाव वाला मौसम बरकरार रहेगा।
4: कुल मिलाकर सर, अगर कहें तो मतलब थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा मौसम सुहावना, इस तरह का मौसम रहने वाला है।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तीन चार दिन थोड़ा राहत है, उसके बाद फिर
4: जी
5: तापमान साफ रहने की
4: संभावना। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
5: धन्यवाद।
4: दोस्तों, दानिश सर ने तो बता दिया कि बीच बीच में थोड़ा सा मौसम चेंज भी होगा, सुहावना भी होगा, बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो जब बूंदाबांदी हो तो पूरी तरह से आनंद लीजिए।
3: तो भैया देखिए, कल है विश्व पर्यावरण दिवस भी, तो आप अच्छे से निकल के अगर जो सफाई आयोजन चल रहे हैं उनमें ध्यान दे सकते हैं, आयोजन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। साथ ही साथ आप कह रहे हैं जैसे हरित करने का भी एक लक्ष्य बनाया गया है कि प्लांट्स लगाए जाएंगे कल बहुत ज्यादा, तो बड़ी आसानी होगी आपको कि आप इन सभी अभियान में आयोजन में शामिल हो सकते हैं।
4: और दोस्तों, आप संकल्प ले सकते हैं कि हमें जरूर एक पौधा लगाना है। इस संकल्प के साथ अगर आप अपने दिन की कल के दिन की शुरुआत करते हैं तो वाकई में आपका ये दिन तो खूबसूरत होगा ही, साथ में आपका पूरा साल भी बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि आप अगर जिम्मेदारी के साथ एक पौधा लगाते हैं और उसकी केयर प्रतिदिन करते हैं तो वाकई में वो पौधा तो जिस तरह से वो बढ़ेगा, आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो अगर कहें तो ख्वाहिशें हैं, वो भी लगातार बढ़ती जाएंगी उस पौधे की तरह। तो आप उस पौधे को ध्यान से लगाइए और उसकी केयर कीजिए। कहते हैं ना, पौधे की जो केयर होती है ना आकांक्षा, बच्चों की तरह की जाती है, है ना। सिर्फ एक दिन पर्यावरण दिवस हम सेलिब्रेट कर लें, बहुत सारे पौधे लगा दिए, फिर हमने उनकी केयर नहीं की, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है।
3: बिल्कुल। तो जैसे कि हम बचपन में भी पढ़ते आए हैं कि पौधों में भी जान होती है, तो उसी जान को संभालना भी, और ताकि वो पल्लवित हो, पोषित हो, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिलहाल बारिश के इंतजार में देखिए कैसे, जब बारिश की बात आती है जबान लड़खड़ाने लगती है कि भाई बस बूंदे कुछ पड़ जाए और कुछ राहत मिल जाए। तो बारिश के इंतजार में भले ही बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ये ट्रैक तो बनता है,
4: थोड़ी सी राहत जरूर देगा।

0: जी हाँ दोस्तों, अगर आज आपका जन्मदिन है तो आज आपके जन्मदिन की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जी हाँ, और अगर आपकी एनिवर्सरी है तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिएगा, विश करना मत भूलिएगा।
0: बिल्कुल दोस्तों, और अपने जन्मदिन के दिन कुछ एक ऐसा

0: काम ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग पौधे लगाते हैं, तो पौधे भी आप लगा सकते हैं। और मैं तो हमेशा अक्सर ये बात आपसे ज़रूर कहता हूँ कि अपने जन्मदिन के दिन कुछ ऐसा काम कीजिए कि किसी के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान लाने की बस कोशिश कीजिए। देखिए कैसे आपका दिन और आपका ये जन्मदिन इतना खूबसूरत बन जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आप अपना जन्मदिन किन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व और बहुत ही अच्छे नेचर के व्यक्ति जिनकी आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं श्रीपति पंडित राधुल्य बालासुब्रमण्यम की। जी हाँ, एसपी बालासुब्रमण्यम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पार्श्व गायक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े अभिनेता, संगीत निर्देशक, गायक और फिल्म निर्माता भी थे। दोस्तों, एसपी बालासुब्रमण्यम ने 6 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार तेलुगु सिनेमा में नंदी पुरस्कार जीता। जब जब अभिनेता सलमान खान नए नए फिल्मों में आए थे, तो सालों तक एसपी बालासुब्रमण्यम को सलमान की आवाज़ समझा जाता था। फिल्म मैंने प्यार किया के गाने हों या साजन या फिर हम आपके हैं कौन, इन सब फिल्मों में सलमान खान को एसपी बालासुब्रमण्यम ने ही आवाज़ दी थी। वो एक बेहतरीन गायक, संगीतकार, प्रोड्यूसर होने के साथ अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे।
1: बिल्कुल, और उन्होंने कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड और अर्जुन सरजा जैसे अभिनेताओं के लिए वॉइस ओवर भी किया।
0: क्या बात।
1: एसपी बालासुब्रमण्यम को भारत सरकार ने 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी नवाजा।
0: जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 दशक में करीब 16 भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने वो गा चुके थे। यसुदास के बाद एसपी बालासुब्रमण्यम बेस्ट मेल सिंगर का नेशनल अवार्ड पाने वाले दूसरे सिंगर थे। यसुदास ने अपने करियर के दौरान 8 नेशनल अवार्ड जीते थे, जबकि एसपी बालासुब्रमण्यम ने 6 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए। और दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के कारण एसपी बालासुब्रमण्यम साहब की 25 सितंबर सन 2020 में चेन्नई में मृत्यु हो गई। और आज इस महान व्यक्तित्व के साथ, इस महान गायक के साथ आज आप अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी हाँ, अगला वो नाम आपको बता दें। जी हाँ, जब आप इनके गीत सुनते हैं ना, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तो बस ये नाम आप सुनते ही समझ जाएंगे कि हम बात कर रहे हैं नूतन जी की।
0: जी।
1: हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। भारतीय सिनेमा जगत में नूतन को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्मों में अभिनेत्रियों के महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की परंपरागत विचारधारा को बदलकर उन्हें अलग पहचान दिलाई। सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा, सरस्वती चंद्र और मिलन जैसी कई फिल्मों में अपने पॉपुलर अभिनय के लिए आपने ये साबित कर दिया कि भाई एक्ट्रेसेस में भी अभिनय की क्षमता होती है।
0: जी हाँ दोस्तों, और अपने अभिनय की बदौलत वे दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने में पूरी तरह से सक्षम हुई। नूतन की प्रतिभा केवल अभिनय तक ही नहीं सीमित थी, वह गीत और गज़ल लिखने में भी काफ़ी दिलचस्पी रखती थी। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करने का कीर्तिमान नूतन के नाम दर्ज है। नूतन जी को अपने सिने करियर में 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नूतन को वर्ष 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और आज उनकी जन्म जयंती पर हम उनके इस योगदान के लिए उन्हें नमन करते हैं।
1: बिल्कुल रतन, इतने खूबसूरत नाम जब आपके दिन के खास से जुड़ जाते हैं तो आपके दिन को खास बना देते हैं। और हम बात कर रहे हैं नूतन जी की, तो एक गीत जो अभी मैंने दोहराया जिसकी कुछ लाइंस, तो मेरा मन है कि
0: वाकई में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा गीत, इसके लिरिक्स वाकई में बहुत खूबसूरत है,
1: वो गीत आप तक भी पहुंचाया जाए। तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लग

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। इतिहास के पन्नों में आज का दिन,
1: भाई ढोल नगाड़ों के साथ आज का इतिहास लेकर हाजिर है रतन, और बताएंगे कि क्या है आज, क्या हुआ था आज के दिन में।
2: जी हाँ दोस्तों, हर दिन अपने आप में बहुत खास होता है और उसका इतिहास जितना खास होगा वो दिन और भी ज्यादा उतना ही खास और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इतिहास की यही खासियत है कि वो अपने सुनहरे अक्षरों में उस दिन की खासियत को पूरी तरह से दर्शाते हैं, दिखाते हैं। 1896 में दोस्तों आज ही के दिन हेनरी फोर्ड द्वारा निर्मित पहली कार का सफल परीक्षण किया गया था।
1: और आज ही के दिन 1970 टोंगा को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी।
2: और बात करें 1994 की, तो गीतकार मजरू सुल्तानपुरी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
1: आज के दिन 1997 पूर्णतः भारत निर्मित उपग्रह इनसेट 2D को फ्रेंच गुयाना के कोरू से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था।
2: और 2010 की बात करें तो स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट की पहली उड़ान आज के दिन हुई थी। तो ये इतिहास की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आप तक हमने पहुंचाई और आज के दिन को ये घटनाएं बहुत खास बनाती हैं। और दोस्तों लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी मेल्स भी हम तक पहुंच रही हैं, और 9:50 का समय हो चुका है। एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंच रहा है, उसके बाद लौटेंगे तो आपकी मेल्स भी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, 54 मिनट का समय हो गया है दोस्तों, और इस समय का ये इशारा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ को हम वाइंड अप करने की तरफ पूरी तरह से बढ़ चले। हाँ, और जब तक इस प्रोग्राम को अब हम वाइंड अप नहीं करेंगे तो अगले प्रोग्राम में हम एंट्री कैसे लेंगे, इसलिए इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना भी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं, जो जिम्मेदारियाँ हमारी अभी भी हैं इस प्रोग्राम के लिए, वो हम ज़रूर पूरी करेंगे, यानी कि मेल्स आपके हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो अगली मेल किनकी है?
2: जी हाँ, राम मोहन गुप्ता जी लिखते हैं हमें, ज्यों ज्यों होते जा रहे समृद्ध और नवीन, घटता जा रहा सद्भाव, हो रहे संवेदनहीन, दिखता ना दुख दर्द और ना औरों का ना ही दिखे कष्ट, भले ही कोई परेशान पीड़ित रील में रहे मस्त, बात बात में शेखी बघारना, मारते रहना ताना, हुए जरा समृद्ध सफल क्या, पैर जमी पर धरे ना, सेवा सहयोग करना दुख सुख में भागीदारी, बस रह गया मतलब हित, कैसी जिंदगी हमारी, वसुधैव कुटुंबकम का नारा धीरे धीरे गुम हो रहा, मानवता का धर्म निभाने में मानव पीछे जा रहा। राममोहन गुप्ता जी लिख रहे हैं हमें लखीमपुर खीरी से।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वाकई में राममोहन जी, आपकी जो कविता है, आपकी जो पंक्तियां हैं, वो बहुत कुछ कह जाती हैं कम शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश सिंह इटावा कैसरगंज बहराइच से हमें मेल कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग के साथ साथ ये अपने आज के मुद्दे पर कह रहे हैं हमको कि हमको हर जगह इंसानियत को लेकर संवेदना होकर सहनशीलता दिखाना चाहिए, हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, किसी की परेशानी को समझना चाहिए, मदद करना बहुत जरूरी होता है।
2: क्या बात है। अरुण कुमार जी आपको भी नमस्कार, और कह रहे हैं कि लोग असंवेदनशील नहीं होते, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें लोग ऐसा करते हैं, पुलिस आदि के डर के कारण भी संवेदनशील होना उनके लिए मुश्किल लगता है, और ऐसे कुछ लोगों के बारे में कोई इनके पास जवाब नहीं है। थैंक यू सो मच अपनी राय रखने के लिए।
1: वारिस अली लिखते हैं, मेरा मानना है कि आज का इंसान मतलब परस्त हो गया है, वह सिर्फ अपना और अपने परिवार की सोचता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए लोग पर विश्वास करता है। ओके, दूसरी बात, समाज में हम ना रहकर काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, सोशल मीडिया में फंसकर हम अपने लोगों को वक्त नहीं दे पाते हैं, उनसे बात नहीं करते, तो आप बताइए कैसे हम लोगों के प्रति संवेदनशील हो पाएंगे। इसके अलावा एकल परिवार और संस्कार की कमी भी संवेदनहीनता के कारण हैं। बिल्कुल सही बात हो सकता है, और ये चीज़ें हो भी रही हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से तो हमें बाहर निकलना है, और एक सभ्य समाज की, एक ऐसे समाज की जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे।
2: बिल्कुल। बाबू अंसारी जी हमें सुन नहीं पा रहे, बाराबंकी से हमें मेल करने, कह रहे भाई ये फ्रिक्वेंसी हमारे यहाँ काम नहीं कर रही और रेनबो के बिना अधूरा लग रहा। कोई बात नहीं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज़ ऑन एयर ऐप, जिसपे आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास निधि चौरसिया, गुड मॉर्निंग। नवनीत सिंह जी आपको भी गुड मॉर्निंग।
1: अरुण कुमार,
2: नाम ले लीजिए
1: जी। हाँ, नाम ले लीजिए।
2: नित्या, कृति, मंजय कुमार, सीमा देवी, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए।
1: अरुण कुमार जी का मेल हम तक पहुंचा है घमोइया से, और ये हमें कह रहे हैं आप दोनों लोगों को एक बार फिर से नमस्कार।
2: जी हाँ, इनका मेल हमने शामिल कर लिया है। थैंक यू सो मच अरुण कुमार जी मेल करने के लिए। और गुलफ्शा हमसे क्या कहना चाहती हैं?
1: गुलफ्शा क्या कह रही हैं भाई, बता दीजिए। गुलफ्शा कह रही हैं कि आप दोनों को हमारा गुड मॉर्निंग। ओके, आपको भी गुड मॉर्निंग। और ये मौलवी खेड़ा से हमें मेल कर रही हैं, मेरे यहाँ कल से आप का स्टेशन साफ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं रेडियो पर सुनती हूँ, कुछ कीजिए। ज़रूर हम कुछ करेंगे, और आपको जल्द ही इस समस्या का समाधान दिलाया जाएगा, आप लगातार हमारे साथ ही बनी रहिए। और दोस्तों, वाकई में 9:57 का समय हो चुका है, और जैसा कि आज हम सभी इस विषय पर बात कर रहे हैं कि हमें संवेदनशीलता को दिखाना चाहिए और अपने समाज में ज़रूर ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि लोग दूसरों की मदद करें, और जो आक्रोश होता है वो आक्रोश ना आने पाए, हम अपने आक्रोश को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से अपने आक्रोश से बचा सकते हैं, इन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम लोगों की मदद नहीं करेंगे और लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे नहीं, तब तक हम समाज के लिए कुछ अच्छा स्थापित नहीं कर सकते।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के महानिदेशक ने बताया कि आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में लगभग 29 लाख अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ ही किसी भी स्तर पर समझौता न होना पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी अभ्यर्थी को अनावश्यक कठिनाई या परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतरजनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। वाराणसी में आज और कल ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी संस्कृति सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित होंगे। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को मिर्जापुर के साथ अब चित्रकूट जनपद का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले मंत्री नंदी मिर्जापुर के साथ बांदा जनपद के प्रभारी थे। यह जिम्मेदारी उन्हें सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, शिकायत निवारण और विकास कार्यों की सीधी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सौंपी गई है। मंत्री नंदी के प्रभार सौंपे जाने पर मुख्यमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी संभाग के कई स्थानों पर तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
2: हमारी और आपकी साझा कहानी,
3: आपके अपने रेनबो की जबानी।
4: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
5: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
6: ये प्रूफ हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
7: 100.7 FM रेनबो,
8: धड़कन लखनऊ की।

10:04 का समय और प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग, और इस प्रोग्राम में आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और दोस्तों, इस एक घंटे बस म्यूजिक म्यूजिक और सिर्फ म्यूजिक आपके साथ।

10:04 का समय और प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग, और इस प्रोग्राम में आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और दोस्तों, इस एक घंटे बस म्यूजिक म्यूजिक और सिर्फ म्यूजिक आपके साथ होगा, तो बस दिल थाम के बैठिए और अपने रेडियो को ऑन कर बैठिए हमारे साथ, यानी कि 100.7 FM रेनबो के साथ जुड़े रहिए अगले घंटे बहुत प्यारे प्यारे से गीत आपके लिए सुपर हिट सॉन्ग में, और आपका हमारा ये प्यारा सा साथ जिसमें आज आपका साथ निभाने के लिए आपका अपना दोस्त रतन आपके साथ है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ दोस्तों, 10:31 का समय हो चुका है, प्रोग्राम चल रहा है सुपर हिट सॉन्ग, और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात, और आप अपने दिल की बात भी हम तक पहुंचा सकते हैं अभी थोड़ी देर में जिस अगले प्रोग्राम में, ठीक है। तो अभी तो आपका ये फेवरेट शो चल रहा है जिसका नाम है सुपर हिट सॉन्ग, और अगला गीत आपके लिए।

दोस्तों 10:54 का समय हो चुका है और ये समय बिल्कुल पूरी तरह से इशारा कर रहा है कि सुपरहिट सॉन्ग को हम यहीं पर वाइंड अप करें, क्योंकि जब तक इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप नहीं करेंगे अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात कैसे करें?

तो न्यूज ब्रेक के बाद मिलते हैं आपके अपने फेवरेट शो संदेश आपके गीत हमारे में, आपका हमारा ये साथ यूं ही बना रहे, बस हम यही दुआ करते हैं, बस हमारे साथ इसी मुस्कुराहट के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, प्रातः की 11 बज चुके हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। 5 दिन के इस आयोजन में अमेरिका, जापान, नीदरलैंड, ओमान, मॉरिशस, युगांडा, जाम्बिया, श्रीलंका, नेपाल और केन्या सहित 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 6:40 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा और केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जन कल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जन भागीदारी और जन कल्याण का व्यापक अभियान बने। प्रदेश के वित्त और लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में मल्हौर और खरगापुर क्षेत्र में सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें उपचार के लिए अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि आज से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
1: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
2: धड़कता है जो हर दिल में
3: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
0: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।

ग्यारह बजकर हो गए हैं 4 मिनट और प्रोग्राम शुरू हो चुका है संदेश आपके गीत हमारे। और इस प्रोग्राम में दोस्तों आपको करना क्या होता है, अपने प्यारे प्यारे संदेश जो आपके लिए हमारे लिए

पूरे समाज के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणादायक हो और समाज को कुछ अच्छी राह दिखाएं, ऐसे संदेश आपके हम तक पहुंचते हैं और गीत हमारे होते हैं आपके लिए। तो बस इस प्यारे से शो में अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, यानी कि 100.7 एफएम रेनबो के साथ जुड़ जाइए। मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। अगले घंटे आपके साथ रहने वाला हूं, बहुत ढेर सारी बातें भी होंगी और आपके प्यारे प्यारे संदेश भी होंगे, लेकिन इन सब संदेशों और बातों से पहले ये प्यारा सा गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड प्रोग्राम संदेश, आपके गीत हमारे और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन। और देखते हैं हमारे साथ शायद कोई कॉल पर जुड़ा हुआ है। हेलो हेलो,
5: गुड मॉर्निंग सर।
4: वेरी गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही है? वालेकुम अस्सलाम, नाम तो बताइए अपना।
5: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर और बताइए आप कैसे हैं?
4: सबकी तरफ से आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और शमा परवीन क्या करती हैं आप?
5: हम अपने घर का काम करते हैं, मम्मी का हाथ बटाते हैं और आपके तीनों चैनल सुनते हैं, FM रेनबो, आकाशवाणी, विविध भारती से जुड़े रहते हैं।
4: क्या बात है, यानी आप हमारी FM रेनबो की बहुत अच्छी वाली लिसनर हैं।
5: जी हम आपकी बहुत अच्छी लिसनर हैं और आपकी रेगुलर लिसनर हैं।
4: क्या बात है, तो आज क्या संदेश देना चाहती हैं बताइए?
5: आज सर हम ये संदेश देना चाहते हैं, जैसे सब लोग सड़क पे जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो बनाने लगते हैं।
4: बिल्कुल सही बात है।
5: तो उनको वीडियो नहीं बनाना चाहिए, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, उसकी जान बचाने की कोशिश करें।
4: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा ये संदेश है आपका। और वाकई में ये जो एक्सीडेंट होते हैं रोड पे या फिर हाईवेज पे बड़े बड़े, और लोग वहाँ पे उतर के वीडियोस बनाते हैं, और
5: तो वो जो नहीं बनाना चाहिए,
4: वीडियो नहीं बनाना चाहिए वाकई में, क्योंकि जो शुरुआती एक घंटा होता है उस शुरुआती एक घंटे में अगर एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करा दिया जाए और उसको समय से
5: जी उसकी जान भी बच जाए,
4: समय से हॉस्पिटलाइज करा दिया जाए तो वाकई में उसकी जान बची जा सके, बचाई जा
5: सकती है। नाम लेना चाहते हैं?
4: बिल्कुल,
5: साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम, गुलाब साप्ती, मोहम्मद फायज भाई, अकबर अंसारी, बाबू अंसारी भाई, सिराजुद्दीन भाई, मोहम्मद सदाम भाई, वकील अहमद मंसूरी, मोहम्मद आसिफ भाई।
4: बहुत सारे नाम आपके पास हैं शमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। और 11:14 का समय हो चुका है और लगातार हमारे पास मेल्स भी आ रही हैं। छवि राम साहब की मेल हमारे पास आई है। मैं छवि राम राजपूत जिला फरुखाबाद से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ। जी रेनबो मेरे दिल की धड़कन है, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो लोग रात रात भर डीजे या बड़ी चीज़ें बजाते हैं

उन्हें बंद करना चाहिए, क्योंकि उससे पशु पक्षी तथा छोटे बच्चों को बहुत ही कान में दिक्कत होती है, ओके, सुनाई देने में उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है और ऐसा करने से उनको नुकसान होता है। तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि अगर हम इतनी तेज़ आवाज़ में कुछ बजाते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है, तो वाकई में सिर्फ पशु पक्षियों को ही नहीं, बुज़ुर्गों को भी बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए म्यूज़िक हमें सिर्फ उतना ही सुनना चाहिए जितना हमारे कानों को अच्छा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपने ये अच्छी सी पिक भी हमें मैंगोज़ की भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतनी अच्छी बात हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे पास अगली मेल मोहम्मद आसिफ साहब की है। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से हमें ये मेल कर रहे हैं। कह रहे हैं, रतन सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे प्ले कर रहे हैं। सर, संदेश यही है कि गर्मी में पानी की टंकी की नियमित सफाई करें और अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। मेरे कुछ नाम लेने हैं, ओके। इन्होंने कुछ नाम ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, समा अंसारी, नेहा अंसारी, गुलफ़ा अप्पी, यानी कि आप सब एक दूसरे के नाम पूरी तरह से हर मेल में पहुंचाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बार बार वही नाम आ जाते हैं हमारे पास, तो अब हमने नाम पढ़ दिए हैं। वकील अहमद साहब की मेल हम तक पहुंची है, और गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, और संदेश यह है कि कुछ लोग मोटरसाइकिल रोड पर खड़ी कर देते हैं, ऐसा ना करें, उससे रोड साइड में खड़ी करें, ऐसा इनका कहना है। कि बीच रोड में अक्सर ऐसा मैंने भी देखा है कि लोग कुछ सामान लेना होता है या कहीं जाना होता है, थोड़ी देर के लिए कहीं जाना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ATM से पैसे निकालने हैं, तो आपने अपनी गाड़ी बीच में आड़ी तिरछी जैसी भी लगा दी और आप अंदर निकालने चले गए पैसे। अब वो वहाँ पे जो गाड़ी आपकी गलत तरह से पार्क की गई है, उसके कारण रोड पे निकलने वाले लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और अक्सर लोग जल्दबाजी में ऐसा कर जाते हैं, ध्यान नहीं रखते, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लगातार मेल्स हमारे पास आ रही हैं, लगातार कॉल्स भी आ रही हैं, और भी कॉल्स हम ज़रूर लेंगे, तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। और हम आपको एक बार जो हमारे नंबर्स हैं वो हम आपको ज़रूर ज़रूर बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे से लिसनर्स हैं जो कि पहली बार हमारे साथ जुड़ते हैं और फ़ोन मिलाकर हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, अपना संदेश हम तक भेजना चाहते हैं। तो नंबर्स हमारे दो हैं जो इस वक्त आपके लिए हमने ऑन कर दिए हैं। पहला नंबर है 0522-298-2377, और दूसरा नंबर है 0522-228-45। ये दो मैजिकल नंबर्स आपके लिए ओपन हैं, आप इनसे जुड़कर हमारे साथ यानी कि FM रेनबो के साथ जुड़ सकते हैं। साथ में हमारी मेल आईडी भी है जो जिसके माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, FM@lucknow@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से भी आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आपके लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी हाँ दोस्तों, 11:22 का समय, प्रोग्राम आपका चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, और हमारे साथ कोई लाइन पर जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे करते हैं बात। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: क्या बात, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, स्वागत है आपका FM रेनबो पर। क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है, तब तो फिर आपसे हम भजन जरूर सुनेंगे। सुनाएंगे आप हमें?
1: जी सर, समझ में नहीं आया।
0: हम कह रहे हैं हम भजन आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, आप हमें सुनाएंगे?
1: जी बिल्कुल सुना दूंगा, एक लाइन।
0: चलिए बिल्कुल, एक लाइन हमें जरूर सुनाइए।
1: ऐसे आपको बताऊं, 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है हमारा, उसमें 4 लोग हम गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं और 1 ढोलक और 1 तबला बजाते हैं।
0: क्या बात, मतलब गाने वाले तो आप है ना। तो चलिए कुछ सुनाइए हमें अच्छा सा।
1: मैं भी हूँ सर।

0: क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, और वाकई में आप जब पूरे साज के साथ गाते होंगे तो बहुत अच्छा लगता होगा।
1: ऐसा प्रोग्राम बनाता है ना, हम चार लोग मिलकर गाने वाले होते हैं।
0: जी जी जी,
1: उसमें दो हारमोनियम और दो तबला, मतलब ऐसा ग्रुप बना हुआ है।
0: जी
1: मतलब
0: जी,
1: हम कहीं पर भी जाते हैं बस अपनी भजन की प्रस्तुति देकर ही आते हैं।
0: बिल्कुल, वाकई में बहुत अच्छा, अच्छी आपकी आवाज़ है और बहुत अच्छा भजन भी आपने सुनाया, और इस आपने इस जो हुनर है इसको हमेशा इसी तरह कंटिन्यू आप करते रहिएगा। और आज आप जब एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं, प्लीज बताइए हमारे लिसनर्स को।
1: जी बताना चाहेंगे, कल पर्यावरण दिवस है सर, तो उसके लिए सबसे पहले तो ऐसे वाहन चलाए जो कम प्रदूषित करे, मतलब कम धुआं छोड़े, और साथ में पेड़ पौधे लगाए, और पेड़ पौधे लगाने के बाद में उनका मतलब

0: तक वो पेड़ ना बन सके उनका पूरा ख्याल रखे।
1: क्या बात, और
0: समय समय पर पानी दे, खाद दे, और मतलब ऐसे उनकी सिंचाई करते रहे।
1: बिल्कुल, उनका
0: मतलब निकालना बहुत जरूरी होता
1: जी,
0: है।
1: तो जी
0: मैं देता हूँ आपको कि मैंने अपने घर के 5 बगीचे में मतलब 6 से 7 पेड़ तो मतलब अमरूद के लगा रखे हैं, पपीते के लगा रखे हैं, और ऐसे करके मैंने 20 मतलब पेड़ पौधे लगाए थे, तो वो 6 साल से बड़े होकर मतलब आने फल भी देने लगे हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी कह रहा आपने की, और वाकई में आपका ये संदेश भी बहुत सारे लोगों को समझ में भी आएगा, और बहुत जिम्मेदारी के साथ वो अपनी आपकी इस बात को निभाएंगे भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, तो प्रेम सिंह सिसोदिया साहब ने तो अपनी बात हम तक पहुंचा दी, और उन्होंने कल पर्यावरण दिवस के पहले ही हमें ये संदेश दे दिया कि पेड़ ज़रूर लगाइए, और उन पेड़ को लगाने के बाद उसकी जो देख रेख है वो करना बहुत बहुत ज़रूरी है, जब तक वो पेड़ पूरी तरह से वो पौधे पेड़ ना बन जाएं। तो वाकई में अगर कोई पौधा हम लगाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी पूरी तरह से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम उसकी देख रेख उसी बच्चे की तरह करें जैसे हम अपने बच्चे की करते हैं, ताकि वो आने वाले भविष्य में बहुत फले फूले और आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हैं उनको बहुत अच्छी सी छांव दे, अच्छे अच्छे फ्रूट्स दे। तो बहुत अच्छा संदेश, और हमारे साथ मेल के माध्यम से भी बहुत सारे लोग लगातार जुड़ रहे हैं। बाबू अंसारी जी की भी मेल हम तक पहुंची है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा संदेश ये है कि हमारे यहाँ बाराबंकी अहमदपुर के अरिया में कल से 100.7 फ्रिक्वेंसी नहीं काम कर रही है, ये संदेश है आपका। चलिए, आपकी ये जो बात है हम ज़रूर अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे, और आपकी इस समस्या का जो समाधान है वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। देखिए ना, कभी कभी मौसम का असर फ्रिक्वेंसीज पर भी हो जाता है, और ऐसा शायद हो गया है, तो ज़रूर आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। और अगर आप रेडियो पर नहीं सुन पा रहे हैं तो आप ऑन एयर, न्यूज़ ऑन एयर के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ऐप के माध्यम से आप जुड़कर भी हमारे इस प्रसारण को लाइव सुन सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। तो आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात हम तक पहुंचाए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि रेनबो आगे लिखते हैं, क्योंकि रेनबो एफएम रेनबो के बिना जीवन अधूरा सा लगता है, आई लव एफएम रेनबो चैनल। ओके, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मोहम्मद सद्दाम जी की भी मेल हम तक पहुंची है। मेरे क्यूट सी प्यारे वाले रतन भैया, आपको प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम। ये मोहम्मद फैज़ रामपुर कटरा ज़िला बाराबंकी से ईमेल कर रहा हूँ। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे गांव में रेडियो सेट पर आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा है, किसी वजह से चैनल उड़ गया है। ओके, आपकी माध्यम से ओके, आपका प्रोग्राम ऐप के माध्यम से ओके, ऐप के माध्यम से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मेरा संदेश ये है कि सभी लोग किस मौसम में पानी पीते रहें, अच्छा किस नहीं, इस मौसम में लिखना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई, इस मौसम में पानी पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें और अपना ख्याल रखें। कुछ दोस्त हैं, उनका नाम आपने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, थैंक यू सो मच, और आपने हमें मेल की, इसके लिए भी शुक्रिया। और अगर आपको प्रसारण नहीं मिल रहा है तो उस पर ज़रूर लगातार कार्य चल रहा है, और जल्द ही आपकी समस्या का समाधान भी करा दिया जाएगा। छविराम जी की भी मेल हम तक पहुंची है। छविराम सिंह, मैं छविराम सिंह राजपूत फरुखाबाद यूपी से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ। रेनबो मेरे दिल की धड़कन, सर जी ये बातें, इस प्रोग्राम को हम दोबारा कैसे सुन सकते हैं, प्लीज़ बताएँ। मतलब दल धड़कन लखनऊ की, सर जी ये बातें इस प्रोग्राम की, ओके इस प्रोग्राम की बातें आप दोबारा कैसे सुन सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमेशा सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। संतोष चौरसिया जी की भी मेल हम तक पहुंची है। राम राम सर जी, आपको भी राम राम, गुरुग्राम हरियाणा से सुन रहा हूँ। प्रोग्राम लाजवाब, पूजा भरद्वाज मेरी पत्नी का नाम ले लीजिए। पूजा जी, हमने आपका नाम ले लिया है, और संतोष जी आपकी भी बात हमने पूरी कर दी है, आपकी वाइफ का नाम हमने ले लिया, पूजा भरद्वाज जी कहीं भी हो ज़रूर आपको सुन रही होंगी, हमें सुन रही होंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार मेल्स हमारे पास आती रही हैं और आ रही हैं, आप भी अपने संदेश हम तक पहुँचा सकते हैं। 11:29 का समय हो चुका है, और एक प्यारा सा गीत भी आपके लिए बिल्कुल तैयार है। इस गीत को हमारे साथ जुड़कर सुनते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: जन कल्याण जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 11:36 मिनट का समय। और देखिए दोस्तों, आपसे बातें करते करते टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता, ताकि हम चाहते हैं ये टाइम बस यूं ही थमा रहे, रुका रहे, आपसे लगातार बातें होती रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि टाइम लगातार आगे बढ़ता रहता है। और टाइम दोस्तों हमें ये सिखाता भी है हमेशा कि जैसे कभी हम नहीं रुकते, वैसे आपको भी अपनी लाइफ में कभी नहीं रुकना है। जीवन में जितने भी परिवर्तन आए, उन सभी परिवर्तनों को स्वीकार करते रहिए और अपनी लाइफ को कंटिन्यू यानी कि लगातार आगे बढ़ाते रहिए। यही आपके जीवन की सक्सेस की हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में आए हुए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता और आगे नहीं बढ़ता, वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए समय के साथ लगातार अपने आप को भी आगे बढ़ाते रहिए और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते रहिए। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो दोस्तों, लगता है कॉलर जो हमारे साथ जुड़े थे वो कहीं चले गए या फिर वो होल्ड नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास जो मेल्स हैं वो लगातार आती चली जा रही हैं, और देख लेते हैं अगली मेल किन की है। अगली मेल है रवि कुमार और राहुल रवि के नाम से ये हमारे पास मेल आई है, लेकिन इन्होंने बहुत सारे गीत लिख दिए हैं और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। अरुण कुमार की भी मेल हम तक पहुंची। रतन जी, आपको प्यार भरा नमस्कार। संदेश, हमारे गीत तुम्हारे ओके कार्यक्रम में गीत संगीत साथियों द्वारा अच्छे अच्छे संदेश, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। संदेश मेरा यह है कि लोगों को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचे, जो प्रदूषण का कारण बने। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जल का संरक्षण करें। धन्यवाद, बहुत अच्छा ये संदेश। और वाकई में दोस्तों, कोई कार्य हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, इसलिए हमेशा इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी। अशोक कुमार जी की भी मेल हम तक पहुंची है, रायपुर उदारा मितौली लखीमपुर खीरी से हमें ये मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं सुपरहिट सॉन्ग प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। स्वच्छता केवल प्रशासन का काम नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अक्सर लोग अपने घरों का कचरा या पॉलीथीन नालियों में फेंक देते हैं, जिससे पानी रुक जाता है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, और इन सब बातों की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उससे कहीं ज़्यादा हमारी बन जाती है, क्योंकि अगर सरकार हमारे लिए सोच रही है तो उसको मेंटेन करना, उसको पूरी तरह से आगे तक बरकरार रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी बन जाती है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी चाहिए, तभी शायद हम एक अच्छा पर्यावरण, एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश बना सकते हैं। थैंक यू सो मच अशोक कुमार जी। गुलफ्सा सिद्दीकी की भी मेल हम तक पहुँची है। हेलो गुड मॉर्निंग रतन भाई, गुलफ्सा सिद्दीकी मौलवी खेड़ा से ये मेल हमें कर रही हैं। अच्छा, ये बताएं आज कौन से नंबर चल रहा है, क्योंकि मैंने मिलाया तो कहीं और मिल गया है, अभी प्लीज़ नंबर बता दो रतन भाई, यही संदेश है। देखिए, नंबर तो इस वक्त हमारे दो ऑन हैं आपके लिए, और अगर आपको बिजी बता रहा है दोनों नंबर या फिर कोई समस्या आ रही है, तो आप मेल के माध्यम से जैसे अभी जुड़ी हैं वैसे मेल के माध्यम से भी जुड़ सकती हैं। हमारे वैसे दो नंबर्स जो हैं वो हैं 0522-22-3885 और 0522-29-82-377। ये दो नंबर्स आपके लिए ओपन हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: सर मैं सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ग्राम व पोस्ट पर सिंधी कैसरगंज भराई से।

0: सत्यम, स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर। आज क्या संदेश है आपका, बताइए।
1: सर पहले तो मैं कहना चाहूंगा सर, जिस स्टेशन से मैं आपको सुन रहा हूँ, रेडियो स्टेशन से, तो वो कभी रेनबो सुनाता है, कभी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से जोड़ देता है, इसीलिए अच्छा। सर जल्द से जल्द इसे सही करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये बात हमारे उच्च अधिकारी सुन रहे हैं और जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान कराया जाएगा, बेफिक्र रहिए। बताइए क्या संदेश है आपका।
1: संदेश मेरा यह रहेगा, कई दिनों से मैं सुन रहा हूँ, कई लोग शिकायत करते हैं कि मतलब जो कॉल मतलब एक ही कॉल रोज आती है। सर अब देखिए, हम ना हमारा काम कहना ही है, तो है हम कह सकते हैं सर कि कॉल रोज रोज मत कीजिए।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अब उन्हें एकदम रोक तो नहीं सकते। और बात आई ईमेल्स वालों को भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सोचिए सर, उन्हें सुबह गुड मॉर्निंग लखनऊ में भी ईमेल करने का मौका मिलता है 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर रात को 9 बजे, और हमारा 11 बजे और शाम को 7 बजे बस।
0: जी सत्यम जी, ये जो समस्या है, ये आप और हमारे लिसनर्स के बीच की समस्या है, और हमारे लिसनर्स बहुत समझदार हैं, और आप जो कहना चाहते हैं
1: सर, जी शिकायत नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है, रिक्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शिकायत वो करते हैं जिनके अंदर खुद कोई गलती होती है।
0: चलिए कोई बात नहीं, आपकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगी, और वाकई में आपकी तरह जितने भी हमारे बहुत समझदार लिसनर्स हैं वो भी सुन रहे हैं और समझते भी इस बात को।
1: इशारा ही काफी होता है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई में बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो कि इस तरह की एक्टिविटीज कभी कभी कर देते हैं, लेकिन हाँ आपकी ये बात उनको जरूर समझ में आएगी। बिल्कुल, फ्रिक्वेंसी का जो समस्या चल रही है इसका समाधान हम जल्द से जल्द कराएंगे, आप बेफिक्र रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यम बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू सर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: 11:45 का समय हो गया है और ज्यादा देर अगर म्यूजिक चला जाता तो आप लोग भी ये सोचते हैं ना कहाँ चले गए, म्यूजिक आ रहा है आवाज़ नहीं आ रही है हो जाता है। और दोस्तों वाकई में कभी कभी इंतज़ार बहुत अच्छा लगता है, करके देखिए कभी किया आपने देखिए हमारे साथ कोई लाइन पर जुड़ चुके हैं, चलिए उनको ऑन एयर करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी सर नमस्ते, सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: नाम तो बताइए अपना।
1: जी सर हम बोले मोहम्मद सद्दाम बारहवींगी से बात कर रहे हैं।
0: सद्दाम जी आपको भी नमस्कार और एफएम रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी सर,
0: ये बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी सर मेरी जो है वो दुकान है।
0: कहे की दुकान है?
1: मेरी तो पान की दुकान है, पान की दुकान।
0: अच्छा पान की दुकान है, तो कितनी वैरायटीज का पान लगा लेते हैं?
1: जी पान तो इतना जबरदस्त लगा लेते हैं कि पूछिए मत।
0: नहीं कितनी तरह का, कितने प्रकार का पान आप लगाते हैं?
1: जी एक तरीके का लगाते हैं, बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा।
0: अच्छा क्या बात है, तो जब भी हमारा उधर आना होगा तो हम जरूर आपसे पान खाएंगे
1: पान के पैसे नहीं लेंगे
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए एफएम रेनबो आप कितना सुनते हैं?
1: जी बहुत सुनते हैं सर, हमारे यहाँ आपका एफएम रेनबो लग रहा हो कल से लग रहा है कि जो है आ ही नहीं रहा है, लग रहा है चैनल उड़ गया है।
0: जी देखिए कुछ टेक्निकल समस्या चल रही है जिस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रही है और ये समस्या जल्द से जल्द समाधान इसका करा दिया जाएगा। ठीक है
1: ठीक है सर, जल्दी से जल्दी करवा दीजिए क्योंकि ऐप के माध्यम से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, लेकिन आपका ये प्यार है जो आप ऐप के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्या संदेश देना चाहते हैं ये बताइए।
1: जी सर आज का मेरा संदेश ये रहेगा, जैसे सर जैसे टू व्हीलर वाले हैं या फोर व्हीलर वाले हैं, तो जैसे गाड़ी के मतलब हाईवे पे चलते हैं या रोड पे चलते हैं, तो जैसे पीछे से एम्बुलेंस आ रही हो या मतलब जो है इस तरह की गाड़ी आए तो मतलब अपनी गाड़ी जो है ऑटोमेटिक साइड में कर ले ताकि उसको निकल दे, मतलब निकल जाने दे, है कि नहीं?
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई है और वाकई में ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लोग अक्सर अपने धुन में रहते हैं, चलाते हैं गाड़ी और पीछे से अगर एम्बुलेंस हॉर्न भी दे रही फिर भी वो ध्यान नहीं देते, ताकि ज़रूरत उसको पहले है जाने की, तो उसके लिए रास्ता ज़रूर दे देना चाहिए। और आपका ये संदेश वाकई में बहुत लोगों के लिए प्रेरणादायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: हेलो सर।
0: जी
1: हेलो।
0: हाँ
1: मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जिस वक्त प्रोग्राम आपका सुन रही।
0: बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी लीजिएगा, जल्दी बताइए।
1: जी जैसे रंजीत सिंह के हैं, समा परवीन आपका है, गुलक्ता अपनी सिद्दीकी वाली है, संडीला से अरदोई वाले, और बाबू अंसारी भाई मोहम्मद फैज भाई है रामपुर कटरे वाले।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो दोस्तों इन्होंने तो अपना संदेश हम तक पहुंचा दिया है। 11:47 का समय हो रहा है और 2 सेकंड बाद ये लीजिए हो गया 11:48 का समय और लगातार आपकी मेल्स भी हम तक पहुंच रही हैं। तो देख लेते हैं अगली मेल किन की हमारे पास पहुंची है। मेल पहुंची है वारिस जी की, अभी ये हमारे साथ गुड मॉर्निंग में भी जुड़े थे और लिख रहे हैं, पिछली पीढ़ी रिश्ते निभा गई, वर्तमान पीढ़ी रिश्ते तोड़ रही है और आने वाली पीढ़ी बिना रिश्ते रहना पसंद करेगी। संदेश यह है, सिस्टम कानून से चलता है लेकिन कानून जागरूक नागरिक से, इसलिए जागरूक नागरिक बने। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और वाकई में जागरूक नागरिक बनना समाज के लिए, देश के लिए बहुत हितदायक होता है और वाकई में अगर आप एक जागरूक नागरिक बन गए तो बहुत लोगों का आप लोगों को जागरूक कर भी सकते हैं, उनका कल्याण भी कर सकते हैं, उनकी मदद भी कर सकते हैं अगर आप एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं, तो ज़रूर बनिए जागरूक नागरिक। ये मेल हम तक पहुंची है संजय नगर ऐशबाग से वारिस अली जी की, बहुत बहुत शुक्रिया। और कह रहे हैं कि गीत इन्हें पसंद आ रहे हैं। रोशनी रावत जी का भी अच्छा सा हमारे पास मेल पहुँचा है, नमस्ते रतन सर जी, आपको भी नमस्ते हमारी तरफ से। सुपरहिट सॉन्ग्स का जो प्रोग्राम है इन्हें सुना, इनके इनको गाने बहुत पसंद आए, थैंक यू, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रोशनी रावत है, ग्राम व पोस्ट बमहना, तहसील सभीपुर, ज़िला उन्नाव से ये हमें मेल करती हैं, लेकिन ये इस वक्त प्रोग्राम को चंडीगढ़ में सुन रही हैं। संदेश दे रही हैं ये कि अगर किसी काम के लिए घर से बाहर जाना हो तो साथ में एक बोतल पानी और अपना छाता लेकर ज़रूर लेकर जाएं, धूप से आने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ देर बाद पानी को पिए। तो ये एक संदेश गर्मी के मौसम को देखते हुए इनका हम तक पहुंचा है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रोशनी जी हमसे जुड़ने के लिए। थ्री ब्रदर के नाम से हमारे साथ कौन जुड़े हैं? थ्री ब्रदर के नाम से हमारे साथ आसिफ अंसारी तेलंगाना हैदराबाद से जुड़ चुके हैं और

0: ये पिछला प्रोग्राम बहुत उम्दा गीत प्ले हुए, फुल एंजॉय. ओके, थैंक यू सो मच. मैसेज ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत करें, अनावश्यक फ़ैन, कूलर या कोई ऐसी चीज़ जो उपयोग के लिए नहीं है, स्विच बंद करके जाएं. सोलर सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करें. मेरे यहाँ सारा काम सोलर पैनल से ही होता है. शायद यही संदेश आपने हमें पहले भी पहुँचाया था आसिफ जी, और वाकई में ये अच्छा संदेश है, और आपका ये संदेश बहुत लोगों के काम भी आएगा. इलेक्ट्रिक सिटी हमें बचानी ज़रूर चाहिए, और सोलर सिस्टम की ओर अपने अपना जो फोकस है वो करना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे संदेश के लिए, इतना प्यारा संदेश हम तक पहुँचाने के लिए. मोनू सेठ साहब की भी हमारे पास मेल आई है, लेकिन इससे पहले देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: हरी चंद निषाद.
0: हरी
1: श्री चंद.
0: श्री चंद, आपका स्वागत है. कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बांदा जिले.
0: अच्छा, ये बताइए, एफएम रेनबो सुनते हैं आप?
1: एफएम रेनबो तो नहीं, हमारे यहाँ ये प्राइमरी चलता है.
0: अच्छा, मिला है तो आपने एफएम रेनबो में.
1: आज यही कुछ तुम कहो कुछ हम कहे, ये नंबर नहीं है क्या?
0: नहीं, अभी तो प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे.
1: नंबर से हम मिलाया था उसमें.
0: अच्छा, मिल गया इसमें. चलिए कोई बात नहीं. एफएम रेनबो के आपके आपको प्रोग्राम पसंद आते हैं या नहीं?
1: एफएम रेनबो हमारे यहाँ पकड़ता ही नहीं.
0: अच्छा, पकड़ता ही नहीं है. अच्छा, तो जो चैनल आप सुनते हैं वो भी हमारे यहाँ से ही चलते हैं, वो पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, उनको तो बहुत ज्यादा सुनते हैं.
0: चलिए, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हमेशा इसी तरह जुड़े रहें. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. दोस्तों, लगातार हमारे पास कॉल्स भी आ रही हैं. मोनू सेठ साहब का संदेश भी हम तक पहुंचा है कि संयुक्त परिवार के लाभ. संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है, उसमें हमेशा एकता की भावना रहती है. बच्चों को बड़ों और छोटों का प्यार सहयोग मिलता है. परिवार के सभी लोग घर का खर्च चलाने में सहायता करते हैं, जिससे जिम्मेदारी का बोझ किसी एक के कंधों पर नहीं पड़ता और समाज में सम्मान और कद बढ़ा रहता है. बहुत अच्छी बात वाकई में. अगर ये संयुक्त परिवार में आप रहते हैं तो उसके अपने बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं, और संयुक्त परिवार वाकई में बहुत कुछ हमें सिखाता है, बहुत अच्छे अच्छे संदेश देता है कि कैसे हम एक फैमिली में रहकर एक दूसरे की फीलिंग को समझते हुए, साथ में रहते हुए कैसे एक खूबसूरत सा सुंदर सा परिवार बना सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मोनू जी अपनी बात हम तक पहुँचाने के लिए. रोशनी चौरसिया जी का भी मेल हम तक आया है. नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं सर जी. थैंक यू. कोई संदेश भी दे देती हैं आप तो हमें और अच्छा लगता. 11:53 का समय हो गया है, और लगातार दोस्तों हमारे पास मेल्स आ रही हैं. राजकमल साहब की मेल हमारे पास आई है. राजकमल यादव ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं. राम राम सर जी, कैसे हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच. सर जी, लोगों से मेरा ये संदेश है, कृपया शराब पीकर वाहन ना चलाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें. धन्यवाद. हमें हमारे रमज़ान मास्टर सिलाई करते हैं, आपको नमस्ते बोल रहे हैं. ओके, उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्ते, और एफएम रेनबो उनसे कहा करिए रोज़ सुना करें. ठीक है, ज़रूर मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिएगा राम कुमार यादव जी. और आपने जो संदेश दिया है कि ड्रिंक करके वाहन ना चलाएं, तो वाकई में बहुत अच्छा ये संदेश है, और हमारे लिसनर्स ज़रूर आपकी इस बात को फॉलो ज़रूर ज़रूर करेंगे. सोनू परवाना साहब की मेल हम तक पहुँच गई है. कोई भी व्यक्ति आपके आसपास तीन कारणों से आता है, भाव से, अभाव से, प्रभाव से. यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव से आया है तो मदद करो, और प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है. परमात्मा खुश, आप खुश, हम खुश, क्या बात. बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा संदेश आपका हम तक पहुँचा है, और देखते हैं हमारे पास हमारे अगले कॉलर कौन है. हेलो जी, कौन बात कर रही हैं?
2: नमस्ते.
0: नमस्ते, कौन बात कर रही हैं?
2: रिंकी पिंकी बात कर रही हैं, जगदीशपुर से.
0: अच्छा रिंकी पिंकी जी, कैसी हैं आप ये बताइए.
2: सर अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कॉल कर करके थक रहे हैं सर. मेरे यहाँ कल से चैनल नहीं पकड़ रहा है, बताने के लिए कॉल कर रहे, कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है.
0: आपका कॉल तो अक्सर लग जाता है, तो आप इतना क्यों दुखी हो रही हैं?
2: सर और क्या सर, हम लोग ये बताने के लिए कॉल कर रहे, कोई कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा. आप चैनल सर

0: करवा दीजिए, हम लोग कल से कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं।
1: बिल्कुल, आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्द ही किया जाएगा, ठीक है, आप बेफिक्र रहिए।
0: बहुत सारे श्रोता यही शिकायत कर रहे हैं कि चैनल नहीं पकड़ रहा है।
1: इस पे लगातार कार्य चल रहा है और आपकी समस्या का समाधान,
0: मतलब ये आकाशवाणी लखनऊ बहुत अच्छा पकड़ रहा है, ये FM और विविध भारती लखनऊ नहीं पकड़ रहा।
1: ठीक है, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं।
0: रेडियो पे ही सुनते, फोन पे वो ऐप पे अभी नहीं सुन पा रहे ना।
1: तो ऐप पे क्यों नहीं सुन पा रही, ऐप पे तो सही चल रहा है
0: सर, फोन तो होना चाहिए सर, फोन नहीं चलाते तो
1: सुनेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करा देंगे। आज क्या संदेश देना चाहती हैं बताइए।
0: सर बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है, बस यही संदेश है हमारा, और हमें सर हमारा चैनल वापस चाहिए जल्दी से जल्दी।
1: ठीक है रिंकी पिंकी जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए भी आपका,
0: हमारी कॉल शामिल करने के लिए
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, रिंकी पिंकी ने कहा कि उनको थोड़ी सी समस्या आ रही है, प्रोग्राम उन तक पहुंच नहीं पा रहा सही से, उनकी समस्या का तरह ही बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जिनको इस तरह की समस्या का समाधान समस्या आ रही है। हम अपने जितने भी उच्च अधिकारी हैं इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं, उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द हमारे लिसनर्स की इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कराएं, ताकि वो हमारे साथ बिल्कुल स्मूथली जुड़ सकें और FM रेनबो का आनंद उठा सकें। फिलहाल आज का समय इन्हीं बातों के साथ पूरा हो चुका है, 11:56 का समय हो चुका है, और ये समय हमें बिल्कुल पूरी तरह से इशारा कर रहा है कि इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे, हम यहीं पर वाइंड अप करें। अगले प्रोग्राम में आपके साथ रहने वाली हैं राधा, और कुछ घंटे आपके साथ ज़रूर रहेंगी, तो बस आप हमारे साथ यहीं जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे है, अब सुनिए एफएम समाचार। वाराणसी में आज दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक का शुभारंभ हुआ। बैठक से पहले विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। बैठक की शुरुआत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के संबोधन से हुई। बैठक में भारत के अलावा चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील और ईरान के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। वहीं रूस, इथियोपिया और मिस्र के प्रतिनिधि हाइब्रिड मोड के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे हैं। इस दौरान सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल कल जनभवन में विभिन्न विधाओं में पारंगत 51 कलाकारों को अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संगीत अकादमी पुरस्कार एक प्रतिष्ठित सम्मान है। अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद सभी विधाओं के कलाकारों को संस्कृति विभाग के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने पर 70,000 रुपये मानदेय प्राप्त होगा। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और पीएम पोषण योजना से जुड़े कर्मियों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आज बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभी संबंधित कार्मिकों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रशिक्षण में भाग लेने का आदेश दिया गया है। चित्रकूट में 29वीं प्रयागराज जोन अंतर जनपदीय वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, अमेरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट की महिला एवं पुरुष टीम हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को भी विकसित करता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित होगा।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा? शत्रुपा से माँ जी।
2: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
1: शत्रुपा से।
3: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
1: शत्रुपा से।
4: हमारी होममेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ नमस्कार। घड़ी की सुइयों में दोपहर के 12:05 हो गए हैं और हमेशा की तरह इस सुहावनी दोपहर में आपके दिन को और भी तरोताजा करने के लिए मैं आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम शत्रु पाले के। दोस्तों कल है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। अब आप कहेंगे कि जब कल है तो हम बात आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बड़े उत्सव की तैयारी तो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है ना। और आज हम जिस उत्सव की बात कर रहे हैं वो है हरियाली का उत्सव। बातें बहुत सारी होंगी लेकिन अभी सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

इस सुहावनी दोपहर में आपके दिन को और भी तरोताजा करने के लिए मैं आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम शत्रुपा लेके। दोस्तों कल है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। अब आप कहेंगे कि जब कल है तो हम बात आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बड़े उत्सव की तैयारी तो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है ना। और आज हम जिस उत्सव की बात कर रहे हैं वो है हरियाली का उत्सव। बातें बहुत सारी होंगी लेकिन अभी सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: हरमानो।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
4: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
5: धड़कता है जो हर दिल में
6: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
3: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो।

चिया घड़ी में 12:11 हो चुके हैं और कार्यक्रम है शत्रुपा, जहां आज आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त राधा। जब बात घर को सजाने की होती है तो क्या किसी बिना पौधे के हम घर को सजा सकते हैं क्या? घर सुंदर लगेगा ही नहीं। और इसीलिए शत्रुपा में हमारी जो चर्चा का विषय है वो है बागवानी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा पौधा ना सिर्फ हमारे घर के कोने कोने को महकाता है बल्कि हमारे मन के आंगन को भी सुकून से भर देता है। तो चलिए अगले एक घंटे प्रकृति की उंगली थाम कर चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर।

0: कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
5: पहचान वही मगर अंदाज है नया।
6: धड़कता है जो हर दिल में
7: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
4: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
5: धड़कन लखनऊ की।

जी 12:17 हो रहे हैं और कार्यक्रम है शत्रुपा, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त राधा। जी हम बात कर रहे हैं बागवानी की, और आपको पता है कि कई शोध बताते हैं कि पौधों के बीच समय बिताने से तनाव कम होता है। मिट्टी को छूना, पौधों को पानी देना और नई पत्तियों को उगते देखना ना मन को शांति देता है। बागवानी एक ऐसी थेरेपी है जो बिना किसी खर्च के हमें मानसिक सुख प्रदान करती है। तो चलिए अभी सुनते हैं ये प्यारा संगीत। अब पता है आपको, गाने भी सुनकर ना बहुत सुकून मिलता है, जैसे कि ये प्यारा सा सॉन्ग आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहां से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहां से लाई है नुस्खा? शत्रुपा से माँ जी।
2: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहां से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
1: शत्रुपा से।
3: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
1: शत्रुपा से।
4: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
6: पहचान वही मगर अंदाज है नया।

0: धड़कता है जो हर दिल में
1: सुबह 6 से रात 12 बजे तक
2: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो
3: धड़कन लखनऊ की
2: Stay tuned 100.7 FM रेनबो
3: धड़कन लखनऊ की
2: Keep listening to 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की
0: जी हाँ 12:26 हो चुके हैं और कार्यक्रम है शतरूपा और आज हम बात कर रहे हैं बागवानी की। अक्सर जब बात बागवानी की आती है तो हम सोचते हैं कि ये तो बस एक शौक है, लेकिन सच कहूं पौधे लगाना सिर्फ मिट्टी में बीज डालना नहीं, ये तो एक वादा है आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और छांव देने का। और हम महिलाएं, हम लड़कियां जो है ना, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और पौधों से एक बहुत ही खास लगाव होता है, गहरा नाता होता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को बहुत स्नेह से सींच कर बड़ा करती हैं, उसी तरह पौधे भी तो हमारी ममता और समय मांगते हैं, है ना। और जब माँ की बात हो रही है तो माँ से खूबसूरत कोई हो सकता है ना, कोई तो नहीं हो सकता। और यही कुछ कह रहा है ये गाना।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: 100.7 एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शत्रुपा, जहां आज हम बात कर रहे हैं बागवानी की। जी हम तो बात कर ही रहे हैं और हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में हमारी एक्सपर्ट भी जुड़ चुकी है, तो चलिए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम शत्रुपा में। हेलो नेहा।
1: गुड आफ्टरनून मैम। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी मुझे इस विषय पर अपने विचार साझा करने का मौका देने के लिए। जैसा कि हमें पता है कि कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और उसके उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
0: हाँ नेहा, तो हमारा जो आज का विषय है वो है बागवानी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि हमारे श्रोताओं को, कि जिन लोगों के पास जगह कम है लेकिन उन्हें बागवानी करनी अच्छी लगती है, तो वो किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं?
1: देखिए आजकल किचन गार्डनिंग ज्यादा ट्रेंड में है, तो ये बेसिकली उसी के लिए होता है। अगर आपके पास जगह कम है तो आप उसमें भी प्रॉपर तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो छोटे लेवल पर फ्रूट, वेजिटेबल, हर्ब, ये सारी चीजें ग्रो करना किचन गार्डनिंग के अंडर में इंक्लूड होता है। तो अगर आपके पास जगह कम है तो आप इसके लिए आपकी बालकनी, टेरेस, विंडो या कोई छोटी खाली जगह हो उसे आप उसमें आप इजिली कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे आप ऐसा प्लेस चूज करें जहाँ पर आपको प्रॉपर सनलाइट मिल सके 4 to 6 hours के लिए। उसके अलावा आप पॉट्स में कंटेनर्स को यूज करके और ओल्ड बकेट, बॉटल, ये सारी चीज यूज करके आप छोटे छोटी जगह पे, कम जगह पे आप बागवानी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। और ये बताइए, इतनी गर्मी में ऐसे में जो पौधे हैं वो स्वस्थ कैसे रहें, क्योंकि अगर उनका ध्यान नहीं देंगे तो सूख जाएंगे, तो उनका ध्यान कैसे दिया जाए?
1: देखिए गर्मी में पौधों को ध्यान देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। जैसे आपको बहुत ज्यादा एक्सेस सनलाइट और हीट को अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान और पानी की कमी पौधों को खराब कर सकती है, उनको सुखा सकती है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी में पौधों से बचाना होता है। और आपको दोपहर में पौधों में वाटरिंग नहीं करनी है। अगर वाटरिंग आपको करनी है तो आप सुबह और शाम के टाइम में कर सकते हैं। उसके अलावा आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है और दोपहर में पानी इसलिए नहीं देना है क्योंकि दोपहर में पानी देने से वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे रूट को फायदा नहीं मिलता है। तो और इसके अलावा आप मल्चिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। मल्चिंग टेक्निक में आप सूखे पत्ते, ग्रास और कोकोपीट को उसके ऊपर डाल सकते हैं पौधों में, ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो जल्दी जल्दी खत्म ना हो।
0: जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने। तो चलते चलते ये बताइए कि कल हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं को ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के लिए अभी तो मुझे जो सबसे ज्यादा जरूरी संदेश ये लग रहा है कि पर्यावरण हमारा

0: बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। बढ़ती हुई गर्मी को देख के आप लोग समझ ही सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस लेवल पे जा रही है। तो मेरा तो श्रोतागणों से यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्लांट्स लगाएं, और जो आप एयर कंडीशनर और ये सारी चीजें, इनका कम से कम इस्तेमाल करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प मिल सके और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सहयोग करें।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए नेहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि मुझे ये अवसर दिया आपने मेरे विचारों को प्रस्तुत करने का। थैंक यू
1: नेहा। तो ये हमसे जुड़ी थी नेहा, और बातें और सारी होने वाली हैं। भाई, कल विश्व पर्यावरण दिवस है और हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं बागवानी की। तो भाई, जब बागवानी की बात हो रही है और एक्सपर्ट से भी बात हो गई है, तो अभी क्या है, तो अभी आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: हरे का नाम है सबसे पहले, हरे का नाम है सबसे प्यारा, कर लो प्रभु जप हरे के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
6: ओम नमः शिवाय।
5: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
7: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ।
5: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
8: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, घड़ी में 12:49 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है शतरूपा, जहां हम आज बात कर रहे हैं बागवानी की। अच्छा, आजकल किचन गार्डन का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। धनिया, पुदीना, मेथी, टमाटर और मिर्च जैसी सब्जियां तो हम घर में ही उगा सकते हैं। इससे ताजी और रसायन मुक्त सब्जियां मिलती हैं और बाजार पर निर्भरता भी कम होती है। क्यों सखियों?

और साथ ही बच्चों को भी प्रकृति और खेती के बारे में सीखने का अवसर भी मिलता है ना? तो किचन गार्डनिंग करिए और घर में ही ताजी ताजी सब्जियां उगाइए। और अभी जो गाना आ रहा है ये आपको ऐसी वादियों में ले जाएगा ना कि बहुत सुकून मिलेगा। भाई मुझे तो ऐसी वादियां बहुत ही अच्छी लगती हैं। और आपको?

दोस्तों, आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब वक्त शत्रुपा का समाप्ति की ओर चल पड़ा है। तो भाई, आज हमने बात की बागवानी की और कल हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो भाई, आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें कम से कम अपने जन्मदिन के दिन और जब भी दिल करे एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, और सिर्फ लगाना ही नहीं चाहिए, उसे एक पेड़ बनने तक सहेजना भी चाहिए। और भाई, इसी के साथ इस कार्यक्रम से हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं, जिसका नाम है होठों पे तेरी बात, इस आखिरी गीत के साथ। और न्यूज़ ब्रेक भी होगा, लेकिन अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली

में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। रोड्रिगेज कल भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरक्षी, नागरिक, पुलिस एवं समकक्ष पदों की 8, 9 और 10 जून को होने वाली भर्ती परीक्षा को लेकर अधिकारियों को समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा की सुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता न होने पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी अभ्यर्थी को अनावश्यक कठिनाई या परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतरजनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। वाराणसी में 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। इसके पूर्व कल वाराणसी पहुंचने पर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार आने वाले मेहमानों का स्वागत किया गया। सम्मेलन में भाग लेने के लिए वाराणसी आए केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि काशी एक आध्यात्मिक नगरी है और सारे विश्व में अपनी एक सांस्कृतिक पहचान रखती है। इसके सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जो हमारी सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिकता को बढ़ाने का कार्य करेगा। प्रदेश के वित्त और लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में मल्हौर और खरगापुर क्षेत्र में सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 128 अंक से बढ़कर 74,474 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक की वृद्धि के साथ 23,449 पर था। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जी हाँ, घड़ी में 1:04 हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो गया है होठों पे तेरी बात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, जहां आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त राधा। कुछ ख्वाहिशें दिल में छुपकर मचलती हैं और कुछ शरारतें खुशियों के पंख लगा देती हैं। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? दोस्तों, हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी कभी हमारे मन में ऐसी शरारतें चलती रहती है कि कहना ही क्या। कभी हम सोचते हैं काश हम उड़ पाते, काश हम गायब हो जाते, काश ये हम कर लेते, होता है ना आपके मन में। तो अगर आपका मन गायब होने का करता है तो आज जिस बात पे हम जुड़ेंगे, जिस सवाल पे हम जुड़ेंगे वो यही है कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप गायब होकर कौन से दो काम करना चाहेंगे। और ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा, ये बताने के लिए आपको हमें मेल करना होगा, अपनी बात को मेल के माध्यम से होटल

आना होगा। हमारा मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com। इस पे मेल करिए और हमें बताइए कि अगर आपको गायब होने का अवसर मिलता है, एक सुपर पावर मिल गई, तो गायब होकर सिर्फ दो ही काम बताने हैं आपको कि कोई दो काम जिसे आप करना चाहते हैं, तो कौन से वो दो काम हैं जो गायब होकर आप करना चाहते हैं। तो भाई अभी आप बताइए, मेल करिए, मेल आईडी तो मैंने बता ही दी है, लेकिन अभी सुनिए ये प्यारा सा सॉन्ग जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: रखने के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि नज्म व नसक से खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना की मीटिंग में मफाद आम्मा की 24 तजावीज मंजूर की गई। शहरी तरक्की के वजीर ए के शर्मा ने बताया कि काबीना ने शहरी ट्रांसपोर्ट खिदमात को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की मंजूरी दी है। ई बसें नोएडा समेत शहरी इलाकों के 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और 18 बड़े शहरों में चलाई जाएंगी। काबीना ने सरकारी वकला के अलाउंस में इजाफे की तजवीज को भी मंजूरी दी। हमारे नामा निगान ने इतला दी है कि काबीना ने खरीफ मार्केटिंग साल 2025-26 के लिए हिमायती कीमत स्कीम के तहत मक्का की खरीदारी की पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने कल दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को मदद फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। मरकजी वजीर जनाब वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के साथ मिलकर नाफिज किया जाएगा। बनारस में आज ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का इफ्तिताह हुआ। मीटिंग से कबल मुख्तलिफ ममालिक से आए नुमाइंदों का रवायती तरीके से इस्तकबाल किया गया। मीटिंग की शुरुआत हिंदुस्तान हुकूमत के वजारत सकाफत के सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल के खिताब से हुई। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान इस बार ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है जो 2 रोज तक मुनक़िद होगी। मीटिंग में हिंदुस्तान के अलावा चीन, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्राजील और ईरान के नुमाइंदे बराह रास्त शामिल हुए हैं। दरियसना रूस, इथोपिया और मिस्र के नुमाइंदे हाइब्रिड मोड के तवस्सुत से मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि इस दौरान अराकीन ममालिक के दरमियान सकाफती तआवुन, विरासत, तहफ्फुज और सकाफती तबादले को मजबूत करने से जुड़े मुख्तलिफ मौजू पर बहस होगी। इस दौरान मरकजी सकाफती सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने बताया,
1: ये लिविंग हेरिटेज है न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की, और यहाँ का जो सांस्कृतिक परिवेश है, यहाँ की जो गंगा जी की जो सुंदरता है, जो हमारी युगीन पुरानी सभ्यता है, उस सभ्यता का ये प्रतीक है। इसलिए इससे अच्छा स्थान ब्रिक्स के कल्चरल ट्रैक की डिस्कशन के लिए नहीं हो सकता, और इसीलिए स्थान को चुना गया।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान के उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत में रियासती हुकूमत ने इम्तिहानी मराकज को रियायती कीमतों पर बस सर्विस फराहम करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक जायजा मीटिंग के दौरान इस सिलसिले में मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत जारी की। मीटिंग में पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि सिविल पुलिस कांस्टेबल और इसके मसावी अहदों के लिए भर्ती का इम्तिहान 2 शिफ्टों में 8, 9 और 10 जून को होगा। इस इम्तिहान में तकरीबन 2.9 मिलियन उम्मीदवारों के शिरकत की तवक्को है। वजीर आला ने वाज़ह हिदायत दी कि किसी उम्मीदवार को धूप में खड़ा ना होना पड़े और इम्तिहानी मराकज में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट रियायती किरायों पर खसूसी बैनजिली बसें चलाएगा। गुज़िश्ता 12 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गैरमामूली तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है। आज हम कारोबार करने में आसानी के शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर बात करेंगे।
2: सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM की शुरुआत की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवसुत से रियासत के नज्म व नसक, आइंदा होने वाले कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती इम्तिहान और मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुजव्वजा अवामी शराकतदारी पर मबनी प्रोग्रामों का जायजा लिया। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 जून आलमी योम माहौलियात से 21 जून बैनुल अक्वामी योम योग तक मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम सिर्फ रस्मी इनेकाद न होकर अवामी शराकतदारी और अवामी बेदारी की मुहिम बने। मीटिंग में वजीर आला ने 8, 9 और 10 जून को 2 मीटिंगों में मुनक़िद होने वाले कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती इम्तिहान की इफ़्फ़त और राजदारी को बनाया।

0: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
1: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
2: धड़कता है जो हर दिल में
3: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
0: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: जी हाँ, 1:17 हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो गया है होटो पे तेरी बात। और जैसा कि आज मैंने पूछा कि हमारे मन में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि काश मैं गायब हो जाता हूँ, तो गायब होने के बाद से आप कौन से दो काम करना चाहेंगे, तो हमारे पास जो है ना मेल भी आने शुरू हो गए हैं। अभी हमारे पास मेल आया है पिंकू सोनी जी का और ये लिखते हैं, मैम जी सादर प्रणाम, आपको भी प्रणाम, आपको भी नमस्ते। मैं पिंकू सोनी आपके टॉपिक के हिसाब से मेरा पहला काम अपने दोस्तों को परेशान करना है, और दूसरा जो लोग अच्छे लोगों को परेशान करते हैं उनकी जमकर धुनाई करना है। अच्छा, और हंसने का सिंबल भी, मतलब मन में आपकी ये खुरापात चल रहा है, आपकी बात ना होठों पे आ ही गई कि जो लोग, भाई अच्छा सोचा आपने कि जो लोग अच्छे लोग हैं उनको परेशान क्यों करना है ना, और इवन किसी को भी क्यों परेशान करना, हम जिंदगी मिली है, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, है ना। और ये इन्होंने लिखा है, मैं टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ, मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, कुलदीप, आकाश, रिंकी पिंकी जी और सभी लिसनर्स को। तो भाई आपका तो मेल हमने पढ़ दिया और बहुत सारे मेल आए हुए हमारे पास में। अभी एक मेल आया है हमारे पास में चंदन जी का और ये लिखते हैं, हेलो मैम, रामपुर से चंदन तुरेहा, काफ़ी दिन के बाद मैसेज कर रहा हूँ, अगर बात करी जाए तो सुपर पावर की, मैं तो सबको खाना खिलाऊंगा, राम राम। अच्छा, तो ऐसा क्यों चंदन जी, मतलब सुपर पावर मिलने के बाद आप खाना खिलाएंगे? अगर आपकी इच्छा है, लोगों को आप खाना खिलाना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, उसके लिए सुपर पावर की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे लगता है कि आपके पास जितना है ना, आपके पास थोड़ा भी है, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन उनको नहीं देना होता है, उनको नहीं, सिर्फ वो होता है ना अपने लिए जीना। तो मुझे लगता है लाइफ तो वो है ना जो दूसरों के लिए जी जाए। भाई आप लोग भी जो हमें सुन रहे हैं, जल्दी जल्दी मेल करिए और बताइए कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाती है जिससे कि आप दो काम ऐसे जो आपके मन में है जो गायब होने के बाद से आप करना चाहते हैं, तो कौन सा करना चाहेंगे, जल्दी से बताइए, मेल करिए। फिलहाल अभी सुनिए ये प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, घड़ी की जो सुइयां है वो बता रही हैं कि 1:26 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है होठों पे तेरी बात। जी बहुत ही मजेदार आपके जो जवाब आ रहे हैं। तो भाई हमने क्या पूछा कि अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाती है जिससे आपको गायब होने का मौका मिलता है तो आप कौन से दो काम करना चाहेंगे। तो भाई बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, जिसमें अभी हमारे पास जो मेल आया है वो है सुधाकर जाधव जी का। होठों पे तेरी बात आज के टॉपिक के हिसाब से गायब अगर मैं हुआ तो पहले मैं बॉर्डर पर जाऊंगा और दुश्मनों का हिसाब करूंगा। अच्छा सोचा है। वो लोग सोचेंगे कि अरे क्या हो रहा है, मतलब वो लोग भी चौंक जाएंगे कि अचानक से ढेर सारे वार कहाँ से हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या जादू है ना। अच्छा सोचा आपने। और इन्होंने ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से लिखा है, श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख। यानी कि बहुत सारे लोगों ने मेल भेजा है आपके साथ साथ। ये अगला मेल हमारे पास आया है रोशनी रावत जी का। नमस्ते राधा मैम जी, आप कैसी हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ, 12 बजे से जुड़े हुए हैं आपके साथ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच रोशनी। अच्छा ऐसे मतलब बातें आप लोग बताते हैं ना कि 12 बजे से बड़ा अच्छा लगता है कि कितना हमारे कितने अच्छे लिसनर हैं, अपना समय दे रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, इसका फीडबैक भी दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच रोशनी जी। आगे लिखती हैं कि मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम व पोस्ट बमहना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। टॉपिक, अगर मुझे गायब होने का मौका मिला तो मैं FM रेनबो स्टूडियो आ जाऊंगी और दूसरा काम क्या करेंगे कि पहाड़ों पर जाना चाहूंगी, वहीं पर रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा होता क्या है ना कि प्रकृति, अभी हमने बात की कि कल विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो प्रकृति कितना खूबसूरत होता है, कितनी खूबसूरत है। जब भी आप कहीं जाते हैं तो पेड़ पौधे पहाड़ देखकर कितना मतलब सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है, उसका कहना ही क्या है ना जी। चंदन जी का तो हमने पढ़ लिया था, आपने बार एक और बार भेजा है, तो जिनका जिन्होंने मेल भेज दिया है, जिनका हमने पढ़ लिया है, वो बार बार बार भेजेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। दूसरे लोग का फिर नहीं आ पाएगा ना मेल पे हमारे पास में। ये आया हमारे पास में महेंद्र जी का, महेंद्र दीपान जी का। आदरणीय RJ राधा मैम जी, सादर नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मैं महेंद्र देपन गांव रूड़ जिला नागौर राजस्थान से हूँ। मैम जी आपकी, आपको पहली बार सुन रहा हूँ, आपकी आवाज़ वाकई काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। और पता है मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपके लिए महेंद्र जी, आपने इतना खूबसूरत सा ये जो पोस्टर बना के भेजा है ना, मतलब पर्यावरण दिवस का, और इतना खूबसूरत ये मैसेज, और साथ में आपने मुझे भी मतलब मेरी भी तस्वीर बना के भेजी, हालांकि ये मैं नहीं हूँ लेकिन आपने कोशिश की है उसके लिए। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी मेहनत की है ना, जिसने मेहनत की उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। आगे लिखा है, मैं महेंद्र देपन राजस्थान के नागौर ज़िले के रूढ़ गांव से आपका ये कार्यक्रम होठों पे तेरी बात बड़े चाव से सुन रहा हूँ। आज का विषय वाकई बहुत ही रोमांचक है। अगर मुझे गायब होने की सुपर पावर मिले तो मैं अपने जीवन में ये दो काम करना चाहूँगा, पर्यावरण की सेवा। मैं चुपचाप उन दुर्गम और खाली जगहों पर जाकर बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाऊंगा जहाँ इंसान का पहुंच पाना मुश्किल है। बिना किसी दिखावे के प्रकृति को हरा भरा करने का ये कार्य मेरे लिए सबसे संतोषजनक होगा। और दूसरा इन्होंने लिखा है कि मैं उन लोगों की मदद के लिए आगे आऊँगा जो अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकते, बिना किसी के जाने सही समय पर सही जगह पहुंचकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करूँगा। आशा है कि आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। बहुत सारी प्यार भी आपने दिया है FM टीम को, शुभकामनाएं भी दी हैं, बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से आपको भाई, क्योंकि इतना मेहनत, मतलब सच में मैं क्या ही बोलूं आपकी इस मेहनत के लिए। इन्होंने जो पर्यावरण की जो जो इन्होंने बोला है सेवा करने, उसकी अलग से पोस्टर बनाया हुआ है, हेल्प का अलग से बनाया हुआ है, प्रकृति का अलग से बनाया हुआ है, और मेरा अलग से, मतलब इतना

खूबसूरत मर्ज करके एक ही पोस्टर में आपने बनाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे ही कार्यक्रम सुनते रहिए, और जो आपके दो विचार हैं ना वो बहुत अच्छे हैं सच में। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं तो चाहती हूँ कि आपको ये क्या और भी बहुत अच्छी अच्छी सुपर पावर मिले, ताकि आपकी जो ये विचार हैं वो सच हो जाए, है ना। तो भाई इतने प्यारे प्यारे आपके मेल आ रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। अब बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से उन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून मैम, बोलो राम बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून मैम, इनको प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। हमारे वहाँ 100.7 एफएम की फ्रिक्वेंसी नहीं चल रही है, न्यूज़ ऑन एआईआर के थ्रू सुन रहे हैं टॉपिक पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे गायब होके और कुछ करने का मौका मिले तो मैं रेडियो के स्टूडियो घूमना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे हर चीज़ जानना होता है कि ये चीज़ कहाँ से हो रही है, ट्रांसमीटर क्या है। अच्छा, आपके मन में जिज्ञासा बहुत सारी है ना, तो ये तो अच्छी बात है, जिज्ञासा तो होना चाहिए कि आपके मन में ये जिज्ञासा है कैसे क्या होता है। तो मुझे लगता है कि आपकी विश पूरी हो जाएगी जल्दी ही, है ना। और जो अगला मेल आया है वो है वकील अहमद जी का, नमस्ते मैम जी, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, होठों पे तेरी बात कार्यक्रम अच्छा लगता है, ऐसा हो सके तो रब से दुआ करेंगे कि गर्मी से राहत मिल जाए, और दुआ करेंगे बारिश हो, इस समय आम की बाग में है वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी ज़िला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दकी, ऐमन नवाब। अच्छा, कितना अच्छा लगता है ना, आप लोग इतने प्यार से सारी बातें, मतलब डिटेल में सारी बातें हमें बता रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपकी जो विश है वो पूरी हो, और कार्यक्रम सुनते ही रहिए, और हमें ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। देखिए, बातें भी हो गई, हमने मेल भी पढ़ लिए, लेकिन अभी क्या ज़रूरी है, अभी ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा सा गाना सुनवा दें, ताकि आप और ज़्यादा इंजॉय करें, झूमने लगे। और ये गाना जो है ना बिल्कुल झुमाने वाला ही है, तो चलिए इंजॉय करिए इस प्यारे से ब्यूटीफुल ट्रैक को।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
5: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
6: धड़कता है जो हर दिल में
7: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
4: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
5: धड़कन लखनऊ की।
4: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम होटो पे तेरी बात, और स्टूडियो की घड़ी में 1:43 हो चुके हैं और आपके मेल भी ढेर सारे आ रहे हैं हमारे पास में। जो ये अगला मेल मैं पढ़ने जा रही हूँ ये है वारिस अली खान जी का। लिखते हैं, राधा जी आज का टॉपिक रोचक है, आपने तो सपनों की दुनिया में पहुँचा दिया। अच्छा जी, अगर मुझे गायब होने का पावर मिल जाए तो मेरा पहला काम होगा मैं देश के आंतरिक दुश्मनों का पता लगाकर सरकार को सूचित करूँगा, और दूसरी बात मैं अपनी लिखी हुई गज़ल को सलमान खान को दूंगा ताकि वो फिल्मों में ले सकें। ये लिखा है एडवोकेट वारिस अली खान जी ने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। लिखते हैं, राधा जी मैं यथार्थ पर विश्वास करता हूँ, हकीकत की ज़मीन पर रहना पसंद करता हूँ, लेकिन आपका टॉपिक अच्छा लगा इसलिए अपनी बात आपके सामने रख दी। भाई बहुत अच्छा लिखा है आपने, और ये दोनों चीज़ें सच में ये जो विषय है इससे संबंधित है। मतलब पहला तो बहुत ही ज़्यादा संबंधित है कि आप दुश्मन जो छुपे हुए दुश्मन है कौन है क्या है कहाँ है नहीं पता, उसको तो जाहिर सी बात है ऐसे आप पता अगर लगा लोगे और सरकार तक पहुंचा देंगे अच्छी बात है। दूसरा कि आपकी लिखी हुई गजल, मैं दुआ करूंगी कि आप जो भी गजल लिखते हैं वो आप जहां पहुंचाना चाहते हैं, जो भी आप सफल होना चाहते हैं, आप जीवन में सफल होइए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए, ये तो मैं आपके लिए दुआ करती हूं कि आपकी जो विश है ये पूरी हो जाए। और नेक्स्ट हमारे पास आया है राम राज जी का मेल, श्री गणेशाय नमो नमः, होठों पे तेरी बात, जिला रायबरेली, गांव पहाड़ीपुर से। राम राज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू, पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से राधा बिटिया को प्यार भरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार रामराज जी, और शुभ आशीर्वाद पहुँचे। थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग्स की मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे कोई इतने प्यार से ब्लेसिंग देता है ना तो मतलब मैं क्या ही बताऊं। और अगर आपको गायब हो, अच्छा ये विषय पर उन्होंने लिखा है कि अगर गायब होना पड़े तो सबसे पहले अपने ही लोगों से जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनसे बदला लूँगा, और जो मुसीबत के मारे हैं उनकी मदद करूँगा। अच्छा सोचा है आपने रामराज जी ने, और आपने हमें ढेर सारा ब्लेसिंग दिया उसके लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने लिखा है कि जो कभी कभी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने कि आस्तीन का सांप इसी को तो कहते हैं कि कभी कभी आपके अपने ही आपको एंड वक्त पे आपको धोखा दे जाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि ये तो हमारी मदद ज़रूर करेंगे, या फिर लोग खुद भी कमिटमेंट करते हैं और एंड टाइम पे आपको धोखा दे देते हैं। तो उनसे आप बदला लेंगे और जो मुसीबत में है उनकी आप मदद करेंगे। तो बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि पावर के बिना भी आप मदद कीजिए, ताकि लोगों को आप मदद करेंगे तो आपके साथ भी ईश्वर अच्छा करेंगे, है ना। कहते हैं ना कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। ये भैया मोनू सेठ जी ने लिखा है, मेरी

से विनती है कि अच्छा मानसून आए, अच्छी बारिश हो जिससे किसानों के चेहरे खिल जाएं, फसल अधिक उपजे। अच्छा, इन्होंने इस टॉपिक पे तो कुछ और नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है, ये लिखा है सुधाकर जाधव जी ने, होठों पे तेरी बात, हम जो गायब हो गए तो कौन से दो काम करेंगे। मैंने पहले मैसेज में एक काम बोल दिया था, लेकिन दूसरा काम मैं ये करूँगा, महिला को जो त्रास देता है उसको उसका हिसाब करूँगा और उसकी धुनाई करूँगा। और अच्छा, हुडा बल्ली सरीके गुन्हे में जो गुनहगार को हिसाब चुकता करूँगा। थोड़ी सी स्पेलिंग वो है, लेकिन चलिए अच्छी बात है कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि जो महिलाओं के साथ गलत करते हैं तो उन बिल्कुल अच्छी सोच है आपकी। और हमारे पास वकील अहमद जी का तुमने पढ़ ही लिया था। अच्छा, ऐसा हो जा रहा ना कि कभी एक ही लोग दो तीन मैसेज भेज दे रहे हैं, तो उससे ये हो जाता है कि वो बार बार वही मैसेज आ रहा है ना। तो इससे आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आपने मैसेज भेज दिया है, मेल भेज दिया है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए ताकि दूसरे लोग जो हैं उनको भी मौका मिले, है ना। और बात तो आपकी सही है, बातें बहुत सारी है आपके पास में, हमारे पास में, लेकिन अभी क्या, अभी तो हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। और पता है, आप लोगों से बात करते करते, और ये सच भी है कि आप लोग इतने प्यारे हैं ना, कि आप लोगों से, श्रोताओं से किसी को भी इश्क हो जाएगा और आपके इश्क में पढ़ने के लिए वो तैयार रहेगा, है ना।

0: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
1: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
2: धड़कता है जो हर दिल में
3: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
0: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
4: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: देखिए धीरे धीरे वक्त कैसे बढ़ गया पता ही नहीं चला और इस कार्यक्रम को वाइंड अप करने का भी समय आ चुका है, लेकिन आपके जो मेल्स हैं हम इसे जरूर पढ़ेंगे। जो ये अगला मेल हमारे पास आया है, मोनू सेठ जी ने फिर से लिखा है कि बचपन में सोचता था कि गायब होकर जो हमारे पड़ोस में दुकान थी उसमें अच्छे बिस्किट नमकीन निकाल लाऊं और खूब खाऊंगा, उनको भी पता नहीं चलेगा और हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अब खुद अपने शॉप कर ली। अच्छा, इनकी खुद की शॉप है तो गायब होने का इरादा ही नहीं रह गया मैम जी। अच्छा, कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे सोच रहते हैं मन में। अगर आपका ये मन बचपन का था अच्छी बात है, लेकिन चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है ना, है ना। गायब होने का मतलब ये नहीं कि हमें चोरी करनी चाहिए, है ना। ये मैसेज भेजा है उदय भान पाल जी ने, कार्यक्रम के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को सादर नमस्कार। अच्छा, अभी हॉटमेल नहीं है, अभी किसी भी गीत में, अभी कार्यक्रम है होटो पे तेरी बात, और जो कि बिल्कुल वाइंड अप की ओर है, जल्दी से आप लोग के मैसेज में पढ़ लूँ। सतीश अनेजा जी ने लिखा है, राधा बहन जी नमस्कार, अगर मैं गायब हो गया तो देश के लिए ऐसा ज़रूर कुछ करूँगा जिसका सबको मुझ पर नाज हो, खुद को भी गर्व होगा, खुद पर भी मैं अच्छी सोच रखूँगा, गायब होना व्यर्थ नहीं जाएगा। चंडीगढ़ सिटी सतीश, अच्छा चंडीगढ़ से लिखा है सतीश अनेजा जी ने, अच्छी सोच है आपकी। और ये लिखा है उत्तम कुमार भगत जी ने, गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, अभी अभी अभी हॉटमेल नहीं है, अभी आप लोगों ने अभी से ही फरमाइश भेज दी है ना, तो भाई धीरे धीरे जो है ना ये कार्यक्रम वाइंड अप की ओर आ चुका है और

अंतिम गाने के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई जो अगला कार्यक्रम है वो है हॉट मेल, और जिसमें आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं, जिसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप सुनिए ये गीत, और इस गीत के बाद हम न्यूज़ सुनेंगे, और न्यूज़ के बाद आप कार्यक्रम आएगा हॉट मेल। तो अभी इंजॉय करिए इस प्यारे से खूबसूरत से गीत को।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी सूरत में 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे, जो आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रतिनिधि प्रदेश है। पर्यटन विकास को केवल आधारभूत संरचना निर्माण तक सीमित न रखते हुए उसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आज लखनऊ में पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को नई गति देने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन विकास के माध्यम से स्थानीय उत्पादों

हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, खान पान, संस्कृति और सेवा क्षेत्र की भी व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल जनभवन में विभिन्न विधाओं में पारंगत 51 कलाकारों को अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संगीत अकादमी पुरस्कार एक प्रतिष्ठित सम्मान है। अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद सभी विधाओं के कलाकारों को संस्कृति विभाग के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने पर 70,000 रुपये मानदेय प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार ने आज प्रांतीय पुलिस सेवा PPS के 206 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। लखनऊ में तैनात तकरीबन 12 डिप्टी SP का भी तबादला हुआ है। तबादले के क्रम में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिस उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार द्वितीय को शाहजहांपुर भेजा गया है। महाराजगंज में तैनात अनिरुद्ध कुमार को महोबा, अशोक कुमार मिश्रा द्वितीय को भदोही से सेना नायक 30वीं वाहिनी PAC गोंडा, अभिषेक सिंह को कौशाम्बी से बलरामपुर, अजय कुमार श्रोतिया को झांसी से अमरोहा, पंकज पंत को शाहजहांपुर से रामपुर, उदय प्रताप सिंह द्वितीय को गोरखपुर से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त बनाया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
6: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
7: धड़कता है जो हर दिल में
8: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
5: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
6: धड़कन लखनऊ की।
5: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

जी बहुत बहुत स्वागत है, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की। स्टूडियो की घड़ी में 2:05 हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो गया है हॉटमेल। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राधा। ये शो है आपका जहां आपकी प्लेलिस्ट तय होती है, आप सॉन्ग तय करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं आप, इसके लिए आप हमें मेल भेजते हैं। तो हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com पर मैसेज करिए, मेल भेजिए और अपनी पसंद के गाने सुनिए। अच्छा, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जिनके मैसेज मेल जो है हमारे पास आ गए हैं, लेकिन जी पहला गाना जो मैं बजाने जा रही हूँ वो ऐसे श्रोता है जो कुमार सानू के बहुत बड़े, उन्होंने बताया है कि वो फ़ैन है, उनको पसंद है। तो भाई जो गाना है हम आपको सुनवा देते हैं, मुझे लगता है कि ये गाना उनके साथ बाकी लोगों को भी पसंद आएगा। तो चलिए उनकी पसंद का ये गाना जल्दी से हम आपको सुनवाते हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

पहुंची है, 2:15 हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो गया है हॉट मेल। और आपकी जो मेल भी हमारे पास है ढेर सारे आ रहे हैं, तो सब जो मेल मैं पढ़ रही हूँ ये है राजेश खोबर खेड़े जी का, और ये लिखते हैं शिवानी नगर देशमुख तहसील आकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से। ओके, प्रसारक जी को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है और इनके साथ हैं राजेश खोबर खेड़े, शिव सागर खोबर खेड़े, इंदिरा बाई खोबर खेड़े, दीपाली स्वराज और सुनैना तनुजा। और इन्होंने अम्ब्रेला भी बना के भेजा है, फ्लावर्स भी बना के भेजे हैं और लास्ट में लिखा है थैंक यू, हमें इस फिल्म का ये गाना सुनना है। बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। और ये अगला मेल है हमारे पास, ये आया है आदरणीय उद्घोषक जी को प्यार भरा नमस्कार, और सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके जी का। और मैम हमें इस गीत में या अन्य गीत में ज़रूर शामिल करें, इनायत होगी। अच्छा ऐसा होता है ना, बहुत सारे गाने हैं, हमने गाने जो हैं आप ही के पसंद के बजने हैं, लेकिन किसकी पसंद के बजने हैं ये जिसके गाने बज जाएं वो

से चुप्पे से हमें थैंक यू मेल भेज दें, है ना। और ये है राजे, अच्छा ये राजे जी का तो मैंने पढ़ लिया था अभी। हमारे पास ये आया है रवि कुमार राहुल रवि, इस फिल्म का ये गाना सुनना है, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, ठीक है। और ये लिखा है हमें अजीजा अहमद ने लिखा है, नाम अजीज अहमद, अच्छा पता है इनका, ग्राम व पोस्ट तिहार जिला सीतापुर, मुझे बहुत पसंद है आपके बात करने का अंदाज़, अच्छा थैंक यू सो मच। मेरा जिगरी दोस्त पुष्पेंद्र श्रीपाल पकड़िया, मुझे नहीं पता वो क्यों नाराज़ है, 3 साल हो गए हैं, बस एक बार मुझसे बात कर ले, मुझे पुष्पेंद्र की बहुत याद आती है, बहुत ही मिस करता हूँ, और दो दोस्त के बिछड़ने पर अभी वो वियोग श्रृंगार मुझे प्रकट हो रहा है, तो मुझे इस फिल्म का ये गाना सुनवा दीजिए। क्यों, दोस्ती में नाराज़गी होती है, थोड़ा तो हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अपने दोस्त को छोड़कर जाना चाहिए। अभी देखिए, मुझे लगता है कि अगर वो सुन रहे होंगे तो आपसे ज़रूर से ज़रूर संपर्क करेंगे। ये है सिद्धार्थ जी का, सिद्धार्थ गुडाने, आदरणीय प्रसारक महोदय जी को सप्रेम नमस्कार, हमें इस फिल्म का ये गाना सुनवा दीजिए। सिद्धार्थ गुडाने, अर्चना ताई गुडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि जी, है ना। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सबके मैसेज तो कम से कम पढ़ लूँ, गाने तो कुछ लोगों के ही प्ले हो पाएंगे क्योंकि समय 1 घंटे का ही होता है। उदय भान पाल जी, कार्यक्रम के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को सादर नमस्कार, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। अच्छा इनको ये बड़े मतलब हमारे चहेते वाले श्रोता होते हैं कि इनको पता होता है कि मैम जी 1 घंटे में सबकी तो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, कुछ लोग नाराज़ होते हैं जिनसे हम पहले ही सॉरी बोलते हैं, है ना। लेकिन आपने ये लिख दिया कि किसी भी गाने में हमें शामिल कर लीजिए, तो भाई ये आपने काम आसान कर दिया। और ये आपने लिखा है रजौनी ज़िला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और पूरा इनका परिवार। भाई मेल बहुत सारे हैं, गाने हमने क्यू करके रखे हैं, जिनकी पसंद का बज रहा है वो चाहे तो थैंक यू भेज सकते हैं, नहीं तो इंजॉय करिए अपने रेडियो सेट पे आपकी पसंद के इस गाने को।

0: विकास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

2:28 हो रहे हैं और कार्यक्रम है हॉट मेल, और आपके जो मेल है ना वो बहुत सारे आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो जिनके गाने बज गए ना उन्होंने थैंक यू भी लिख दिया है, और जिनके नहीं बजे वो नाराज भी हो रहे हैं। जी जो ये अगला मेल आया है, ये आया है संदीप मक्कर जी का, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल साहनी, अच्छा इन्होंने लिखा है पिंगा वाला चौक गोरिया जलंधर से। मैम हमें इस फिल्म का ये गाना सुनवा दीजिए। ये बाबू यादव जी ने लिखा है कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता को मेरा सादर नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार, लिखते हैं कि हमें इस फिल्म का ये गाना सुनवा दीजिए। और इन्होंने लिखा है पसंद करने वाले हैं बाबू यादव, श्रीमती मंशा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव, अन्नू यादव और अरुणेश यादव, देवकी विहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से। ये लिखा है नरेश जी ने, नमस्कार जी आपको, आरजी राधा जी आपको नमस्कार, दीदी जी प्लीज़ पूरा पढ़ना, अच्छा इस फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिव जी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। ताज मोहम्मद जी ने लिखा है आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, आदरणीय प्रसारक जी आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत में शामिल कीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। एक शिकायती वाला भी मेल आ गया हमारे पास में, मैडम जी हमारा नंबर कब आएगा है, तारीख पे तारीख है, इतना इंतजार कर रहे हैं आप, इतनी तारीख दी जा रही है, नाराज है हमसे हमारे एक श्रोता, जय जी हमारा नंबर कब आएगा जी, मैडम जी होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जय राम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है। ठीक है भाई बिल्कुल। और भाई मेल तो हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जिसका जो गाना है ना वो सुनवा ही देते हैं, लेकिन भाई सबका गाना हम नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसके लिए हमें क्षमा प्रार्थी चाहते हैं, है ना। और जिनका गाना आ रहा है वो तो एंजॉय करिए, लेकिन जो नाराज़ है प्लीज़ नाराज़ मत होइए, आपका भी गाना भी प्रोग्राम

जी हाँ, कार्यक्रम जो है हॉट मेल, और आपके ढेर सारे मेल हमारे पास आ गए हैं। तो जो ये मेल लिखा है, सतीश अनेजा जी ने लिखा है, सबसे पहले लिखा है, कोई नाराज़गी है हमसे बहिना? नहीं नहीं हमें अपने भाइयों से, अपने श्रोताओं से नाराज़गी कैसे होगी बताइए। नमस्कार राधा बहन जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं, कार्यक्रम सुनते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें मेल भेजते हैं। और बहुत ही सुंदर मेल लिखा है आपने, मुझे लगता है कि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, जिस प्रकार से आपने सजा हो जाके लिखा है ना, बहुत सुंदर लिखा है कि शुरू से ही प्रोग्राम सुन रहे हैं, समय पर ईमेल भी की, और अब इंतज़ार हो गई, इंतज़ार पे इंतज़ार, देखो क्या होता है आगे, आगे क्या हुआ, अच्छा हुआ ना। कहते हैं कि इंतज़ार का फल, सब्र का फल मीठा होता है, तो देखिए हमने आपका मेल तो शामिल कर लिया है। आपने लिखा है चंडीगढ़ सिटी से, और सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और आपने धन्यवाद भी लिखा है, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। और आपने लिखा इस फिल्म का ये गाना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस फिल्म का ये गाना आपको सुनवा दें। हमारे पास अगला जो मेल आया है वो है डीके जी का आया है, न्यू दिल्ली से, कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु जी का, अच्छा इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है, ठीक है। और दिल्ली में मौसम बारिश का हो रहा है, अच्छी बात है भाई, थोड़ी बारिश यहाँ भी भेज दीजिए। संजय ढींगिया जी का आया है, बागपत उत्तर प्रदेश से ये जो मेल आया है, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, नमस्कार जी, प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच संजय जी, आपका जो ये मतलब प्रोत्साहन आप हमें देते हैं ना, मन बहुत खुश हो जाता है। शानदार गीत, लाजवाब प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और आपने हमें ये मेल किया है प्यारा सा, थैंक यू सो मच। और आपने गीत की फरमाइश तो नहीं की है, लेकिन आपके लिए भी हम अच्छा सा गीत बजाएंगे, क्योंकि आप वो हमारे श्रोता होते हैं जो बोलते हैं कि हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। ये है मेल आया हमारे पास विक्रम जी का, और नमस्कार जी, सादर प्रणाम, हमें इस फिल्म का ये गाना सुनवा दीजिए, गांव कलाना राजस्थान से, विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश कड़वासरा और युधव कड़वासरा। भाई बहुत सारे मेल हमारे पास आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि जल्दी से आपकी ही पसंद का एक गाना सुनवा दें, और जिसकी पसंद का गाना है ना, मुझे पता है कि आप झूमने वाले बैठे बैठे, मैंने यहीं से देख लिया, देखिए मतलब मैं कितना दूरदर्शी हूँ ना, मुझे पता चल गया कि आपका 11 बजेगा और आप झूमने लगेंगे, तो भाई जल्दी से आपकी पसंद का गाना हम प्ले करते हैं, एंजॉय करिए है।

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी, या 2:46 हो चुके हैं और कार्यक्रम है हॉट मेल। आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश रह रही है ताकि मैं सबकी जो फरमाइश है पूरी कर सकूं, लेकिन ऐसा 1 घंटे में मुमकिन तो

है ना, इसलिए जिनकी फरमाइश पूरी नहीं हो पा रही है वो नाराज़ ना हो। और मैंने कोशिश की है कि कम से कम सबके मैसेज तो मैं पढ़ ही लूँ। अभी जो मेरे पास जो मेल आया है वो है तुलसी जी का, और तुलसी मस्कीन, होस्ट मैडम राधा जी, दिल्ली काली घटा के साथ बहुत ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई है, अब तो मेल ले लीजिए, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन। देखिए बिल्कुल हमने आपका मेल ले लिया, और बारिश जो हो रही है ना, तो सोचिए मौसम कितना प्यारा हो गया आपकी तरफ, है ना। ये मेल हमारे पास आया है रविंद्र मोहन दास जी का, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी। बिल्कुल हम आपको गीत में शामिल करेंगे रविंद्र जी, और मेल लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लिखा है हमें, जो मेल लिखा है वो लिखा है रोज़ी डिकॉस्टो जी ने, गुड आफ्टरनून मैम, जनकपुरी सहारनपुर से, और जॉन डिकैस्ट्रो, रोज़ी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, हमें अपनी पसंद के किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और उन्होंने हमें एक रेड रोज़ भी भेजा है, इन्हों कैसे पता कि मुझे रेड रोज़ बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच इतना प्यारा मेल भेजने के लिए और इतना सजा के भेजने के लिए। और आपने लिखा है ना किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, बिल्कुल जो अगला गीत आ रहा है समझिए वो आप ही का है, आप ही के लिए है। और ये है आकाश कुमार जी का, आंचल वर्मा फ्रॉम हरदोई। अच्छा इन्होंने भी बहुत सुंदर सजा के इतने ढेर सारे फ्लावर भेजे हैं, दिल भेजा है, मतलब मन गार्डन गार्डन हो गया मेरा। थैंक यू सो मच आंचल वर्मा जी। आकाश कुमार के आईडी से आया है आंचल वर्मा फ्रॉम हरदोई, गुड आफ्टरनून डियर मैडम जी, प्लीज़ मैम आज मेरा भी सॉन्ग प्ले कर देना, काफ़ी दिनों से मेरा सॉन्ग नहीं प्ले हुआ है। अच्छा ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो सॉन्ग है हम प्ले कर सकें। ये आया है मनी राम पाल जी का, ग्राम पोस्ट बिरखेरा, ज़िला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से, मनी राम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, और इन्होंने लिखा है कि हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, बिल्कुल। ये मेल आया हमारे पास लाल गिरी जी का, कार्यक्रम पेश करता राधा दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार, आप कैसे हो दीदी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको दिल से धन्यवाद दीदी जी, कोई भी सॉन्ग हमें सुनवा दीजिए, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। ये लिखा है, इन्होंने लिखा है लालगिरी जी ने, रघुनाथपुरा ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से, लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी जी, बिल्कुल ये जो आप लिखते हैं ना किसी भी गीत में, तो समझिए जो जितने गीत बज रहे हैं वो सब आप ही के लिए तो हैं, है ना। और ये लिखा है गुरमीत सिंह जी ने, खुशनुमा बारिश, आज मौसम बड़ा बेमान है। अच्छा बारिश, चलिए अच्छी बात है। उन्होंने लिखा है साउथ दिल्ली से, और इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है। अच्छा तो भाई मौसम तो प्यारा है ही, और आप लोग के मेल जो हमने पढ़े ये भी बड़े प्यारे प्यारे से हैं, तो भाई देर ना करते हुए आप लोगों की पसंद, जो लिसनर जिसकी पसंद का ये गाना है वो एंजॉय करिए, और इस गीत को खूब प्यार से सुनिए, है ना। और आगे भी बहुत सारे मेल हैं, लेकिन अभी ये प्यारा सा गीत।

देखिए, आपसे बात करते करते जो ये कार्यक्रम है हॉट मेल, बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुका है. और भाई, जल्दी से हम आपके मेल पढ़ लें जिनका मेल शामिल हो चुका है और गीत नहीं शामिल हुआ, उनके लिए हम भाई क्षमा प्रार्थी हैं. हमने पूरी कोशिश की कि आप सभी की पसंद के गीतों को हम प्ले करें. अभी जल्दी से आपके मेल पढ़ देते हैं क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास में. कमलकांत गुप्ता जी का है, अंत में नाम ही शामिल कर लें, दुखी ना कर राधा जी हमें खुश होने दो. अरे बिल्कुल खुश रहिए कमलकांत जी. देखिए, हमने आपका नाम शामिल कर लिया. इन्होंने लिखा है समडील नवापारा से, मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता जी, बिल्कुल. और ये है हमारे पास अहमद जी का आया है. बहन जी आदाब, नमस्कार, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है. थैंक यू.

निराश और नज़रअंदाज मत करना, बिल्कुल हम आपको क्यों ही निराश और नज़रअंदाज करेंगे। देखिए हम आपका नाम शामिल कर रहे हैं, रामेश्वर जी का मेल आया है, हॉट मेल कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता राधा जी, क्या मेरा मेल शामिल नहीं करेंगी? हम कब तक इंतज़ार कर रहे हैं, आप सजे हुए सभी का मेल शामिल कर रही हैं बहन राधा जी, प्लीज़ हमारा भी। देखिए हमने बिल्कुल आपका मेल शामिल कर लिया है, अब जल्दी से हम सिर्फ नाम पढ़ पाएंगे। बिट्टू गगनेजा, कमल कांत गुप्ता, शहरूर नूर अंसारी, नवी हसन, आफ्ताब अंसारी, मंगल मंगल जी ने मंगल जनागल, स्वर्ण सिंह, नवी हसन, साई गायकवाड़, मोहम्मद फरमान, सुरेश नारंग, कमलकांत गुप्ता, आफ्ताब अंसारी, बोधराज खोरवाल और मणिपाल जी, मतलब ये सारे लोगों ने मेल भेजा। देखिए समय बहुत कम है, जल्दी से चलते चलते एक गाना आपको प्ले सुना ही देते हैं और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में सतरंगी दुनिया में, इस न्यूज़ इस गाने के बाद और न्यूज़ के बाद।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अग्निशमन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बहुमंजिला भवनों, सरकारी व निजी दफ्तरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल और होटलों की व्यापक स्तर पर सघन जांच करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में आग लगने की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जांच कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि संबंधित भवनों में आग से बचाव के सभी उपाय हैं या नहीं, अन्यथा घटना होने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वाराणसी में आज दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक का शुभारंभ हुआ। बैठक से पहले विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। बैठक की शुरुआत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के संबोधन से हुआ। बैठक में भारत के अलावा चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील और ईरान के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए हैं। वहीं रूस, इथियोपिया और मिस्र के प्रतिनिधि हाइब्रिड मोड के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे हैं। इस दौरान सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज आगरा में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रशासनिक समन्वय बैठक की। बैठक में श्री चौधरी ने

अधिकारियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की संचालित योजनाओं और विकास कार्यों को समय से पूरा किया जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने सफल 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। इसी को लेकर पार्टी और सरकार ने व्यापक कार्यक्रम तय किए हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम पर्यावरण दिवस से शुरू होंगे और 21 जून योग दिवस तक आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों की उम्मीदों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने परीक्षा केंद्रों तक रियायती दरों पर बस सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग को अंतर जिला विशेष बसें रियायती दरों पर चलानी चाहिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि 6 जून को परीक्षा व्यवस्था का पूर्वाभ्यास किया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, दोपहर के 3:06 हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो गया है सतरंगी दुनिया। जिसे लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त राधा। जी बाहर तो चिलचिलाती धूप है और

0: इन स्टूडियो में अभी बहुत कूल कूल माहौल है। अभी हमारे दोस्तों ने हमें मेल किया कि दिल्ली में बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा है, तो वो ठंडा जो मौसम है यहाँ भी आ गया है। लेकिन एक बात तुम्हें बताना भूल ही गए कि मेरे साथ आज मैं अकेली नहीं हूँ, आज मेरे साथ बंटी भी है।
1: दीदी मैं तब से सोच रहा था कि आप मेरा इंट्रोडक्शन

0: बंटी भी है।
1: दीदी, मैं तब से सोच रहा था कि आप मेरा इंट्रोडक्शन कराएंगी, लेकिन आप तो अपनी ही बातों में बिजी थी। आपने बोला ना कि ठंडा ठंडा मौसम है, तो मैंने अभी देखा कि आपने छाछ पिया है, और छाछ पीने के बाद देखिए आप कितना स्माइल कर रहे हो।
0: अच्छा बंटी, आपने देख लिया कि हमने छाछ पिया है। बात तो सही है आपकी कि पता है गर्मियों में ना बंटी, सबसे अच्छे जो पेय पदार्थ होते हैं ना, वो हमारे घर में ही है और हमें पता भी नहीं चलता है, पता है।
1: तो दीदी, कौन कौन से पेय पदार्थ जो बहुत अच्छे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, क्या आप मुझे बताना चाहेंगी?
0: बिल्कुल बंटी, बाजार के जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, उनसे बेहतर है घर का नींबू पानी, सत्तू, छाछ और बेल का शरबत, नारियल पानी और आम पना। जी, ये घर में ही बनाइए और पीने के बाद से इतना रिफ्रेश हो जाओगे ना, और आपके लिए हेल्दी भी है।
1: यानी कि दीदी, ये प्राकृतिक पेय पदार्थ बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और टेस्टी भी होता है।
0: बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि टेस्टी भी होता है और फायदेमंद भी होता है, इसलिए तो मैं पीती हूँ। और मैं चाहूंगी कि आप भी ना, ये जो नींबू पानी है, सत्तू, छाछ, बेल का शरबत, नारियल पानी, आम पियो, और उसके बाद मुझे बताना बंटी कि तुमको कैसा लग रहा है।
1: बिल्कुल दीदी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या सिर्फ बातें ही करेंगी या फिर हमें गाना भी सुनवाएंगी?
0: बिल्कुल बंटी, बातें नहीं होंगी, गाना भी होगा, और ये गाना हम सुनवा रहे हैं अपने दोस्तों को, साथ में तुम भी सुन सकते हो। एंजॉय करिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक को।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी ये 3:16 हो चुके हैं और कार्यक्रम है सतरंगी दुनिया, जहां आज आपके साथ है दो लोग, मैं तो हूँ ही, साथ में मेरी है
1: और मैं हूँ साथ में दीदी के बंटी। दीदी मैंने सुना था कि आप पेड़ पौधों के बारे में बात कर रही थी, तो मुझे ना पेड़ पौधे तो बहुत अच्छे लगते, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं।
0: अरे बाबा पेड़ पौधे बहुत जरूरी हैं। आप देखिए कल हम लोग मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, और चिंटू अगर पेड़ पौधे ना हो तो सोचो हम सांस कैसे लेंगे, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ये धरती के असली रक्षक हैं। और

0: सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, हमें फल, फूल, सब्जियां, दवाइयां, लकड़ी और तपती दोपहर में जब हम बाहर जाते हैं तो छाया भी तो पेड़ ही देते हैं ना, और बारिश भी तो पेड़ ही करवाते हैं। तो अब जाना तुमने कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी हैं। हम कह सकते हैं कि पेड़ हमारे सच्चे साथी हैं।
1: अच्छा दीदी, यानी हम जो सांस लेते हैं उसमें सीधे तौर पर पेड़ पौधों का हाथ होता है, यानी पेड़ हमारे जीवनदाता हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर पेड़ हमारे जीवनदाता है, इतनी जब जानकारी के बाद तुम जान गए हो, तो अब तुम क्या करोगे मुझे ये भी बता दो।
1: दीदी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पौधे लगाऊं, और सिर्फ लगाऊं ही नहीं, उनकी देखभाल भी करूं। क्योंकि कभी कभी ना मैं बहुत से बड़ों को देखता हूँ कि वो पौधे तो लगा देते हैं लेकिन उसको देखभाल नहीं करते, जिससे वो सूख जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं पौधे लगाऊंगा भी और उसकी देखभाल भी करूंगा।
0: ये हुई ना बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है ना बंटी, तुम यहाँ आके ना स्टूडियो में आने के बाद से समझदार हो जाते हो, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे साथ रह के समझदार हो जाते हो।
1: दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बात में आप अपना क्रेडिट क्यों लेने लगते हो?
0: अरे बाबा, अच्छी बात है ना कि अगर तुम समझदार हो गए हो तो स्टूडियो में आने के बाद से दिमाग खुल गया है। तो तुमने क्या बोला है कि तुम पौधे भी लगाओगे और उसकी देखभाल भी करोगे।
1: दीदी, मुझे लगता है सिर्फ बात ही करेंगी आप, गाना नहीं सुनवाएंगी।
0: गाना तो मैंने भाई बहुत अच्छा सा क्यों कर रखा है, और जब बात हम पेड़ पौधों की कर रहे हैं तो ऐसे में कुछ खास पौधे जो होते हैं ना, वो इस गाने के माध्यम से आप सुनेंगे। और अभी जो गाना आ रहा है ना, बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सॉन्ग आ रहा है, तो एंजॉय करिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक को।
1: जी हाँ, मेरे और दीदी के साथ।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10 plus 2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जी हाँ, 3:25 हो गए हैं और कार्यक्रम चल रहा है सतरंगी दुनिया, जहां आज आपके साथ मैं हूँ राधा, मेरे साथ है बंटी।
1: दीदी मैं आपसे नाराज हूँ, आप सिर्फ बंटी से प्यार करती हैं।
0: अरे चिंकी तुम भी आ गई। जी हाँ, देखिए बंटी तो आया ही था, चिंकी भी आ गई।
1: दीदी मैंने देखा कि बंटी आपके साथ है और आप मुझे लेना भूल ही गई।
0: नहीं बिल्कुल, देखिए हमारे स्टूडियो में, मैं बताना भूल गई, 2 दोस्त हैं चिंकी और बंटी, और आज कार्यक्रम सतरंगी दुनिया में कुछ खास होने वाला है।
1: दीदी मैंने सुना कि आप बात कर रही थी पेड़ पौधों के बारे में, तो दीदी मैं ये सोच रही थी कि जब मुझे गर्मी लगती है तो मैं एसी या पंखा चला लेती हूँ, तो क्या पेड़ों के पास भी अपना कोई एसी होता है जब उनको गर्मी लगती है?
0: अरे चिंकी, पेड़ तो खुद ही प्रकृति के सबसे बड़े एसी है। तुम्हें पता है एक बड़ा पेड़ कई कमरों की एसी जितना ठंडक देता है।
1: अरे वाह दीदी, मतलब जहाँ ज्यादा पेड़ होंगे वहाँ गर्मी कम लगेगी, है ना?
2: चिंकी तुमको किसने कहा था आने के लिए? मैं और दीदी तो प्रोग्राम कर ही रहे थे, तुमको बीच में क्यों आई तुम?
1: अच्छा बंटी तुमने सुना नहीं, एकता में शक्ति होती है, और दीदी आज अकेली थी तो मैंने सोचा कि मैं भी आ जाऊं।

0: खैर आप दोनों आ गए हैं, अच्छी बात है। और देखो तुम लोग क्या कर रहे हो दोनों, बाबा बैठो आराम से, लड़ाई ना करो, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, और हमें एकजुट ही रहना चाहिए। और जब बात हम प्रकृति की कर रहे हैं तो इस गाने को हम कैसे भूल सकते हैं, आपकी रेडियो सेट पे आ रहा है ये प्यारा सा सॉन्ग। दीदी ये गीत ना मुझे भी बहुत पसंद है।
1: और नहीं तो क्या दीदी, ये गाना जो आप प्ले करने जा रही हैं ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है।
0: मुझे लगता है कि ये गाना जो है ना सभी को पसंद आएगा, तो एंजॉय करिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक को।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी हाँ, 3:40 हो चुके हैं और कार्यक्रम है सतरंगी दुनिया, जहां आज मैं हूं आपके साथ राधा, मेरे साथ है बंटी और चिंकी भी।
1: अरे बंटी और चिंकी, तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैं कब से तुमको ढूंढ रही हूँ।
0: अरे दादी, आप भी आ गई। भाई चिंकी, तुम लोगों ने बताया नहीं था दादी को? वो देखो ढूंढ रही है, परेशान हो रही है, तुमको बता के आना चाहिए था ना।
1: सॉरी दीदी, मैंने सोचा कि मैं बाद में बता दूंगा। दादी आप ढूंढ रहे हो हमको, सॉरी दादी आपको परेशान किया।
2: दादी मैं भी आपको सॉरी बोलती हूँ, दादी मैं बताना भूल गई थी, लेकिन अब की बार जब भी दीदी के साथ आऊंगी स्टूडियो आपको जरूर बता दूंगी।
0: दादी अगर आप आ ही गई हैं तो थोड़ा सा हमें अपने जमाने के बारे में बताइए कि आपका जमाना कैसा था।
1: क्या बताऊं बिटिया, हमारा जमाना तो बहुत ही अच्छा था। ढेर सारे पेड़ पौधे, हरियाली, बहुत ही सुंदर लगता था। लेकिन आज के समय में मैं देख रही हूँ कि पेड़ कटते

0: जा रहे हैं। अंधाधुंध कटाई हो रही है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और तो और बारिश भी नहीं हो रही है। बिटिया, हमारे देश में ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ कोसों दूर पानी लेने जाना पड़ता है। सोचो, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पानी लेने जाते हैं, और वहाँ की महिलाएं कितनी मेहनत करती हैं चिलचिलाती धूप में आना जाना। तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, पेड़ों को कटने से रोके, पौधे लगाएं? क्यों बिटिया?
1: दादी, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। पर्यावरण को बचाना तो हमारा ही कर्तव्य है। और दादी, आपने जो बात कही कि बहुत सारी जगह है भारत में जहाँ पे बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, तो ऐसे में अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं तो सोचिए कि जो वातावरण का संतुलन है वो बना रहेगा, और बारिश भी होगी, और लोगों को इतना परेशान भी नहीं होना होगा।
0: दीदी, दादी ने जो कहा वो बात मैं बिल्कुल, हमेशा, अभी तो मैं छोटा हूँ लेकिन बड़ा होकर भी ये बात याद रखूंगा।
2: हाँ दीदी, मैं भी। और दीदी, कल तो है विश्व पर्यावरण दिवस, लेकिन मैं सिर्फ कल के लिए नहीं, मैं तो हमेशा एक पौधा लगाऊंगी। और दीदी, पता है आपको, मेरी आंगन में ना बहुत सारे पौधे लगे भी हुए हैं, और मैंने ना एक छोटा सा अमरूद का पौधा लगाया था जो अब बहुत बड़ा हो गया है, और उसमें छोटे छोटे अमरूद भी आए हुए हैं।
3: यार
1: भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो पौधा लगाया था वो बड़ा हो गया है और उसमें अमरूद भी आए हैं। और बंटी, आपने कुछ ऐसा किया?
0: दीदी, मैंने तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी पौधा लगाऊंगा, और जब उसे फल आएंगे ना तो मैं भी आपको बताऊंगा।
1: गुड, ये बच्चे समझदार हो गए दादी आपकी बात सुनकर।
0: बिटिया, हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग समझदार बने, अपने पर्यावरण की रक्षा करें।
1: बिल्कुल दादी, और गाना सुनवाते हैं भाई कार्यक्रम हमारा जो है ना, सतरंगी दुनिया। दादी, देखिए आज का कार्यक्रम मुझे लगता है आपको सतरंगी सा लग भी रहा होगा, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ में दादी भी हैं, चिंकी भी है, बंटी भी है, और मुझे लगता है जो ये लोग बातें कर रहे हैं ना पर्यावरण के लिए, मुझे लगता है आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप इसको पालन भी करेंगे, है ना? तो बातें जब हो गई हैं तो अब एक प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं जो मुझे लगता है कि आपको जरूर पसंद आएगा। तो सुनिए ये प्यारा सा सॉन्ग अपने रेडियो सेट पे।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
2: Aap sun rahe hain 100.7 FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.

0: जी हाँ, कार्यक्रम है सतरंगी दुनिया, और जहाँ आज आपके साथ हूँ मैं राधा, मेरे साथ है बंटी, चिंकी और अब दादी भी। कार्यक्रम है सतरंगी तो बातें भी थोड़ी सतरंगी तो होनी ही चाहिए, है ना? क्यों बंटी?
1: और नहीं तो क्या दीदी। दीदी, चिंकी कह रही थी कि वो घर आते समय ना उसने चिड़ियों के लिए पानी रखा था।
0: क्यों चिंकी, ऐसा किया था क्या तुमने? हाँ दीदी, मैं सोच रही थी ना, इतनी गर्मी है तो हमें जब प्यास लगती है तो बेचारे पक्षियों को भी तो प्यास लगती होगी ना, तो मैंने सोचा कि पक्षियों के लिए मैं थोड़ा पानी रख देती हूँ और थोड़ा दाना भी। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने, गर्मियों में जो हमारे जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए, कि वो बेजुबान हैं, अगर वो नहीं कह सकते तो उनकी ज़ुबान हमें बनना होगा। और अगर हम पानी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं तो वो पानी ना ठंडा रहेगा उनके लिए। और जो आपने बताया कि आप दाने भी देते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें अपने अलावा अपने आस पास के पशु पक्षियों के बारे में भी सोचना चाहिए।
1: दीदी, आपकी बात सुनकर तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अब ऐसा करूँगा। मुझे लगता है कि FM रेनबो में आकर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया, और ये जगह ना बिल्कुल जादुई है दीदी। यहाँ मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा है, और इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद से आज मैं घर जाकर जब मम्मी को बताऊँगा तो मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो जाएंगी कि आज मेरा बेटा बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीख कर आया है।
0: चलो, इसी बहाने बंटी के बच्चे को अकल तो आई। क्यों, अब तुम ऐसा करना कि मम्मी के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताना, ताकि वो भी पशु पक्षियों के बारे में सोचे और पौधे लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध करें। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है सतरंगी दुनिया, जो तुम्हारे दोनों बच्चे जो है, चिंकी और बंटी और दादी तो अब चली गई हैं,

0: क्योंकि उनको देर हो रही थी, वो ढूंढने आई थी। और हाँ, जब भी घर से बाहर निकली, अपने घर में जरूर बताकर आइए, है ना, क्योंकि घर वाले परेशान होते हैं। तो भाई चिंकी और बंटी, आप लोग जो है ना कार्यक्रम में आए, बातें की आपने, बड़ा अच्छा लगा हमें। और मुझे लगता है कि आप दोनों ही जो है ना आपस में अगर प्यार से रहोगे ना, अभी मैं देख रही हूँ कोई एक दूसरे को मारा पीटी, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे दोस्त बन जाओगे तो मिलकर हमारे लिए और पर्यावरण के लिए अच्छे काम भी करोगे।
1: बिल्कुल दीदी, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा और चिंकी तुम भी करोगी।
0: ठीक है, अगर दीदी कहती है तो मैं भी तुमसे दोस्ती करूंगी, और कल से ही हम लोग अपने पर्यावरण के लिए बहुत सारा काम करेंगे। चलो भाई, ये तो बात बहुत अच्छी हुई कि आप लोगों ने ये तो सोचा कि पर्यावरण के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं, और हमारे पशु पक्षी जो बोल नहीं पाते हैं उनके लिए भी आपने सोचा, और गर्मियों में कौन से पेय पदार्थ हमें पीना चाहिए। और एक बात मैं और भी देखती हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो है ना, या बड़े भी, जब बाहर से आते हैं तो तुरंत पानी पीने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सुस्ता लीजिए, उसके बाद से पानी पीना चाहिए। और धूप में बाहर जा रहे तो फेस जरूर से कवर करिए, छातर लेकर जाइए, और अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेकर जाना चाहिए। और भाई, कार्यक्रम है सतरंगी दुनिया, तो आप लोग बातें ही नहीं सिर्फ सुनेंगे, बहुत सारी बातों के अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने अपने कार्यक्रम बताया है, और मेल भी पढ़े, बहुत शुरुआत से जो सुन रहे होंगे उनको कार्यक्रम मुझे उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। और अभी जो सॉन्ग मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ वो एक ऐसा डांस सॉन्ग है ना कि आप अपने घर पे ही सुनने के बाद से डांस करने लगेंगे, यकीन नहीं आता। तो चलिए सुनते हैं।

0: Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10 plus 2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और

0: हुक्म सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: दोस्तों बात करते करते आपसे पता ही नहीं चला कि घड़ी की सुई आप कह रही हैं कि मुझे जाना होगा, तो अपनी दोस्त राधा को दीजिए अनुमति, ख्याल रखिए अपना। और इस अंतिम गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ क्योंकि 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर हमारे दिल्ली केंद्र से। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी दोस्त राधा को दीजिए अनुमति। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।

भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल पहाड़ नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मींस प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय

0: सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके डीएनए में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है, क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझे। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही चार तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई एनजीओ से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं, और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है, और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं, और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है, या इसको और आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
2: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल्स में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल, जब हम पर्यावरण संरक्षक की बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल

नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना, आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना, इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पे भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईगाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखी है, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड STP प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइक्लिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 kg तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं।

0: मेगा वॉट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड एसटीपी प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइक्लिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल स्वागत है शुभ। हमें ग्रीन कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, किस तरीके की इनिशिएटिव्स लिए हैं।
2: मैं फिर से स्वागत करता हूँ। मैं बहुत ही गर्व के साथ पहला जीरो वेस्ट कैंप है इकाई जहां भी मौजूद है इसी तरह से इंप्लीमेंट है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे उसी हम यहाँ वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सॉलिड वेस्ट और एयर वेस्ट को हम एग्रीगेट करते हैं। मुद्दा यह है कि वेस्ट उस सोर्स पे 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट वेट वेस्ट बात करें तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं जिसको एरोबिक्स खाद बना और साथ में लगाया बायोगैस कंपोजिट सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस इस्तेमाल करते हैं। में टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, इसके द्वारा भी हम रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीदा, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मैंने प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको वही केले के छिलकों को हमने खाद के बेस में डाल दिया और हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: हमसे बात करने के लिए
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैंने बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन बेस्ड को डालते हैं जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर इसको बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो कैंस रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है, हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स लिविंग एरियाज कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है जैसे टेबल चेयर बेंच कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है।

0: जो दर्शाती है कि आर्मी न खाली रेगिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
0: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: और सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए?
0: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए?
0: जी, ये जो मार्क 80 केजी का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 केजी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 केजी वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely, 80 kgs वेस्ट, आप सोचिए 80 किलो वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
0: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं जिसमें टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर।

0: इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हम सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें

0: जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसीज के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाया
1: जाता है। बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सीलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहां पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सीलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है. इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी.
1: जय हिंद. मैं हवलदार आशीष. एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है. भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं. ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है. एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा. साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है. इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है. एक व्हीकल को फुली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है. ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं. इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं.
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस. ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं. हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं. तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए. हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है. कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है. सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है. उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है. ये अपने आप में एक

0: प्लस ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी, सर स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
1: जय हिंद, आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
0: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
1: देखिए अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है, और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
2: बता रहे हैं राइफल मैन दिनेश कुमार।
1: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी है। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं, और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
2: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
3: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कंप्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट, और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयड होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। यह एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
0: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने ये सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
3: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा तब तक हमारा एरिया या ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है, और जब तक उसके अंदर से

0: ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
1: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: कहानियां सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: यादें अतीत से बातें बस दिल से क्योंकि आपकी याद आती रही रेंबो पर रात में

नमस्कार, शाम के बजे हैं 5। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विश्व पर्यावरण दिवस पर कल एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुकरेल वन क्षेत्र से इसका शुभारंभ करेंगे। उनके नेतृत्व में पूरे राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे। इसके लिए सभी विभागों और मंडलों के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। पर्यावरण दिवस पर वन विभाग की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 2 दिवसीय भ्रमण पर तुलसीपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री तुलसीपुर व गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने देवी पाटन मंदिर पहुंचकर आज व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे की अध्यक्षता में आज सीतापुर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 जून से 21 जून तक आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों के दौरान अनेक ऐतिहासिक एवं जनहितकारी कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 624 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इंटरव्यू 15 जून से प्रारंभ होकर 27 जून तक विषयवार आयोजित किए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र 5 जून से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवक्ता पद की लिखित परीक्षा 9 एवं 10 मई 2026 को आयोजित की गई थी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज़ घंटे तरन्नुम के साथ।

जी 5:03 हो चुके हैं, हाजिर है तरन्नुम लेकर प्रोग्राम टॉप 10। और आपको बता दें कि इस वक्त हम टॉप 10 तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे टॉप नंबर्स हैं जो अब तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि 5:30 पर आप सुनेंगे रोंदेवू पत्रकार से वार्ता, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार राय से प्रवीण कुमार की बातचीत भी आप सुनेंगे। फिलहाल सुनते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन, बोले तो रेनबो।

और दोस्तों ये जो प्रोग्राम है टॉप 10, इसमें हम आपको हमेशा 10 टॉप मोस्ट जो गाने अपने दौर में रहे हैं, हिट रहे हैं, सुपर हिट रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसमें से जैसे कि भी आपने ये वाला ट्रैक सुना, और 2012 की अगर बात करें तो ये वो दौर था जिसमें बॉलीवुड म्यूजिक के लिए एक यादगार साल बनकर रह गया था। इस साल के गाने आज भी हमें नॉस्टैल्जिया की एक खूबसूरत दुनिया में ले जाते हैं, चाहे पानी दा रंग की मिठास हो या अभी मुझ में कहीं यस उसका इमोशन हो या पार्टी ऑल नाइट इसका स्वैग हो, हर गाने ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। और अगर हम बात करें इस गाने की जो अब आप सुनने वाले हैं, तो ये गाना मतलब कह सकते हैं ना कि प्यार की जो मासूमियत होती है ना, जब कहते हैं कि पहला प्यार इंसान को होता है, और पहला प्यार क्या, लेकिन पहला जो प्यार होता है

कहीं यस, उसका इमोशन हो या पार्टी ऑल नाइट, इसका स्वैग हो, हर गाने ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। और अगर हम बात करें इस गाने की जो अब आप सुनने वाले हैं, तो ये गाना मतलब कह सकते हैं ना कि प्यार की जो मासूमियत होती है ना, जब कहते हैं कि पहला प्यार इंसान को होता है, और पहला प्यार क्या, लेकिन पहला जो प्यार होता है वही हमेशा शायद आखिरी रह जाता है, क्योंकि इंसान हमेशा पहली चीज़ को कभी नहीं भूल पाता। पहला उसका कॉलेज का दिन, पहला उसका ऑफिस का दिन, पहला उसके घर से बाहर कदम निकालने का दिन, पहला उसका बर्थडे, भले ही वो उसको याद ना हो, लेकिन उसके फ़ोटो, उसकी यादें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जो पहली चीज़ होती है, वो फिर बाद में दूसरे में वो चीज़ नहीं आती। फिलहाल अगर हम इस ट्रैक की बात करें जिसने पहले प्यार की मासूमियत और दिल की धड़कनों की खूबसूरती को इतनी अच्छे से बयान किया था, इतने अच्छे से बयान किया था कि ये गाना आज भी रोमांटिक प्लेलिस्ट की दौड़ में कह सकते हैं कि शामिल है। वेल, नंबर्स तो नंबर्स हैं, नंबर्स का क्या, लेकिन ये जो ट्रैक्स होते हैं ये हमेशा हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, चाहे 2012 का दौर हो, 14 का दौर हो, या फिर 2026 का दौर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पांच बजकर 16 मिनट, प्रोग्राम चल रहा टॉप 10 और आज हम पहुंचा रहे हैं कुछ ऐसे सुपर डुपर गाने जो थे 2012 के, जिसमें से एक ट्रैक अब तक

और आपको बता दें वक्त 5:19 हो चुके हैं और आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप सुनने वाले हैं रोंदेवू, जिसमें पत्रकार से वार्ता के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे हम वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार राय से प्रवीण कुमार की बातचीत कुछ ही देर में। और कहते हैं ना कि वक्त इतनी तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है कि बस हम लोग कहते हैं अभी सुबह हुई थी, अभी दोपहर हुई थी, अभी शाम आने को है, और अब देखिए लोग रात की तैयारी में हैं, शाम की तैयारी में हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस अवध में हो रही हैं, लखनऊ में हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे, ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी होने वाली हैं जो शायद एक दो दिन का टाइम भी इनके पास है और वो आपके लिए बहुत बहुत बहुत काम की होंगी। फिलहाल अभी जो टॉप 10 चल रहा है प्रोग्राम, उसमें कुछ जो नंबर्स हैं वो ही हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। उसमें से एक अगर नंबर की हम बात करें और उस दौर में वो था पोजीशन नंबर 6 पे, और ये गाना जो डांस फ्लोर को धड़का देता था ज़ोर ज़ोर से, और आज भी जब ये गाना प्ले होता है तो लोग जो कहते हैं ना डांस फ्लोर की जो हीट वेव आ जाती है उसमें, इतना मतलब इतना ज़्यादा माहौल वैसा हो जाता है कि जो डांस करना नहीं भी चाहता है वो भी पैर उसके जो हैं वो टिप टिप करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ ये जो ट्रैक है ये 2012 के सबसे बड़े कह सकते हैं कि पार्टी ट्रैक्स में से एक था। वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फ्रेश केमिस्ट्री ने इस गाने की खासम खास बना दिया था। सो लेट्स इन्जॉय राधा फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: और 5:27 हो चुके हैं दोस्तों, प्रोग्राम टॉप 10 को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जिसका नाम है रोदोई वो, और पत्रकार से वार्ता है ये। इसमें अभी कुछ ही देर में आप सुनेंगे वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार राय से प्रवीण कुमार की बातचीत। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण। इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं पत्रकारिता की दुनिया, उसकी चुनौतियों और समाज में उसकी भूमिका के बारे में। दोस्तों, हम रोज खबरें पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, टीवी पर देखते भी हैं, लेकिन उन खबरों को हम तक पहुंचाने वाली कलम यानी पत्रकार के पीछे का संघर्ष क्या है? समाचारों के चयन के दौरान इनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है? कैसे कुछ खबरों को लेते हैं जबकि शेष को छोड़ देते हैं? यह सब होता कैसे है? न्यूज एजेंसी क्या होते हैं और कैसे यह काम करते हैं? ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं हम कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। साथ ही कुछ समसामयिक मुद्दों पर इनके विचार भी जानने की कोशिश करते हैं। तो पत्रकार से संवाद के इस अंक में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय जी, स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आपको हम बताते चले कि आनंद जी करीब 34 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और फिलहाल एक न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। जी आनंद जी, तो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता के इस दुनिया में या इस क्षेत्र में
1: जी
0: आने का विचार कैसे हुआ, कैसे आना हुआ?
1: प्रवीण जी, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता था और हमारे गृह जनपद मऊ जिले के एक बड़े राजनेता थे कल्पनाथ राय जी, तो मैं उनका कार्यकर्ता था, तो इस वजह से पत्रकारों से मेरे संपर्क हो गए थे और यह करते हुए मुझे लगा कि राजनीति मेरे लिए मुफीद नहीं है। अखबार का प्रकाशन हो रहा था और मैंने प्रयास किया, मेरा चयन हो गया और फिर मैं पत्रकार बन गया
0: जी।
1: चूंकि राजनीति और पत्रकारिता कमोवेश एक ही तरह का कार्य है, समाज की चुनौतियों से जूझते हुए और समाज के मुद्दों को लेकर इसमें दोनों लोग भूमिका निभाते हैं, काम में थोड़ा सा परिवर्तन था और लगा कि मेरे लिए असली मुकाम मिल गया। और फिर लगातार मेरे पड़ाव बदलते गए, मुझे अनुभव हुआ, मेरी तरक्की भी होती गई और मैं पत्रकारिता के क्षेत्र का ही होकर रह गया
0: जी। वैसे किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए या सपनों को सच करने के लिए शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और पत्रकारिता में तो विशेष करके
1: जी।
0: तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
1: मेरी शिक्षा दीक्षा गांव से लेकर और आसपास के महाविद्यालयों में आजमगढ़ मऊ में ही हुई। मैं हिंदी से स्नातकोत्तर हूँ और हिंदी मेरी रुचिकर विषय है और पत्रकारिता में उसके लिए बहुत ही अच्छा स्थान भी है। और शुरुआती दिनों में जब पत्रकारिता के क्लास चलते थे महाविद्यालयों में जगह जगह, तो हम उन क्लास में भी छात्रों को पढ़ाने का भी मुझे मौका मिला था
0: जी। यह तो बात हो गई शिक्षा दीक्षा की, और बतौर करियर की शुरुआत कब से हुई?
1: मैं गोरखपुर ब्यूरो से संबद्ध रहा, मेरी मंशा थी मऊ जिले में काम करने की, चूंकि मैं वहीं का रहने वाला था, तो शुरुआती 1-1.5 साल तक मैं, फिर वहां का एक स्थानीय अखबार था जो लोकल अखबार था और बहुत लोकप्रिय अखबार था मऊ का, तो मैं उसमें समाचार संपादक हुआ और मैं 1.5 साल तक उसमें भी मैंने काम किया। और आपको जानकर यह अच्छा लगेगा कि वो अखबार पहले हैंड कंपोजिंग पर छपता था।
0: अच्छा।
1: और हम लोगों ने 1.5 साल में उसको कंप्यूटरकृत किया और फिर उसको आधुनिक उपकरणों के साथ उसको सुसज्जित किया, लेकिन उसके बाद फिर मैं लखनऊ चला आया। धीरे धीरे मेरे रास्ते मतलब दूसरी तरफ अखबार में ही बदलते गए। मुझे बड़े फलक पर काम करने की जो मंशा थी उसके तहत मुझे

0: वो फिर छोटी जगह लगने लगी।
1: बिल्कुल, विकास के साथ लोग अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ने की हर कोई कोशिश करता है। क्या आपको आज भी वह अपनी पहली स्टोरी याद है जिसने आपको एक नई पहचान दी या पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको एस्टेब्लिश किया?
0: पहली स्टोरी तो बहुत साल लिखने के बाद लोगों के बीच, तो 95-96 के बाद से मेरी खबरों ने अपना स्थान बनाया और लोगों को आज भी याद है, लोग बताते हैं कि आपने ये लिखा। लेकिन शुरुआती दिनों में जैसे किसी पत्रकार के लिए उसकी जो पहली तमन्ना होती है, जो पहली कोशिश होती है कि अखबार में उसका नाम छप
1: जी,
0: जिसको वाइलाइन कहते हैं, आप जानते ही होंगे।
1: तो
0: मेरे ही जिले के कवि थे, राष्ट्र कवि पंडित श्याम नारायण पांडे, जिन्होंने हल्दी घाटी, जय हनुमान, तुमुल, बहुत सारी उनकी रचनाएं रही हैं। तो उनका निधन हुआ था, उनके निधन के बाद मैंने उन पर एक स्मृति शेष लिखा था। वो लिखने के बाद लोगों ने मेरी बड़ी सराहना की थी और ऐसे में बहुत वाइलाइन मिलती थी। वो पहला अखबार था कि अपने प्रतिनिधियों को पहचान देने का जो प्रयास किया। उस जमाने में जो अखबार थे गोरखपुर और बनारस से छपने वाले, वहाँ बायलाइन बहुत कभी किसी की मिलती थी तो उत्सव जैसा माहौल होता था
1: जी।
0: दोनों जगह, बनारस से प्रकाशन में और गोरखपुर में, दोनों ब्यूरो ने बाद में वहां से प्रकाशन भी शुरू हुए, तो बायलाइन में वहाँ कोई कंजूसी नहीं थी और अच्छी खबरों के वहाँ तरीके सिखाए जाते थे। बहुत योग्य अच्छे संपादक लोग थे जिनकी स्मृतियां आज भी जहन में है, तो वो लोग प्रेरित करते थे कि कैसे खबरों को लोकप्रिय बनाया जाए, कैसे उन खबरों को पाठक के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बनाया जाए। तो इस हिसाब से हम लोग खबरों का चयन करते थे और बायलाइन मिलती थी तो बहुत खुश होते थे। उस दिन तो सहयोगियों को चाय पिलाने का उत्सव होता रहता।
1: बिल्कुल, करियर के प्रारंभ में किसी भी छोटी सी उपलब्धि भी बड़ी उपलब्धि लगती है। फिलहाल आप एक न्यूज एजेंसी में कार्यरत हैं, तो यह न्यूज एजेंसी होते क्या, ये कैसे काम करते हैं?
0: वीडियो सेवा, उसके हिंदी अंग्रेजी सेवा, दोनों पाठक के बीच में विश्वास बनाने के लिए पहला प्रयास होता है। जो अधिकारी हैं उनका हमेशा निर्देश होता है कि कभी भी समाचार को समाचार की तरह लिखिए और कभी भी अतिशयोक्ति आप में खबरों में ना हो। और इस संगठन ने समाचार पत्रों को, समाचार की दुनिया में लोग हैं उनको खबरें उपलब्ध कराते हैं, वो उन खबरें भेजते हैं और उनके जरिए पाठकों तक खबरें जाती हैं। मीडिया के क्षेत्र में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वीडियो के क्षेत्र में भी वीडियो सेवा में उनको खबरें उपलब्ध करा रहे हैं।
1: यानी आपके सीधे खबरें पब्लिश नहीं होती,
0: चैनलों को उनको समाचार उपलब्ध कराते हैं, उनको खबरें उपलब्ध कराते हैं, उनको स्टोरी उपलब्ध कराते हैं
1: जी। आपने अखबारों में भी काम किया और अभी न्यूज एजेंसी में भी कार्यशील हैं, तो दोनों के पत्रकारिता में अंतर क्या लगता है?
0: देखिए, अखबारों में तो जब हम काम करते थे तो सुबह की मीटिंग में तय हुआ कि हमको ये खबर अमुक देनी है, हम दिन भर घूम रहे हैं, शाम को आए खबरों को अपना बनाए भेजे, खबरें कंपोज हो रही हैं, जा रही हैं। धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल आए, फिर हमारे लोग सोचते थे कि हमारी खबर तो सुबह जाएगी और जो ग्राहक है, जो पाठक है, जो भी मतलब खबरों का समझदार व्यक्ति है, जो खबरों में जिज्ञासा रखता है, खबरों से जूझता है, जानता है, पहचानता है, वो अगर दिन में कोई खबर पा जाएगा तो फिर हमारे खबर अगले दिन सुबह उसको बासी लगे। फिर अखबारों में भी आप देखे होंगे कि .com आए सारे अखबारों के और बहुत सारे पोर्टल्स बने, तो पोर्टल्स को खबरों की जरूरत हुई और सबसे पहले होड़ मची की। आप समाचार चैनलों में देखते होंगे कि कोई खबर है तो उस पर लिखा होता है कि सबसे पहले, सबसे तेज, मतलब सब लोग दावा करते हैं, भले वो बाद में ही दिखा रहे हों लेकिन लोग दावा करते हैं कि सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। तो जो समाचार एजेंसी है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह तो हमारा उपभोक्ता है, जो समाचार चैनल है चाहे अखबार है जो लेते हैं, तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम समय पर और पहले तथ्यों के साथ उसको एक सटीक खबर दें ताकि उसको वो अपने प्रकाशन में ला सके और विश्वास भरोसे के साथ ला सके, पाठक तक पहुंच सके, यह प्रयास होता है। जो हमारी न्यूज एजेंसी है उसका प्रयास होता है, हमारे न्यूज एजेंसी से जुड़े हर व्यक्ति का यह प्रयास होता है कि हम समय पर खबरें दें। हमारे सारे जिलों में संवाददाता होते हैं, उन संवाददाताओं की भी कोशिश होती है कि जो हमारी घटनाएं हैं, जो भी कुछ रोजमर्रा के जीवन है, जो समाचार उसको तथ्यात्मक और पुष्ट तरीके से अधिकारियों के हवाले से, संबंधित व्यक्ति के हवाले से, उसको एक पुष्ट खबर हम सबसे पहले मुहैया कराने की कोशिश करते
1: जी। वैसे न्यूज एजेंसी या किसी भी पत्रकारिता के क्षेत्र में, इसमें सत्ता से लेकर संस्कृति, खेल, अर्थव्यवस्था जैसे तमाम क्षेत्र हैं, तो आपकी रुचि इनमें से किस क्षेत्र में है?
0: देखिये, मैं बहुत लंबे समय तक अपराध संवाददाता रहा, फिर राजनीतिक संवाददाता हुआ
1: जी।
0: अपराध में आज भी जो बड़ी घटनाएं होती हैं रुचि रहती है और राजनीति में तो खैर व्यवस्थित तौर पर उस पर काम ही करता हूँ, दोनों चीज में मेरी रुचि
1: जी। और गाने में?
0: गाना तो हमको लगता है कि कोई भी व्यक्ति हो, पशु पक्षी जानवर, सबको संगीत सबको मोहित करता है, सबको एक तरह से भावनात्मक रूप से अपने साथ वो जोड़ता है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, बहुत कम कोई होगा किंचित उसे संगीत अच्छा नहीं लगता होगा।
1: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे अभी?
0: जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
2: मैं जिंदगी का साथ

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद जी। हम पत्रकारिता और इससे जुड़े सरोकारों की बात कर रहे हैं। तो आनंद जी, आप आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़े रहे हैं
1: जी,
0: और तो देश और समाज की प्रगति उन्नति में आकाशवाणी की भूमिका को कैसे देखते हैं?
1: देखिए, आकाशवाणी आज के भी दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। एक जमाने में मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो जब गांव में आग जलाते हैं, जाड़े के दिनों में आग के किनारे लोग बैठते थे, ट्रांजिस्टर रख कर बैठते थे और हर चीज का समय होता था, सबको याद रहता कब गाने आने हैं, कब समाचार आने हैं, और लोग बिल्कुल सन्नाटा छा जाता, सभी लोग उस गाँव के चौपाल में सुनते थे। और एक तरह से कहिए कि मनोरंजन के लिए आकाशवाणी मतलब रेडियो पर निर्भर हुआ करते
0: जी।
1: और तब से मैं आज तक देख रहा हूँ आकाशवाणी की कभी उपयोगिता मुझे खत्म लगी ही नहीं। कोरोना पीरियड में मैं बीमार था, मुझे भी कोरोना हो गया था और आना जाना भी प्रतिबंधित था, तो इसी आकाशवाणी के केंद्र से मुझसे कहा कि मैं आपकी आवाज रिकॉर्ड करता हूँ, आप उनमें बताइए कि कैसे आपने कोरोना से जंग किया और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। और मुझे ध्यान है प्रसारण के बाद मतलब मेरे पास 8-10 फोन आए होंगे, तो लोगों ने बताया कि मैं रेडियो पर सुना, तो मुझे लगा कि आज भी रेडियो सुनी जा रही है, आज भी आकाशवाणी की उपयोगिता आकाशवाणी की महत्ता खत्म नहीं है। और आकाशवाणी ने बहुत प्रयोग किए हैं, लोगों के रुचि का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है और लोगों तक पहुंचने में बहुत काम।
0: आपने सर बताया कि हिंदी में MA किया है
1: जी,
0: लेकिन फिर भी पत्रकारिता के क्षेत्र में भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भाषा पे पकड़ बनाने के लिए और क्या कुछ खास किया?
1: देखिए, भाषा तो एक संस्कार
0: जी।
1: आपकी भाषा आपके पूर्वजों से, आपके परिवार से, घर से भी मिलती है। जब आप बचपन से भाषा को समझते हैं,

0: हैं, फिर धीरे धीरे उसके होके रह जाते हैं। आप कभी किताबों को पढ़ के लोग सीखते हैं, जानते हैं, व्याकरण तो आप सीख सकते हैं, लेकिन उसमें आप गहरे रमने के लिए, पूरी तरह से उसको अपना बनाने के लिए, आपको आपका परिवार ही, आपका समाज ही जो ज्ञान देता है वो महत्वपूर्ण होता है। और अपने यहाँ ये परंपरा भी है कि लोग एक दूसरे से सीखते आते हैं, श्रुति परंपरा है कि बहुत सुन के भी आप बहुत जानते हैं, तो अखबार की एक अलग भाषा हो जाती है। तो ये आप पढ़ के नहीं जान सकते, आप अखबार में आएंगे तो अखबार की भाषा आपके जो पूर्वज हैं जो आपको सिखाते आ रहे हैं उनसे सीखे आप, फिर आप अपने आने वाले लोगों को देते जा रहे हैं। तो भाषा को आप इस ढंग से देखिए कि यह समाज की चीज, पूर्वजों की चीज है, जो आपको जैसा दे रहा है और आप जैसा ग्रहण कर ले रहे हैं फिर वैसा ही आप प्रसारित करते हैं। हम लोगों के बचपन के जमाने के लोग हैं, उन लोगों ने तो लगातार सुना है, तो एक तो उनके बोलने की शैली भी ऐसी होती है कि लोग कोशिश करते हैं कि हम भी वैसा बोलें, तो शुद्ध परिमार्जित और अच्छे ढंग से और बहुत ही कर्णप्रिय बोलते हैं। बिल्कुल आकाशवाणी की भूमिका है।
1: समय के साथ हर एक क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं, पत्रकारिता में भी बदलाव आया है। जब आपने शुरुआत की थी पत्रकारिता, तब के दौर और मौजूदा डिजिटल दौर में क्या अंतर दिखता है?
0: देखिए, बहुत बड़ा अंतर। जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी तो खबरें बनाते थे, हाथ से लिखते थे, और सुबह जो अखबार की गाड़ी आती थी उसको अपना लिफाफा पकड़ा दिया जाता था, फिर अगले दिन कई बार वो खबरें तीसरे दिन आती थी। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि अखबारों में तेजी आई समय से, कि हम अपनी खबरें जल्दी से परोसें, तो लोग फोन पर जो बड़ी घटनाएं होती थी इस तरह होता था, फोन पर नोट कराते थे, डेस्क आदमी नोट करता था, लिखता था, खबर अगले दिन आने लगती। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि जब समाचार चैनलों की बहुलता हुई तो अखबारों का ध्यान उधर गया। प्रतिस्पर्धा में लोगों ने, जो हाथ से लिखते थे लोग, वो कंप्यूटर पर आ गए। मुझे याद है कि वर्ष 1995 में हम लोगों को कंप्यूटर कहा गया अनिवार्य है, आप सीखिए। हम लोग नहीं जानते थे, ना कंप्यूटर की पढ़ाई किए थे, ना जानते थे। हमारे यहाँ जो अखबार के पन्ने बनते थे, पेज लगाए जाते थे, वो केपी संपादक बोलते थे, कैंची प्रसाद संपादक, वो कट पेस्ट होता था, पेस्ट खुद किया जाता था। फिर रात 2 बजे के बाद अखबार का मेकअप होता था, फिर अखबार छपते थे। लेकिन फिर ऐसी स्थिति कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया, कंप्यूटर पे पेज बनने लगे और ऑटोमेटिक मशीनें आने लगी। धीरे धीरे धीरे तब भी आप देखिए कि एक रिपोर्टर के लिए बहुत योजना होता था। एक रिपोर्टर, मैं अपराध संवाददाता था गोरखपुर में, और बड़ी घटनाएं उन दिनों होती थी, कोई मोहल्ले मोहल्ले हर जगह हम लोग जाके सूत्र बनाए रहते थे। अखबार के जो फोन होते थे वो दिए होते थे, जहां रहते थे वहां आसपास के पीसीओ के फोन, और ये सब हमारे पास खबरों को लाने के लिए एक संसाधन होते थे। जगह जगह टेलीफोन ड्यूटी पे जो पुलिस के होते थे, टेलीफोन ड्यूटी वाले, उनसे संपर्क में रहते थे, 4 बार दिन में उनको फोन करते थे कि आज की घटनाएं क्या हुई। फिर आप देखिए कि एक जमाना आया कि पेजर आ गया
1: जी।
0: अचानक मोबाइल आया और मोबाइल ने, उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों काल के पैसे लगते थे, लेकिन फिर भी मोबाइल मिलने से बहुत प्रसन्नता थी कि अब खबरें हमारे पास आने लगेंगी। फिर उसके बाद तो मोबाइल ने गजब क्रांति कर दी। वही जमाना था कि 7 साल पहले हम खबरों को लेकर जाते थे, उनकी जनसभाओं में खबर करते थे, वहां जैमर लगे रहते थे तो हमारे फोन भी नहीं काम करते थे। फिर हम वहां से निकलते थे, बाहर आते थे होटल में जहां हम टिके होते थे, वहां से फिर छोटी मोटी पहले सूचनाएं देते थे, फिर थोड़ा आराम से उसको खबरों को लिखते थे, लेकिन उसमें भी बहुत समय लगते। आज की तारीख में क्या है कि उनकी सभा समाप्त हुई और हमारी खबर रेडी।
1: यानी कैंची पेस्ट से लेकर के कंप्यूटर तक का सफर है पत्रकारिता का। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले एक और गाना सुनना चाहेंगे आपके पसंद का
0: जी। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो।

0: श्रोताओं एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद जी। हम पत्रकारिता और इससे जुड़े सरोकारों की बात कर रहे हैं। अक्सर यह देखने में आता है पत्रकारिता के क्षेत्र में कि धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, कई चीजें आपने खुद ही बताया कि बिल्कुल ही बदल गए हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस पे क्या प्रभाव देखते हैं?
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत बड़ा संसाधन है और अगर सलीके से उसका उपयोग किया जाए तो आपके लिए बहुत सहयोगी है। लेकिन जैसे वही है कि मशीन और व्यक्ति में दोनों की संवेदनाओं में अंतर है। शब्दों के हेर फेर अगर हो गए तो अगर आप आश्रित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं खतरा है। लेकिन कोई भी तकनीक अगर आप उसका उपयोग सलीके से करेंगे, समझदारी से करेंगे और उससे सावधान होकर करेंगे तो आपको वह सहयोगी की भूमिका में आपके साथ साथ निभाता रहेगा। मसलन कंप्यूटर ने जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो तमाम चीजें चूक हो जाती थी, शुरू में मात्रा लगाने में बहुत सारी चीजें गलती हो जाती थी, लेकिन फिर वो हुनरमंद लोग उसको सुधार लेते। हाथ से लिखने में चूक नहीं होती थी लेकिन फिर भी प्रूफ रीडिंग की जाती थी, फिर उसको मतलब खबर पेस्ट होने तक उसके साथ जूझता था आदमी, फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती थी। लेकिन कंप्यूटर पर आप सावधान हो गए, सजग हो गए और समझदारी से आप उस पर काम कर रहे हैं, अब तो कहीं गलती नहीं।
0: यानी कहीं ना कहीं कृत्रिम मेधा से सकारात्मक प्रभाव पड़ने की भावना है। यह तो हो गए पत्रकारिता में बदलाव। पत्रकारिता से आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
1: देखिए पत्रकारिता समाज के प्रति आपको जवाबदेह बनाता। एक पत्रकार समाज की चुनौतियों को बारीकी से समझता है। हर आदमी निरपेक्ष नहीं हो सकता, कोई ना कोई किसी के सापेक्ष होता है। हमारे अंदर भी कोई

0: कल्पना होगी, हमें भी कोई अच्छा लगेगा, आपको भी कोई अच्छा लगता होगा। लेकिन एक पत्रकार रहते हुए जब वह अपने काम को संपादित करता है तो उसकी मुख्य भूमिका यह होती है कि वह तथ्य को सही ढंग से परोसे। जब आप तथ्य को सही ढंग से परोसने के आदत में आपके शुमार हो जाता है, जब तथ्य को सही ढंग से आप परोसने लगते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फिर आप सबके प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार हो। समाज में कोई घटना घटती है, अगर आप उसको सलीके से संवेदना के साथ अगर आप उसको संपादित कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप समाज का कल्याण कर रहे हैं। और हर पत्रकार को यह एक सावधानी बरतनी होती है, जो जिम्मेदार है, जो अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक करता है, उसको हमेशा यह ख्याल रखना होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव न। और जब भी आप सकारात्मक काम कर रहे हैं, जैसे हत्या हो गई तो आप कहेंगे हत्या तो कोई सकारात्मक नहीं है, लेकिन हत्या की खबर आप प्रस्तुत करते समय अगर आप सकारात्मकता का ध्यान रखेंगे तो सही तथ्य पर,
1: यानी कहीं ना कहीं संवेदनशीलता बढ़ी है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आने से। लंबे समय से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो हम यह जानना चाहेंगे चलते चलते कि आने वाली पीढ़ी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहती है या जो लोग सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में सक्रिय हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्या करना चाहिए उन्हें?
0: देखिए, जो भी सोशल मीडिया हो आजकल तो मतलब जिसके हाथ में मोबाइल है वह पत्रकार, इसलिए कि कोई भी व्यक्ति है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है और खबरें आ रही हैं जा रही हैं और वो भी खबरें परोस रहा है। सामान्य ढंग से आप बाहर निकल रहे हैं, कोई घटना घटी, आपने एक वीडियो बनाया, ऐसे ही ग्रुप में डाल दिया, तो पत्रकारिता का तो काम आपने कर। पर कई बार आप देखिए कि सोशल मीडिया पर और भी जगह लोग अफवाहों के पीछे भागते हैं। एक परोसा हुआ मैटर आ गया और उसको पेस्ट करके और लोग जिस तरह से संचालित करने लगते हैं उससे बचना चाहिए। एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि तथ्यों की पुष्टि, और इसीलिए एक वर्जन की परंपरा है कि जो भी पक्ष है, जिस पर भी हम खबर लिखते हैं, जिसके साथ हम उससे जुड़ते हैं, उसका पक्ष जरूर रखते हैं, जिस पर आरोप लगाते हैं उसका भी पक्ष लेने की परंपरा और हम लोग लेते हैं। ऐसा होता है कि जो आरोप लगाने वाला है वो गढ़ रहा है, माहौल बना रहा है, और जिसको आरोपित कर रहा है वह व्यक्ति निर्दोष है। जब आप उससे बात कर लेते हैं तो फिर वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो हमेशा सभी पक्षों से संवाद जरूरी है, और जब आप समाचार लिखते हैं उसे प्रस्तुत करते हैं तो उसमें कहीं से भी आप अपने दिमाग की कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं है, उसमें सच्चे तथ्य हैं, वो आप अगर सीधे लिखते हैं तब आपको सही ढंग से उसको देखने को मिलेगा। और यह भी है कि आपके पास जो विचार है उसके लिए आप लेख लिखिए, उसके लिए आप संपादक को पत्र लिखिए, उसके लिए आपके पास तमाम अवसर है। लेकिन जब आप समाचार लिखते हो तो आप तथ्यों के साथ छेड़छाड़ न करिए। ये पत्रकार जो भी बन रहे हो, जो हैं, सबसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँ।
1: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव। आपने बिजी समय में से आकाशवाणी के लिए समय निकाला और अपने महत्वपूर्ण प्रेरणादायक बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: धन्यवाद प्रवीण जी।
1: आज के इस अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और पत्रकार से, जानेंगे उनके अनुभव और विचार। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को लखनऊ छावनी स्थित दिलकुशा लॉन में आयोजित होने वाले बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 में पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने की पहल का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड और लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञों का संगम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवर्तन विकास को केवल आधारभूत संरचना निर्माण तक सीमित न रखते हुए उसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आज लखनऊ में पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को नई गति देने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन विकास के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, खानपान, संस्कृति और सेवा क्षेत्र को भी व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारत मिशन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री व गोरखपुर जनपद के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज सर्किट हाउस सभागार में भाजपा महानगर और जिला कोर कमेटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने, प्रदेश सरकार के 9 वर्ष तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 जून को जन्मदिन के अवसर पर 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्री परीक्षा 2026 में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया हो। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो, घंटे तरन्नुम के साथ।

वो आबो हवा वो सुकून कहीं और नहीं मिलता, वो आबो हवा वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। मिलते हैं बहुत शहर मगर लखनऊ सा नहीं मिलता। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। प्रोग्राम शाम वद में आपका खैर मकदम। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की, जिस पे आ रहा है ये ट्रैक।

और सच में ऐसा ही दिल करता है लखनऊ के लिए कि लखनऊ जो कहे वो बन जाए, इश्क बन जाए या मुश्क बन जाए, क्या बन जाए जो लखनऊ को पसंद आए। और शायद इसलिए लखनऊ वालों के पास से एक अजीब सी खुशबू आती है, एक अजीब सी खुशबू मुअत्तर रहती है उनके आसपास। और जब वो बोलते हैं तो समझ जाते हैं लोग, और हमेशा पूछते हैं कि आप लखनऊ से ही हैं, कि आप हमेशा लखनऊ में ही रहे। तो बहुत ही गर्व से हमारा सीना चौड़ा होता है और हम बताते हैं कि हाँ, हमारी पैदाइश लखनऊ से है, हमारे दादा दादी नाना नानी ये सारे लोग लखनऊ से हैं। और जब हम लोग ये बताते हैं तो सामने वाला फिर पूछता है, अच्छा उस दौर में लखनऊ कैसा था, उस दौर में लखनऊ क्या हुआ करता था जब आपके दादा नाना रहते थे, जब आपके जो पूर्वज थे वो यहाँ पर रहते थे। तो अक्सर एक ठंडी आह भरते हैं और बताते हैं कि भाई उस दौर में लोग आपस में चपखलश करते थे, चकल्लस करते थे, बहुत सारी महफिलें सजती थीं, शेर व शायरी होती थी, लोग इत्र लगाते थे, गजरे बिकते थे, मक्खन जो आज भी है, और चौक की चिकन की जो कारीगरी है वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। मतलब ठंडाई की अगर बात करें, चिकनकारी की बात करें, खाने की बात करें, यहाँ के जितने भी लवाजमात हैं उनकी अगर हम बात करें तो किस किस चीज़ की बात करें। लेकिन जब ठंडी आह भरते हैं हम तो किस लिए भरते हैं, वो खेल जो उस दौर में खेले जाते थे वो कहीं ना कहीं खो से गए हैं, गुमशुदा से हो गए थे। लेकिन फिर हमारे देश ने और हमारे देश की सरकार ने कोशिश की कि उन खेलों को फिर से जीवित किया जाए, उनको फिर से लोगों के बीच में प्रसिद्धि दिलाई जाए, उनको फिर से ऐसी जगह पर लाया जाए कि लोग पहचानें कि हाँ ये जो खेल है, ये जो खेल थे वो थे नहीं, एक बार फिर से शामिल हो गए हैं। और आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मेरा इशारा किस तरफ है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय टैराथन कॉम्पिटिशन की प्रतियोगिता की, तो शुरू हो चुकी है आज से। टैराथन की अगर बात करें तो ये खेल सीधे तौर पर जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं उनकी जड़ों से और बच्चों से जुड़ा हुआ है। अक्सर आप देखते होंगे या कहीं

ना कहीं कहीं आपने कोई पिक्चर देखी होगी या कोई ऐसा सीन देखा होगा कि बच्चे दौड़ते चले जा रहे हैं, हाथ में उनकी एक छोटी सी डंडी होती थी और एक टायर होता था, उसको दौड़ते दौड़ते लेते चले जाते थे। और वही जो प्रतियोगिता है वो आज से शुरू हो गई है। तो आपको बता दें, टैराथन फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में देश के पारंपरिक और जितने भी स्वदेशी खेल थे उनको बढ़ावा देने की दिशा में शुरुआत शुरू हो चुकी है। और केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आज से लेके 6 जून तक प्रथम राष्ट्रीय टैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो बचपन में गलियों और ग्रामीण अंचलों में खेले जाने वाले साइकिल के टायर के खेल ने अब एक एकदम मॉडर्न और कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव रूप ले लिया है और नेशनल लेवल पर ये अपनी मजबूत पहचान बना रहा है और कह सकते हैं कि इसने मजबूत पहचान दर्ज कराई है। तो बस, और भी बहुत सारी बातें हैं जो लखनऊ से जुड़ी हैं, हमारे वतन से जुड़ी हुई हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी मेरा फ़र्ज़ है कि हम आप तक पहुंचाएं एक और बहुत ही सूदिंग सा नंबर, 6:10 प्रोग्राम शाम अवर तरन्नुम में आपके साथ। सुनते रहिए।

शुरू हो चुकी है और केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आज से लेकर 6 जून तक प्रथम राष्ट्रीय टायरोथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो बचपन में गलियों और ग्रामीण अंचलों में खेले जाने वाले साइकिल के टायर के खेल ने अब एक एकदम मॉडर्न और कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव रूप ले लिया है और नेशनल लेवल पर ये अपनी मजबूत पहचान बना रहा है और कह सकते हैं कि इसने मजबूत पहचान दर्ज कराई है। तो बस और भी बहुत सारी बातें हैं जो लखनऊ से जुड़ी हैं, हमारे वतन से जुड़ी हुई हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी मेरा फ़र्ज़ है कि हम आप तक पहुंचाएं एक और बहुत ही सूदिंग सा नंबर। 6:10 प्रोग्राम शाम अवर तरन्नुम में आपके साथ, सुनते रहिए।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो एफएम,
3: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
4: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर,
5: व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
6: हेलो, आप एफएम रेनबो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं।
7: क्या बोल भैया?
2: अगर आप भी चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम हर रोज शाम 7 बजे।
8: और आपको वक्त बता दें, 6:15 हो चुके हैं। प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध तरन्नुम में, आपके साथ सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की बोलता है एफएम।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप
4: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
4: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
5: ओनली 100.7 FM रेनबो।

अच्छा एक चीज़ है, घर में जब कहा जाता है कि भाई बच्चों से, स्पेशली बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, और घर में जब कहा जाता है कि भाई सफाई करो सफाई करो, तो बच्चे बड़ा आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हैं और कहते हैं कि भाई हम क्यों सफाई करें, हम क्यों ये गिलास इधर से उधर रखें, हम क्यों बॉटल भर के फ्रिज में रखें, हम क्यों फ्रिज की सफाई करें। तो फिर मम्मियाँ क्या कहती हैं, अच्छा कोई बाहर से आएगा सफाई करने के लिए, घर अपना है तो सफाई तो तुमको मिलके करनी है। तो सारे लोग मिलके फिर सफाई अभियान चलाते हैं, और ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती हैं ना ये संडे को होती हैं, क्योंकि भाई संडे को हॉलीडे होता है और बच्चों का अभी स्कूल अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन जब पूरे घर की सफाई की अगर बात की जाए तो फिर पूरे घर के जितने भी लोग हैं सब लोग मिलके लग जाते हैं और फिर सफाई शुरू हो जाती है। लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि बताइए एक आदमी है कितनी सफाई करेगा, कितना काम करेगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, जाले छुड़ाएगा, बेडशीट्स धोएगा, कर्टन धोएगा, ये करेगा वो करेगा। यस, एक आदमी जो है वो पूरे घर की सफाई नहीं कर सकता है, सिर्फ घर की बात हो रही है। तो ज़रा आप हमें बताइए कि पूरे शहर की सफाई करने के लिए क्या एक आदमी काफ़ी है? तो आप कहेंगे नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी हैं। तो जब बहुत सारे लोग हैं उन बहुत सारे लोगों की लाइन में क्यों ना एक नंबर मेरा भी हो, एक नंबर आपका भी हो, और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। भाई देखिए जून आया है, अब योग दिवस भी आने वाला है, विश्व पर्यावरण दिवस भी आने वाला है, और अगर सबसे पहले योग की बात करें तो हमेशा हमेशा हम लोग रोज कहते रहते हैं भाई थोड़ा सा अपनी लाइफ में योगा को शामिल कीजिए, योग कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भत्सिका कीजिए, भ्रामरी कीजिए। बहुत सारे योग ऐसे हैं जिनसे आप करके फैज़याब हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी आर्थिक जो संबल है ना वो भी आपको मिलेगा, ज़ाहिर सी बात है पैसे कम खर्च होंगे। आप जब योगा कर करके एकदम हेल्दी वेल्दी फाइन हो जाएंगी तो फिर बताइए कि क्या ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, क्या ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर के पास जाने की। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम सफाई की बात करें, योग से पहले भाई ये भी सफाई कर लें कि योग के साथ निरोग अगर आपको रहना है तो हमें अपने के आसपास की सफाई भी बहुत जरूरत है कि हम उसको करें। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हमसे क्या मतलब है, कूड़े वाला आता है कूड़ा लेके चला जाता है, अब कोई कूड़ा फेंक देता है तो हम क्यों सफाई करें, या मान लीजिए आसपास झाड़ी निकल आती है अरे हम क्यों करें, सामने वाले भी तो हैं वो क्यों नहीं करते, उनकी कॉलोनी में उनका भी तो घर है वो तो नहीं करते हम क्यों करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें एक तो नंबर एक अच्छी बात नहीं है, दूसरी ये कि कहते हैं ना कि अगर आपको किसी पर असर डालना है तो बहुत ही नर्म लहजे में बात कीजिए। नर्म लहजे का जो असर होता है ना वो तलवार की

बाहर से भी तेज होता है जब आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, जब आप बहुत ही नरमी से किसी से कोई काम कहते हैं, तो फिर इंसान आपके कह सकते हैं कि चप्पल भी उठाने को तैयार होता है। उसी तरह जब अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, और आप ज़रा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए कि इस गर्मी में अगर आसपास गंदगी होगी तो बीमार कौन कौन पड़ेगा। सिर्फ सामने वाली आंटी या पड़ोस वाले अंकल ही बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका भी नंबर आएगा। मच्छर होंगे, गंदगी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो होने वाली हैं। इसलिए क्यों ना अभी से उन पे लगाम लगा ली जाए। और अब विश्व पर्यावरण दिवस पर हम आपको बता दें कि नगर निगम की तरफ से कई आयोजन किए जाएंगे, जिनमें जितने भी 110 वार्ड हैं उसमें खास तौर पे जो सफाई अभियान है वो तो चलाया ही जाएगा, लेकिन साथ ही पौधरोपण भी किया जाएगा। और आपको बता दें कि जो गोमती नदी के तट हैं वहाँ पर भी स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, और इसको प्रभावी संचालन के लिए गोमती नदी के जितने भी तटवर्ती फील्ड हैं वहाँ पर 8 क्लस्टर बांटे गए हैं। और आपको ये इसलिए हमें बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, सुबह सुबह अगर आप गोमती के किनारे जाते हैं, तो कल बिल्कुल जाइएगा, बहुत अनिवार्य रूप से जाइएगा, ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जो अभियान है, सफाई अभियान है, वो शुरू करना है और उसमें आपका भी फ़र्ज है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि सारा जो गोमती का पानी है वो सारे लोग पीते हैं, तो ये सबका फ़र्ज़ है कि थोड़ी थोड़ी सफाई की जाए। और उसके बाद जो एक निखर के गोमती आती है, लहराती, इठलाती, बलखाती, एकदम साफ शफाफ, और बस ऐसा लगता है कि बस उसका पानी उठाएं, चुल्लू मिलें और अपने चेहरे को उस खूबसूरत से पानी में देखें। क्या आपका दिल ऐसा नहीं करता कि हमारी नदियाँ साफ, स्वच्छ, सुंदर रहें?

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
0: Stay tuned to चैनल सतरंगी रे।

0: हेलो एफएम,
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
2: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर,
3: व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
4: हेलो, आप एफएम रेनबो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम हर रोज शाम 7 बजे।

अच्छा कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि भाई दो मिनट के लिए रुको, एक मिनट रुको, लेकिन लोग कहते हैं भाई दो मिनट के लिए रुको, बहुत ज़रूरी बात करनी है। और अक्सर दो मिनट से जो बातें शुरू होती हैं फिर वो होते होते 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, ना जाने कितने कितने मिनट तक बातें होती रहती हैं। देखिए बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दो मिनट मतलब दो मिनट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये दो मिनट जो है ना वो ठहराव है। किसका ठहराव है आपको ये भी बता दें, दो मिनट ठहराव है देहरादून वंदे भारत का शाहजहांपुर में। देहरादून जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव वेडनेसडे से यानी बुधवार से शाहजहांपुर स्टेशन पर भी हो गया है, लेकिन ये जो ठहराव है ये सिर्फ दो मिनट का होगा। तो अगर दो मिनट में आपको लग रहा है कि भाई आप शाहजहांपुर में वंदे भारत ट्रेन टिकी, आप आराम से बिल्कुल पैक वैक लेके लगेज लेके तैयार हैं चढ़ने के लिए, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट। और ये खुशखबरी आपके लिए है क्योंकि देहरादून लखनऊ जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस शाहजहांपुर पहुँचेगी कितने बजे, 8:04 पे। तो ये एक बहुत अच्छी सी बात थी जो हमें लगा कि हमें आपसे शेयर कर देनी चाहिए। और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो हमें लगता है कि हम आपसे शेयर कर दें। अब देखिए आम की अगर बात करें तो भाई आम आ रहे हैं, बच्चे अक्सर पूछते हैं भाई तरबूज लेके चली आती हैं, खरबूजा लेके चली आती हैं, आम कब आएंगे, आम कब आएंगे। और आम देखिए आ भी गए हैं, अलग अलग तरह के आम हैं, कोई बहुत बड़े बड़े आम नज़र आ रहे हैं, कोई बहुत सतरंगी आम नज़र आ रहे हैं, कोई कैसे आम नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोग उसको बड़े खुशी खुशी ले के जाते हैं और बताते भी हैं लोग कि भाई इतने महंगे आम हैं, बहुत महंगे वाले हैं, ये बाहर जाते हैं, ये वहाँ से आए हैं, ये वहाँ से आए हैं। और जब उसको लेकर हम जाते हैं और जब उसको पील ऑफ करते हैं खाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता, मतलब याद वही आती है दशहरे की, लंगड़ा, चौसा, तुखमी और तोतापरी, बहुत सारे आम हैं, ऐश्वर्या, राहुल, सचिन, तेंदुलकर, ना जाने कितने कितने स्पेशीज़ हैं जो आम की मिल जाती हैं। लेकिन कुछ आम ऐसे हैं जिनमें कोई टेस्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लेके जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे आम आ गए, आम आ गए। लेकिन आम में वो टेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कुदरत में उसमें टेस्ट शामिल नहीं किया है। और कुदरत इतनी समझदारी से काम करती है, इतनी समझदारी से आपके लिए हर चीज़ को प्रेजेंट करती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं। इतने सारे फल हैं, आड़ू देख लीजिए आप, और भी बहुत सारे फल हैं जिनके तो नाम भी नहीं पता रहते हम लोगों को, बच्चों के पास लेके जो बच्चे कहते हैं ये क्या है, ये क्या लेके आए, तो हम लोग बताते हैं ये बेटा फालसे है, ये शैतूत है। अच्छा ये शैतूत ये क्या होता है, बच्चे उसको छूते भी डरते हैं क्योंकि बच्चों को हमने आदत नहीं डाली है। बच्चों को आदत क्या पता है, बच्चों को मैंगो पता है, बनाना पता है, एप्पल पता है, लेकिन और सारे जो फ्रूट्स हैं वो नहीं पता है क्योंकि उनका टेस्ट बच्चों ने ज़बान पे कभी लिया ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका जितना भी टेस्ट है वो सारे अपने बच्चों की ज़बान पर ज़रूर रखें, क्योंकि अगर बच्चे में टेस्ट नहीं पता चलेगा, बचपन से उनको आदत नहीं होगी। और मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चा थूक देता है, कुछ भी हटा देता है मुझसे, बच्चे कहते हैं अरे नहीं खाता है, इसको मत खिलाओ, क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो, बच्चा है, बच्चा है। लेकिन बच्चा बड़ा जब होता है तब भी वो ऐसे ही रहता है क्योंकि बच्चे को टेस्ट तो पता ही नहीं है, उसको क्या पता, उसको मैंगो पता, उसको बनाना पता, उसको एप्पल पता है, बाद में उसको पिज्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें बता देंगी क्योंकि मम्मी ही बताती हैं कि बेटा ये खा लो। बहुत ही हम लोग ऑनर फील करते हैं, बहुत ही सम्मान फील करते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे ने बर्गर खाया, आज हमारे बच्चे ने पिज्ज़ा खा लिया। लेकिन ये सारी गलतियाँ हम और आप करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी सीजनल फ्रूट हैं उनको खिलाइए। अब सवाल ये है कि ये आम और ये जामुन और ये शहतूत ये सारी चीज़ें एक साथ क्यों आती हैं, वो इसलिए आती हैं क्योंकि जब हम लोग बेतहाशा आम खा लेते हैं, मैं अपनी बात कर रहे हैं, बहुत सारे आम हम खाते हैं और जब आम आते हैं तो सिर्फ आम ही आम खाते हैं, मतलब आम इतने आम हो जाते हैं कि बस खाते ही रहते हैं, खाते रहते हैं, तो क्या होता है कि भाई शुगर लेवल जो है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो अगर आप 5 आम खाते हैं और 5 जामुन खा लेते हैं तो शुगर लेवल हमेशा आपका बैलेंस्ड रहता है। इसलिए कुदरत हमें, अब आके तो कोई कहेगा नहीं कि भैया तरन्नुम ऐसा करो, ये खा लो उसके बाद ये खा लो, शहतूत का क्या काम है, ये सारे जितने भी काम हैं ये सब हमारे आंतों की सफाई करते हैं, जितने भी फाइबर्स होते हैं, इतना सार है इसके अंदर, इतनी चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं, इतनी इसके अंदर कह सकते हैं कि राज हैं जिनको अगर हम नहीं भी जानते हैं लेकिन अगर आप खाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप इतने हेल्दी रहते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं आप कि आपकी स्किन अलग से ग्लो करती है, आप अलग से खूबसूरत लगते हैं। और कुछ लोग ऐसी हैं इस दुनिया में कि जो बिल्कुल फॉलो करते हैं वही रूल जो कुदरत ने उन्हें दिए हैं। फिलहाल चलिए फॉलो करते हैं, कहो ट्रैक तू मेरी मैं तेरा, आप तक 6:49 प्रोग्राम चल रहा है शाम तरन्नुम आपके साथ, सुनते रहिए द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10 plus 2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: और 6:52 हो चुके हैं दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है शामे अवध और बहुत सारी बातें हैं जो हमने करी हैं कि फल खाना चाहिए, ये करना चाहिए, सफाई करना चाहिए, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए मनी की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है और पैसे के लिए क्या करते हैं लोग, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे हुनर हैं जिनको वो आत्मसात करते हैं, उसके बाद उस हुनर से वो पैसे कमाते हैं, तभी तो सारी खुशियां जो हैं वो घर में आती हैं। तो अगर इंटर है या फिर ग्रेजुएट हैं या फिर आप ITI पास हैं तो आपके लिए जॉब के मौके ही मौके हैं। और आपको बता दें कि ITI अलीगंज में रोज़गार मेला है और वो कब है, कल है, कल बहुत सारी चीज़ें हैं होने वाली हैं कल। तो आपको बता दें कि इसके लिए क्या है कि आपको शामिल होने के लिए इस मेले में, रोज़गार मेले में शामिल होने के लिए रोज़गार संगम पोर्टल rozgarsangam.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण आपका होना ज़रूरी है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो भी चाहते हैं कि भाई वहाँ जाएं, तो अपनी जो CV की फ़ोटोकॉपी है और जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाना है और आप सीधे जाइए मेले में, आप जाकर भाग ले सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर रोजगार संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में या मान लीजिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो जो स्टूडेंट हैं जो चाह रहे हैं वहां पे पार्टिसिपेट करना, वो टोल फ्री नंबर 1-55-330 यानी 155-330 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो संपर्क बनाए जा सकते हैं, लेकिन देखिए रेनबो का जो संपर्क है उसको बिल्कुल आप तोड़ने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा खूबसूरत संगम है, खूबसूरत ऐसा संपर्क है जिसमें आप अपने आप को बहुत ही लाइट फील करते हैं, बहुत ही फ्री फील करते हैं, बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, बहुत ही प्यारा महसूस करते हैं।

और बेसब्री से इंतजार करते हैं कुछ ही देर में। हमें पता है किस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार है, और वो है आपका मोस्ट फेवरेट शो जो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जिसका नाम है हेलो एफएम। तो बस बिल्कुल तैयार रहिए।

कल शाम के बजे हैं 7। अब सुनिए टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास को केवल आधारभूत संरचना निर्माण तक सीमित न रखते हुए उसे स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकराल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का करेंगे शुभारंभ। उनके नेतृत्व में पूरे राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधरोपण किए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का करेंगे शुभारंभ। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गोरखपुर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 2 दिवसीय भ्रमण पर तुलसीपुर पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, जिलाधिकारी ने देवी पाटन मंदिर पहुंचकर आज व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अग्निशमन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बहुमंजिला भवनों, सरकारी व निजी दफ्तरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल और होटलों की व्यापक स्तर पर सघन जाँच करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने आज प्रांतीय पुलिस सेवा PPS के 206 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। लखनऊ में तैनात तकरीबन 12 डिप्टी SP का भी हुआ तबादला। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित TGTT भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल सम्पन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी हुए शामिल। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रवक्ता संवर के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 15 जून से 27 जून तक किए जाएंगे। आयोजित अभ्यर्थी साक्षात्कार पत्र कल से आयोग की वेबसाइट से कर सकेंगे डाउनलोड। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन शाम 7:20 पर किया जाएगा प्रसारित। सुनते रहिए रेनबो तरन्नुम के साथ।

हाँ 7:02 शुरू हो चुके हैं और शुरू हो चुका है प्रोग्राम हेलो एफएम तरन्नुम है आपके साथ और बिजुरिया ट्रैक पहुंच गया है आप तक लगातार. हमारी फोन की जो लाइंस है वो ब्लिंक कर रही हैं और जो लाइट्स है वो भी लगातार चमचमा रही है. तो उठाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं फोन किस

0: और देखिए इतना छोटा सा दिल होता है लेकिन क्या क्या चीजें सह सकता है, बिजुरियां सह सकता है, मतलब दिल पे बिजली गिर रही है, दिल पे धक्के लग रहे हैं, दिल पे ये हो रहा है, दिल पे वो हो रहा है, लेकिन दिल तो दिल है। अब दिल दिल तो दिल है, मतलब दिल कैसे धड़कता है, क्योंकि धड़कन है उसके पास। और जब ये धड़कन और तेज हो जाती है तो फिर हमारे जो लिसनर है ना वो बिल्कुल बेकरार हो जाते हैं, मतलब एकदम परेशान हो जाते हैं कि बस कैसे भी करके फोन में घुस जाएं और फोन में घुस के कैसे भी आ जाएं स्टूडियो में और कहें कि भाई तरन्नुम मैम इतनी देर से फोन मिला रहे हैं, लगता ही नहीं। और जिसका लग जाए तो बाकी जिनका नहीं लगता वो सोचिए कितने नाराज हो जाते हैं, कितने गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले हम जल्दी से बात करते हैं हमारे आज के जो फर्स्ट कॉलर हैं, पहले जो कॉलर हैं वो कौन है, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार
0: जी। बहुत बहुत प्रेम पूर्वक आपको भी हमारा नमस्कार जी। अपना नाम बताइए।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, पहले मतलब अपने जिले का नाम बताते हैं, फिर अपने मोहल्ले का नाम बताते हैं, फिर बाद में अपना नाम बताते हैं आप।
1: जी हाँ दीदी।
0: और बताइए भगवान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कर रहे थे अभी आप बताइए।
1: दीदी आपका कार्यक्रम ही सुन रहा था और नंबर मिला है, मिल भी गए दीदी।
0: अच्छा, मध्य प्रदेश में इस वक्त मौसम कैसा है बता सकते हैं आप।
1: दीदी अभी पानी गिर रहा है हमारे यहाँ।
0: क्या बात कर रहे हैं,
1: बरसात हो रही है। आने
0: सच्ची?
1: सच्ची सच्ची में, सच्ची में दीदी।
0: अरे क्या बात है, मतलब बारिश हो रही है तो आपने एकदम खुश कर दिया दिल। तो भैया बारिश को थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, कह दीजिए कि यूपी में भी आ जाए एमपी से।
1: दीदी आपके इधर से हमारी इधर आया है पानी।
0: अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ बरसा नहीं, सीधे आपके पास चला गया।
1: पहले आपके इधर गिरा फिर हमारे इधर आया है।
0: अच्छा अच्छा, ये किसने बताया कि आपको लखनऊ में पानी गिरा था, बताइए।
1: दीदी 4-5 दिन पहले हमें आकाशवाणी लखनऊ से मालूम पड़ा था। अच्छा। अयोध्या से मालूम पड़ा था दीदी, अयोध्या के आरजे हैं अमरजीत सर जी, उनने बताया था कि हमारे यहाँ बहुत भारी बारिश हुई है।
0: अच्छा, सुनते रहते हैं आप इसका मतलब। तो चलिए ठीक है, 4-5 दिन पहले पानी गिरा था। 4-5 दिन हो गए भगवान सिंह जी। अब बताइए, आप जल्दी से प्रार्थना कीजिए कि भाई बारिश की शुरुआत हो जाए। और हम तो ये कहते हैं कि जो हो अच्छे के लिए हो, बताइए गलत बात है कि सही बात।
1: बिल्कुल सही बात है दीदी।
0: और क्या कहना चाहेंगे आप।
1: दीदी बस यही कहना चाहेंगे सर, गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली है, ये 2 हफ्तों बाद हमारे इधर भी बरसात चालू हो जाएगी दीदी, तो हम खेती किसानी करते हैं तो बोनी करेंगे सोयाबीन और मक्का की दीदी।
0: अच्छा, तो गाना जो आपने अभी पसंद किया सुनाई दे रहा आपको धीरे धीरे।
1: जी हाँ दीदी, राजा बाबू फिल्म का है, याद सताए वाला गीत है।
0: किसको सुनवाएंगे जल्दी बताइए।
1: जी विनीत कुमार जी हैं, राहुल कुमार जी हैं और प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं और हमारे एक मित्र और राजन गंगवार जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे। मिंटू तिवारी जी।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत
1: डेलिकेट रहेगा दीदी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी, और दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और 7:12 हो चुके हैं दोस्तों, आपको बता दें कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लाइन पर कोई है, उनसे बात करते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्ते, कौन बोल रही है?
2: संगीता बोल रहे मैम, बंगला बाजार लखनऊ से।
1: संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम हेलो एफएम में। जी संगीता जी, बताएं क्या कहना चाहती हैं?
2: थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात हो रही है।
1: बहुत बहुत अच्छा, हमें भी लग रहा है आपसे बात करके संगीता।
2: पहली बार बात हो रही है आपसे, बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे संगीता जी?
2: बस यही गाना सुनना था और बात करना था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सोर्सेज जब आती है आज आपसे बात हो जाए, अब पता नहीं कैसे मेरा फोन लगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं था मेरा फोन लगेगा आपसे बात।
1: हम बता रहे हैं ना कैसे लगा फोन, आपने फोन उठाया होगा, फिर हमारा नंबर मिलाया होगा, उसके बाद बेल गई, उसके बाद हमने फोन को पिक किया और हेलो किया और आपने हेलो बोला और बस फोन लग गया। इसलिए तो कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कोई चीज को अगर आपको हासिल करना ना, उसको सोचना छोड़ दीजिए, आप करके देखिए। ये किसी भी चीज को आप तो आपने बहुत शिद्दत से नहीं मिलाया होगा, आपको लगा होगा अरे उठाते हैं फोन मिलाते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना।
2: हाँ रोज मिलाते हैं, नहीं उठता फोन, विल भी जाती लेकिन नहीं उठता, चलो ऐसे ट्राई करते हैं।
1: चलिए मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी बताइए?
2: बस ये अच्छा लग रहा है आपका जो है
1: ये बताइए कि अभी आप घर में हैं, क्योंकि देखिए आप ऐसी जगह पे रहती ना, बंगला बाजार, यानी बाजारी बाजार है सब तरफ।
2: हाँ बाजार तो है हमारे यहाँ, बंगला बाजार, अब तो मंगल बाजार भी आ गई है हमारे यहाँ।
1: अच्छा मंगल बाजार भी उधर लगने लगी है, क्या बात है।
2: अब मंगल बाजार इधर लगने लगी, इधर कॉलोनी पीटर रोड कॉलोनी है
1: यही। तो पैसे तो आपके पास बचते नहीं होंगे, क्योंकि हर मंगल आप जरूर टहलने निकलती होंगी है ना। औरतों को रहता ही है ये कि भाई चलो कुछ नहीं है तो लो चमचे खरीद लेते हैं, कुछ नहीं है तो लो
2: सही कह रही हूँ
1: प्लेट ले लेते हैं, अरे यार तौलिया एक ले लेते हैं, कुछ नहीं तो कुछ ले ही लें, ऐसा कैसे हो गया कि शॉप
2: बाजार लगने लगी सबसे जो है, हर मंगल कुछ ना कुछ ले दे तो पैसे जो है।
1: अच्छी बात है, मंगल ही मंगल हो आपकी लाइफ में, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। गाना किसको सुनवाना चाहेंगी संगीता जी?
2: गाना आपको मैं सुनाना चाहूंगी,
1: धन्यवाद।
2: और जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी श्रोताओं को,
1: चलिए बहुत अच्छा लगा संगीता जी बात करके आपसे।
2: आवाज जा रही है,
1: आपकी आवाज तो पूरी दुनिया में जा रही है, न जाने कौन कहाँ सुन रहा है,
2: सभी को हमारी तरफ से
1: जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी, बच्चे तो दीवाने।

0: है मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
1: मेरा नाम आदित्य है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
3: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान कल पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में 8, 9 एवं 10 जून को आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतर जनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने कहा है कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता ना हो। उन्होंने अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 6 जून को परीक्षा आयोजन का पूर्वाभ्यास कराने और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में लगभग 29 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
2: प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता

0: सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय रही। नई दिल्ली में आयोजित पीएम सूर्यघर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत देश भर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर प्रदेश ने टॉप 3 स्टेट इंस्टॉलेशन श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन और राज्यवार वेरी हाई कंज्यूमर बेस श्रेणी में प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रूपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र में एनडीए सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कल से 21 जून तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जनकल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता और जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक की अवधि में जन प्रतिनिधि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी क्रम में आज विभिन्न जनपदों में मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर इस विशेष जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल भारत के उत्कर्ष, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के वर्ष रहे हैं।
3: इन 12 वर्षों में जो उनके कार्य और कृतित्व रहा वो बेमिसाल रहा। ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष इसके रूप में सिद्ध हुआ है। और यदि हम कहें कि उनके कार्यों को गिनाना शुरू करें जनहित के, देश हित के, अंतर्राष्ट्रीय जगत के हित के, तो एक ग्रंथ बन जाएगा। उन्होंने बड़े और कड़े निर्णय लिए हैं जिनकी कल्पना करना जनता सोच भी नहीं सकती थी।
0: 17 जून को अफगानिस्तान और भारत की टीम के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया, मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से

करेंगे प्रदेश व्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जी हाँ, 7:31 हो चुके हैं। एक बार फिर से शुरू हो चुका है प्रोग्राम हेलो एफएम तरन्नुम है आपके साथ। डायल कीजिए 2268 47 और 2268 652।

और 7:35 हो गए हैं और देखिए अक्षय कुमार तो वैसे की वैसे ही लग रहे हैं इस गाने में, लेकिन हीरोइन जो है वो बदल गई है फिलहाल हमारे पास जो

0: कॉलर्स हैं वो भी बदल जाते हैं, क्योंकि भाई ये तो एक रीत है दुनिया की कि लोग आते हैं जाते हैं, बात होती है चले जाते हैं निकल जाते हैं, ज़िंदगी जीते हैं ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर निकल जाते हैं। उसी तरह ये जो वक्त है ना वो भी बस आगे आगे आगे आगे बढ़ता ही चला जाता है। और वक्त एक ऐसा होता है कि कहते हैं लोग कि भाई गुजर जाता है। इससे पहले कि वक्त गुजर जाए जल्दी से बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो
1: हेलो
0: जी बताएं कौन बोल रहे हैं।
1: जी अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, बताएं कौन बोल रहे हैं।
1: जी हम तरम के मोहम्मद फैज बोल रहे हैं। हमारा बड़ा भाई ने आज फोन लगाया था मोहम्मद सही जी ने, तो उसने कहा ले बात थोड़ी कर लो।
0: अच्छा तो थोड़ी सी बात कर लीजिए फिर आप।
1: हाँ ठीक है, बस मतलब कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए।
0: और बताइए क्या कहना।
1: जी दीदी आपकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मतलब रेमबो पे आपका मतलब जो है चैनल नहीं आ रहा है कल से।
0: अच्छा
1: हाँ, मतलब हमारे यहाँ और उसके बाद बाबू अंसारी भाई के यहाँ, मोहम्मद तालिब भाई के यहाँ और रिंकी पिंकी के यहाँ मतलब कहीं नहीं मतलब चैनल है, और ऐप के माध्यम से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: मतलब सुनाई तो दे रहा है ना एटलीस्ट आपको।
1: हाँ सुनाई तो दे रहा है लेकिन पे मतलब जब रेडियो पे बता तो उसकी बात अलग होती है।
0: हाँ ये बात है, लेकिन अगर आपको ये जो प्रोग्राम है और जो ये आपको चैनल सुनाई दे रहा है तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे और अच्छे से आ सकता है, कैसे क्लैरिटी से आप सुन पाते हैं हमारे प्रोग्राम में। बताइए गाना किसको सुनवाना चाहेंगे।
1: जी गाना तरन्नुम से सबसे पहले आपको सुनवाना चाहेंगे, उसके बाद में तमाम परवीन आपा है और मेरी बहन है गुलफ्ता आपकी सिद्दीकी वाली संडीला वाली और रिंकी पिंकी है।
0: अच्छा और
1: मोहम्मद सहीर भाई हैं।
0: अच्छा
1: और उसके बाद में बाबू अंसारी भाई हैं और तालिब भाई हैं और जावेद अख्तर भाई हैं और यासिर हमीद भाई हैं और आमीन भाई।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल करी। और साथ ही साथ दोस्तों वक्त आपको बता दें कि 7:37 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम तरन्नुम में आपके साथ। और कभी कभी होता है ना कि एक मूड होता है, इंसान का एक मूड होता है कि भाई अब इस तरह के गाने या अभी चुपचाप बैठते हैं, या फिर अभी ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी आप एकदम रिलैक्स मूड में बैठना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं बहुत ही पैपी नंबर्स जो है ना वो बहुत प्ले हो चुके हैं, अब कुछ ऐसे गाने। यस एग्जैक्टली मेरा मतलब यही था कि इस तरह का सूदिंग सा नंबर इस वक्त आप तक पहुँचाएँ। और क्योंकि लिसनर ने फरमाइश मेरे ऊपर छोड़ी थी तो हमें लगा कि इस वक्त ये ट्रैक आप तक पहुँचना चाहिए। फिलहाल सुनते रहिए हेलो एफएम तरन्नुम के साथ।

0: जी हाँ, 7:49 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम. जल्दी से बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन से हैं वो और कहाँ से हैं. हेलो,
1: श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव से वंजी बोल रहे हैं.
0: अरे श्री प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको. कैसे हैं आप, इतने दिनों के बाद आपसे मेरी बात हो रही है.
1: बहन जी फोन नहीं लग पाता, लगा है आज लग गया.
0: देखिए लग गया और आपसे मेरी बात भी हो रही है. और तिवारी जी बताइए क्या चल रहा है उन्नाव में.
1: बस बहन जी ऐसे बैठे हैं बाहर.
0: अच्छा,
1: पंखे की हवा खा रहे हैं.
0: क्या बात है,
1: गर्म बहुत है बहन जी.
0: हाँ सच में गर्म तो बहुत है और पंखे की हवा खा रहे हैं. खाना ना खा रहे, नहीं खा रहे.
1: खाना वाना खाते हैं हम 9:30 लगभग खाते हैं भाई जी. उम्र हमारी 74 साल की.
0: क्या बात कर रहे हैं आप.
1: हाँ कसम से 74 साल.
0: अरे भाई आपकी आवाज़ से तो लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई 24-25 साल का बोल रहा है.
1: 74 साल की उम्र.
0: क्या बात है. तो ईश्वर करे, अल्लाह करे, भगवान करे कि आपकी उम्र 74 से दुगनी तिगनी चौगनी हो.
1: भाई जी हमेशा सुनते हैं आप लोगों प्रोग्राम.
0: कैसा लगता है.
1: बहुत

0: बढ़िया लगता है बहन जी।
1: अच्छा
0: हमको सुबह पुष्पांजलि वो सुनते हैं, बहुत बढ़िया लगती है।
1: अच्छा,
0: गीत उसमें आते हैं सब।
1: जी जी जी जी, तो इसका मतलब ये हुआ है कि आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाते होंगे।
0: हम सुबह 5 बजे बहन जी उठ जाते हैं।
1: अच्छा, और सोते कितने बजे?
0: सोते हम 11:30 के लगभग।
1: 11:30 बजे, मतलब तुरंत तो नींद आती नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगता होगा नींद आने में।
0: हाँ, मतलब 12 बजे तक।
1: 12 बजे से लेके और 5:30, यानी कि 5.5 घंटे की नींद आप लेते हैं।
0: हाँ बहन जी,
1: गहरी नींद सो जाते हैं आप।
0: घंटे 1.5 घंटे, मतलब दोपहर को।
1: अच्छा अच्छा, दोपहर
0: खाने के बाद।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है आपकी सेहत का राज।
0: हाँ, खेती बाड़ी का काम है, कोई हमको ऑफिस ऑफिस जाना नहीं।
1: सही बात है। अरे खेती बाड़ी में तो समझ लीजिए आदमी एकदम स्वस्थ रहता, बिल्कुल एकदम चंगा बिल्कुल।
0: बहन जी, हमको सफर पिक्चर का गाना सुना दीजिए।
1: किस पिक्चर का?
0: सफर, सफर।
1: अच्छा, सफर का कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: अरे सफर का वही जो राजेश खन्ना किशोर कुमार की आवाज में।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा गा के बताएंगे।
0: जिंदगी का सफर
1: है ये कैसा सफर, क्या बात है। और घर में कौन कौन है आपके?
0: हमारे घर में बहू है, लड़का है और 3 नाती है हमारी, वो एक नाती।
1: अच्छा, बहू है,
0: वाइफ नहीं है बहन जी।
1: अच्छा अच्छा, वाइफ नहीं है। तो देखिए जिंदगी है, अभी अभी देखिए आप ही ने ये गाना पसंद किया, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, तो ये तो सफर है, चलता रहेगा।
0: सफर हम डेलीकेट आपको करना चाहते हैं, आपकी टीम को।
1: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बाबू अंताजी, प्रवीण अंताजी और हमारे हरकेश भाई है, रिंकी पिंकी है, संतोष भाई साहब ओंकार
1: भाई, आप लोग की जो मोहब्बत है उसको सलाम है मेरा, और आप लोग एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आपका गाना आ रहा है अब तक।

0: जा।
1: जी हाँ, जिंदगी का सफर कुछ ऐसा ही सफर है कि ना समझ में आता है किसी को, ना अगर आप किसी को समझाना भी चाहें तो भी वो समझ नहीं पाता है कि जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ और ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना था, ऐसा हुआ क्यों, ये सारे क्यों और क्या और कब और कहाँ के जो सवाल है ना, सिर्फ ऊपर वाले के इख्तियार में है। फिलहाल 7:55 हो चुके हैं, प्रोग्राम हॉट मेल को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को इंशाल्लाह जल्द होगी मुलाकात किसी और दिन किसी और वक्त, लेकिन चैनल यही रहेगा जिसे हमारा आप कहते हैं धड़कन लखनऊ की। कुछ घंटे रहने वाली हैं आपके साथ प्रीति सी प्रीति। तो चले, गुड बाय, शुभ खैर, शुभ रात्रि।

नमस्कार, रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को लखनऊ छावनी स्थित दिलकुशा लॉन में आयोजित होने वाले बायो युग ग्रीन कमांड 2026 में पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने की पहल का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड और लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञों का संगम देखने को मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री व गोरखपुर जनपद के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज सर्किट हाउस सभागार में भाजपा महानगर और जिला कोर कमेटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने, प्रदेश सरकार के 9 वर्ष तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 जून को जन्मदिन के अवसर पर 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। नई दिल्ली में आयोजित पीएम सूर्य घर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में अपना परचम लहराया। राज्य को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुए। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश ने टॉप 3 स्टेट इंस्टॉलेशन श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस श्रेणी में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा। जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्यवार वेरी हाई कंज्यूमर बेस श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए AI आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय रही। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वसल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आपशार 100.7 FM रेनबो पर।

नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम आबशार में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे प्रीति। आबशार में आज मोहब्बत की कुछ अधूरी कुछ पूरी

बातें करने के लिए। दोस्तों कहते हैं कि इंसान का चेहरा झूठ बोल सकता है, उसकी जुबान दगा दे सकती है, लेकिन ये जो आंखें होती हैं ना जनाब, ये कभी झूठ नहीं बोलती। ये आंखें दिल का वो आईना है जहां हर जज्बात साफ साफ तैरता नजर आता है। किसी की आंखें इतनी गहरी होती हैं कि पूरी कायनात उनमें सिमट जाती है। तभी तो किसी आशिक ने अपनी मोहब्बत की आंखों की तारीफ में क्या खूब कहा है, तेरी आंखों से ही खुलते हैं सवेरों के उफ़, तेरी आंखों से ही बंद होती है ये सीम की रात, तेरी आंखें हैं या संदली बंत की नवाजी, पलके खुलती हैं तो यूं गूंज उठती है हवा, जैसे मंदिर से चरागी का निकलता हो सदा। तेरी आंखें हैं कि तकदीर बदलती सी आंखें, तेरी आंखों से ही तकलीफ दूर होती है ये सच्ची, तेरी आंखों से ही तकलीफ दूर होती है। तो बस यूं ही बने रहिए हमारे साथ आबशार में खूबसूरत गजलों के लिए और कुछ चंद बातों के लिए। आज आरजे प्रीति रहेगी आपके साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, हर अश्क मोहब्बत के सहारे नहीं होता। रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, हर अश्क मोहब्बत के सहारा नहीं होता। रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता। उस रोज़ ये लगता है कि बेकार ही जिए जा रहे हैं, जिस रोज़ सनम जिक्र तुम्हारा नहीं होता। दरियाए मोहब्बत में है तूफ़ान भी भंवर भी है, दरियाए मोहब्बत में तूफ़ान भी है, मोहब्बत भी है, भंवर भी है। हर कश्ती की किस्मत में किनारा नहीं होता, हर अश्क मोहब्बत के सहारा नहीं होता।

शब भर जागना और किसी की बोलती हुई आंखों की सरगोशियों को सुनना एक रूहानी इबादत जैसा है। जब अल्फाज थक जाते हैं तब खामोशी दिल का हाल बयां करती है। महफिल गजल का ये खूबसूरत सफ़र यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए आबशार मेरे साथ यानी आरजे प्रीति के साथ।

0: अगर इस हमारी
1: जनगणना हमारा विकास। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: मिले तो थे हम भी किसी मोड़ पर अजनबी बनकर, न जाने कब रूह का रूह से वास्ता हो गया। अब ढूंढता फिरता हूँ गुजरे हुए वक्त का वो पन्ना जहाँ ख्वाब जन्नत के थे और सफर शुरू नया हुआ था। कितना अजीब है ना, जब हम इस सफर पर निकले थे तो हमारी हथेलियों में जन्नत के ख्वाब थे, वो ख्वाब जो फूलों की तरह नाजुक थे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की महक थी। हमें लगता था कि मंजिल बेहद खूबसूरत होगी, लेकिन रूहानी तौर पर देखें तो जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा मंजिल नहीं होती, बल्कि वो मोड़ होता है जहां हम अजनबी होते हैं। क्योंकि जब दो अजनबी मिलते हैं तो वहां कोई उम्मीद नहीं होती, कोई उम्मीद टूट जाने का डर नहीं होता, वहां सिर्फ एक पाक साफ शुरुआत होती है। शायद इसलिए आज ये दिल पुकार रहा है कि चलो सब कुछ भुलाकर, सारे तजुर्बों को पीछे छोड़कर, जिंदगी को एक बार फिर से उसी मासूम मोड़ पर ले चले जहां जन्नत के वो ख्वाब फिर से नए हो जाएं, जहां फूलों जैसी मोहब्बत पर वक्त की धूल ना हो। आप सुन रहे हैं आबशार, इस वक्त प्रीति है आपके साथ, सुनते रहिए।

दश्ते तन्हाई में जब वो चंचल पवन आती है, रुख से सरका के धपटा दुपट्टा कोई शरारत करती है, जैसे पिया के सामने ही वो घूंघट उठा देती है। दिल के हर एक गोशे में बस एक ही आस सुलगती है, कभी ना आए सुर्ख मेरे हाथों की जीनत बने, कब ये उम्र भर की पाकीजा लगन हकीकत बने, और गवाही दे ये पूरी कायनात मिलकर कि बस अब वो समय है और मैं हूं। चश्मे दिल की झील में अगर अक्स है किसी का रवा, तो मूंदिए पलकें और इस हुस्न एहसास को जी लीजिए। जारी है यादों का ये आबशार, सुनिए आबशार में अगली गजल। वक्त कहता है कि आबशार की आखिरी गजल को सुनवा दिया जाए, क्योंकि 8:45 पर समाचार संध्या का होगा वक्त। 9 फिर लौटेंगे पॉप टाइम के साथ, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉक

0: चेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाए।

0: की, हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी

0: दत्ता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
1: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरल में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। इस म्यूजिक से आप समझ ही गए होंगे कि आज माइक के इस पार आपके साथ कौन है। जी 9:01 का वक्त और साथ ही साथ कुछ सेकंड्स हैं जो कि यूं ही चलते रहेंगे, जैसे कि गानों का सिलसिला बस होने वाला है शुरू। लेकिन उससे पहले आपको जरूर जानकारी आपको ये दे दें कि 9 से 10 रहेगा बिल्कुल ब्रीथलेस समा बनने वाला है, क्योंकि आपको नॉन स्टॉप मैं गाने सुनवाने वाली हूँ, जिसमें बीच बीच में आपके प्यार को यहाँ पर शामिल करेंगे। कहीं आपकी नाराजगी होगी उसको भी मैं सर आंखों पर रखूंगी, क्योंकि पढ़ना तो भाई आपके मेल को बनता ही बनता है। और इस वक्त पे आपको बता दें जरूरी जानकारी दूसरी ये है कि ये है वक्त पॉप टाइम का, जिसमें आप सुनेंगे पॉप रॉक और एल्बम सॉन्ग्स। तो चलिए, एक गाना है कर रहा है इंतजार, इसमें आपके लिए ये है एक खास एहतियात आपको रखना होगा। एहतियात ये है कि आपको अपनी सांसों को अभी फटाफट फटाफट अलोम विलोम कहते हैं ना, सांसें ले लीजिए, क्योंकि जो अगला गाना है वो आपको सांस बिल्कुल भी नहीं लेने देगा, क्योंकि गाना बजने वाला है ब्रीथलेस। तो आरजे प्रीति है आज आपके साथ, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, और जाना कहीं नहीं है क्योंकि रात 12 बजे तक का आपने हमसे प्रॉमिस किया है कि आप हमारे साथ ही रहने वाले हैं, यानी कि 100.7 FM रेनबो के साथ। तो चलिए पॉप टाइम के सफर की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से ब्रीथलेस सॉन्ग के साथ।

जी मुझे लगता है नहीं, बिल्कुल कंफर्म है कि जैसे ये गाना खत्म हुआ था, जिस तरीके से शंकर महादेवन ने लास्ट में जो सांस रोक के गाना गाया था, आखिर में सांस छोड़ी थी, इस तरीके से आप भी ठीक 10 बजे महसूस करने वाले हो कि ये जो 9 से 10 का सफर होने वाला है नॉन स्टॉप सुपर फास्ट होने वाला है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए जहाँ भी बैठे हुए अपने फोन के साथ या जहाँ कहीं भी प्रोग्राम को आप जिस भी ऐप पर इंजॉय कर रहे हैं, बस बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं ईमेल। चलिए आज जिन भी

हमारे लिसनर्स को नहीं पता है कि कहाँ से हमसे, किस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं, किस तरीके का प्रोग्राम लग रहा है, फीडबैक अपना दे सकते हैं, उसके लिए आपको हमारा पता बताना बहुत जरूरी है। तो भाई दोस्तों, fmakashwanilakhnow@gmail.com है हमारा पता, जहां पर भेजना है आपको अपनी ईमेल आईडी और जिसमें लिखना है आपको ढेर सारा प्यार। जी हाँ, प्यार आपको देना होगा, प्रोग्राम के लिए देना ही होगा जी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उस प्यार को जिसने जो है शामिल किया हमारी ईमेल के इनबॉक्स में। तो पहला नाम आता है भाई तालिब अंसारी जी का। तालिब अंसारी जी ने हमें मेल किया है राजा कटरा बाराबंकी से, और आपको बता दें दोस्तों, इन्होंने हमें जो शुरुआत करी है प्रोग्राम की, उसमें मतलब प्रोग्राम में ईमेल करने की, तो नाश्ते नहीं, हाँ ब्रेकफास्ट के साथ उन्होंने की है। मतलब सबसे पहले हमें बहुत ही प्यारी सी चाय भेजी है। और तालिब अंसारी जी, हमें आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, आपने ब्लैक टी भेजी है। इसका मतलब आप समझ सोच रहे होंगे कि हाँ मैम को थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, दूध वाली चाय इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ, और ब्लैक टी परफेक्ट होती है। तो आप सब भी ब्लैक टी पिया करिए और दूध वाली चाय को थोड़ा सा अवॉइड किया करिए। और इसी नाश्ते के साथ इन्होंने क्या लिखा है, अच्छा नीचे लिखा भी है ब्लैक टी आपके लिए, देखिए हमने बिना पढ़े समझ लिया। और लिखते हैं आपके लिए टी नाश्ता, बहुत दिनों के बाद आई हैं आप तो ईद का चांद हो जाती हैं, एक बार आई और एकदम से हैप्पी वाला माहौल फिर गायब। भाई तालिब अंसारी जी क्या करें, आते हैं जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं, लेकिन आना तो बनता है भाई, आएंगे ज़रूर। आप लोगों का प्यार ही ऐसा है कि खींच खींच के लाता है हम लोग को स्टूडियो तक। तो फिर से बहुत सारी अपने मेल भेजी, आपने लिखा आपके प्रोग्राम आने का मज़ा अक्सर एक इंतज़ार के बाद ही आता है, आज तो धमाल होगा, गर्दा उड़ेगा पर पानी भी थोड़ा बरस जाए। अच्छा दिन में आपके यहाँ तालिब अंसारी जी बाराबंकी में हल्की छूट वो छींटे वीटे हुई थी कि नहीं? फिलहाल यहाँ पे तो हल्की छुटपुट सी, मतलब इतनी बारिश हो गई थी कि अगर आंधी आए तो धूल से हमारा घर गंदा नहीं होगा, इस टाइप की मतलब बारिश हो गई थी। और तालिब अंसारी के बाद पढ़ते हैं मेल अंसारी जी का, और अंसारी जी लिखते हैं, अंसारी शहशनूर जी, रेनबो कैफ़े पेश करने वाले को हमारा आदाब, और आप कार्यक्रम रोज़ सुनते हैं, प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं, ग्राम वपोस शहरपुर। भाई आपका पता तो हमारे दिल को जीत लेता, क्या ही आपका पता है। अच्छा हम पढ़ते हैं, ग्राम वपोस शहरपुर मटकली जिला बरेली, जैसे मटकली मतलब अलग ही एक इसमें राइमिंग होती है। और शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील मोइन तस्लीम और डीजे प्रधान, देखो भाई ऐसे लग रहा है कि गाने भोजपुरी वाले जो गाने नहीं लास्ट में कहता है भाई, ऐसे ही हम तुम्हारे नाम एड्रेस को पढ़ डालें। रामराज जी का भी मेल आ गया है, गणेश आइनवा पॉप टाइम जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज राजूभान शंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज बंधु और बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से प्रीति बिटिया को प्यार भरा नमस्कार जी, शुक्रिया इस प्यार के लिए और शुभ आशीर्वाद पहुंचे आपका, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, फरमाइश है। अच्छा ठीक है, चलिए आपकी फरमाइश को हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रामराज जी हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में फरमाइशें 7 से 8 होता ना, उसमें फ़ोन करके अपनी फरमाइश को पूरा कर लेते। फिलहाल यहाँ पे हम आपके ईमेल को पढ़ सकते हैं और यूं ही पढ़ते रहेंगे, लेकिन एक साथ एक मेल आ गया बड़ा ही प्यारा सा जावेद अख्तर जी का, और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, और क्या लिखा है जी, मिल गया, गुड इवनिंग प्रीति मैम जी, आपके खूबसूरत अंदाज में आप शार प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया, सुनते सुनते बिल्कुल खो से गए थे, जब आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होगा, पॉप टाइम कार्यक्रम का सुरूर दिन ब दिन अपनी तरफ खींच रहा है जी, बिल्कुल हम लोगों को भी बेहद पसंद आता है इस प्रोग्राम को, यहाँ पे प्रेजेंट करने में जितना मजा आता है मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा आप लोग इंजॉय करते हैं। और ये हमें मेल किया है रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से, शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन। इसके साथ मोहम्मद आसिफ का भी मेल पढ़ते हैं, हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं प्रोग्राम, पॉप टाइम लाजवाब लगता है, प्रीति मैम कैसी हैं आप, बिल्कुल चकाचक। और निर्मल गुप्ता जी का भी मेल आया है, लिखते हैं आरजे साहिबा जी को नमस्कार, पॉप टाइम को शो शुरू होते ही ऐसा लगता है जैसे थकी हुई शाम को रंगीन परिंदों के पंख लग गए हैं, क्या शायरा है ना, अंदाज में लिखा है आपकी आवाज़, अच्छा आपकी आवाज़ में वो जादू है जो चाय को और स्वादिष्ट सफ़र को और हसीन और दिल को थोड़ा शायर बना देता है, आपको रजनीगंधा में हम किसी दिन बुला लेंगे निर्मल जी, और फरमाइश की है ज़रूर हम किसी और प्रोग्राम में पूरा कर देंगे, आपका शो सिर्फ गाने नहीं बजाता बल्कि दिलों की धड़कनों को भी ट्यून कर देता है, पूरी टीम को ढेर सारा प्यार सलाम, यूं ही शाम को रंगीन बनाते रहिए। तो चलिए मेल को पढ़ने के सिलसिले को देते हैं थोड़ा सा पॉज, क्योंकि वक्त हो गया 9:10 और कुछ सेकंड्स, और इसके साथ ही लॉन्ग इलायची खाकर बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि अगला गाना कर रहा है आपसे रूबरू होने के लिए, तो बस सुनते रहिए।

वही इसी गाने के साथ सुनते हैं अगले मेल को, और ये मेल हमें आया है गुलफ्सा सिद्दीकी जी का, और लिखते हैं गुड इवनिंग प्रीति मैम, मैं गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला, पहले ये आप बताओ कहाँ गायब हो जाती। मुझे लगता है कि 8 बजे का जब प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं आबशार, उससे पहले जो न्यूज़ पढ़ते हैं उस न्यूज़ की हेडलाइन में एक हम ऐड कर दिया करें कि हम फिलहाल थे कहाँ। भाई कहाँ जाएंगे आप सबको छोड़कर, बस आकाशवाणी में ही होते हैं और बस रूबरू कम हो पाते हैं, इसका गिला हमें भी है। ज़रूर जल्दी जल्दी आया करेंगे। और लिखती हैं कि हमारी इतनी अच्छी आरजे जल्दी जल्दी क्यों नहीं आती हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप जल्दी जल्दी आया करें। साहिबा अंसारी और साजी अंसारी, रोशनी रावत शर्मा, परवीन महक अंसारी, ममता गौतम, निशा अंसारी, हम सब सुन रहे हैं। तो चलिए जो जिनका जिनका भी नाम लिया है मैंने, उन सभी को मेरी तरफ से हेलो। तो भाई घर की छत पर है, मौसम कैसा है ये भी ज़रूर बताना हमें गुलफ्सा। फिलहाल पढ़ते हैं वकील अहमद जी का मेल। अस्सलाम वालेकुम, देखिए मैंने पढ़ना सीख लिया। मुझे लग रहा सुल्तान रज़ा ने कहा था कि किसने मुझे कहा था ये लिखा था, तब मैं थोड़ा सा इसको बोलने में, लेकिन अब बिल्कुल फ्लुएंट हो गए। देखो फिर से बोल के बताते हैं, अस्सलाम वालेकुम, है ना, बोलिए ना, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लगता है, गाने अच्छे बज रहे हैं, 1 किलोमीटर टेबल पर आए, अच्छा टेबल नहीं ट्यूबल, ओके, और गर्मी बहुत है। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, देखो नाम फिर से पढ़ते हैं, बहुत तेज़ है, वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, ज़िला सीतापुर। साहिबा हमें लगा हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफ्सा सिद्दीकी, अहमद नवाब, रविंद्र यादव, बब्बू यादव, सबको आपने याद किया, क्या बात है। सुल्तान रजा जी का भी मेल आ गया, नमस्ते प्रीति मैम, अस्सलाम वालेकुम, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से। देखो सुल्तान, आपके मेल पढ़ने से पहले मैंने दूसरी मेल में आपको याद कर लिया था, मुझे लगा था आप ही ने एक बार मुझे बोला था। और आगे लिखते हैं कि सुल्तान रज़ा, इकबाल रज़ा, रजिशान रज़ा और अफजल रज़ा, मोनिश रज़ा, सादिक रज़ा, संजिदा व शिहाना भी, समीरा बाबू, अम्मी, पापा, प्रीति मैम, बहुत दिनों के बाद आज आपके पास सुनने का मौका मिल रहा है। और दिल गार्डन, वाकई में दिल गार्डन गार्डन हो गया जी, हमारा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब आप लोग के ईमेल पढ़ते हैं, और जब वो ईमेल में इतना प्यार आता है ना, तो आए हाय क्या ही बताएं। प्रीति मैम जल्दी जल्दी आया करो, 20 दिन की छुट्टी ली थी स्कूल से। अच्छा सुल्तान जी, ये तो आपने पोल खोल दी हमारी यहाँ पे कि आपने, जी जी बिल्कुल सही आपने बताया है, और इस पर हम बात करेंगे आपसे। और इसके साथ ही हम एम के राज जी का भी मेल पढ़ लेते हैं। मनोज मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर हर हुआ, फिर से पढ़ते हैं, मुनेश कुमार राज, गांव

खानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी से है और पॉप टाइम सुनने में उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते ही हो गए जैसे लगता है कई साल। आप लोगों को बुला लेना चाहिए इधर, सच में आप लोगों को किडनैप करके इधर ही बुला लेते हैं, बैठा लेते हैं और करो भैया एक एक लिसनर एक एक कट बोल के जाए और क्या जबरदस्त प्रोग्राम होगा। अच्छा, इसकी हम बात करेंगे जरूर कि एक एक लिसनर को बुला के बताया जाए और बोले, बहुत अच्छा लिखते हैं आप लोग। और इसके साथ ही मेल पढ़ते हैं कमल पांडे का। कमल पांडे जी लिखते हैं कि प्रीति जी नमस्कार, मैं कार्यक्रम पॉप टाइम से जुड़ चुका हूँ, बधाई हो आपको, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और कार्यक्रम की शुरुआत ही बहुत ही अच्छे गीत के साथ हुई है। पॉप टाइम मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है, मैं यहाँ कार्यक्रम बहुत सुनता हूँ, पसंद करता हूँ, आज कई दिनों के बाद कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरा मेल, आशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कमल पांडे जी, आपने मेल किया है तो मेल अवश्य शामिल होगी। और बातों को देते हैं थोड़ा सा पॉज क्योंकि एक गाना आस्था गिल जी का कर रहा है इंतजार, इस गाने को सुन लिया जाए। 9:22 और कुछ सेकंड का वक्त, सोचा था 9:22 बोलेंगे लेकिन लिखो वक्त पहुंच गया 9:22:30 का और सुनते हैं आस्था गिल और साथ में कौन है, अकाशा पुरी वायु। और ये गाना है नहीं भाई, ये जबरदस्त गाना है, इसको सुनिए, एंजॉय करिए और बने रहिए हमारे साथ, यानी कि 100.7 FM रेनबो के साथ धड़कन लखनऊ की।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

तो भाई दोस्तों 9:31 का वक्त हो गया है और पॉप टाइम सुन रहे हैं आप ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर। फिलहाल माइक इस पार है आरजे प्रीति आपके साथ। और जिन भी लिसनर को ये सोच में पड़े हुए हैं, जो भी लिसनर हैं सोच रहे हैं कि कहाँ पे ईमेल करें जिससे कि उनका भी ईमेल शामिल हो जाए, उनकी भी बातों को हम यहाँ सबको बता दें, तो बस आपको कहीं और सोचने की ज़रूरत नहीं है। fmakashwani@gmail.com पर आप हमें मेल करिए। फिर से बता देते हैं, fmakashwani यानी वाणी में डब्ल्यू नहीं होगा, वी होगा, जी हाँ। तो इसको ध्यान रखिए और हमें आप ईमेल भेज दिए और देखिए क्या पता अगला ईमेल हम आप ही का पढ़ रहे हों। फिलहाल जो मेल पढ़ने जा रहे हैं विनीत कुमार का है। विनीत कुमार लिखते हैं कि रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से मेल कर रहा हूं। प्रीति बहन जी ऑफ टाइम प्रोग्राम सुपर हिट आप करते हैं, आपकी बोली बहुत अच्छी लगती है, भोजपुरी गाना बजा दो तो और मजा आनंद आ जाए। आपको गुड इवनिंग, शुभ रात्रि की नमस्ते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ईमेल शामिल करने के लिए। जी शुक्रिया विनीत जी मेल करने के लिए। रणधीर गुप्ता का भी मेल आया है। रेडियो सखी जी सप्रेम नमस्कार, कार्यक्रम बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन प्रस्तुति और गाने पसंद आ रहे हैं। साथ में कुछ नाम लिखे हैं, ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता जी का नाम लिया है। और रोशनी रावत जी का मेल शामिल करते हैं। बड़ा ही कलरफुल, बड़ा ही खूबसूरत सा मेल आया है, ऐसा लग रहा है सावन के महीने में हम इस मेल को पढ़ रहे हैं। और रोशनी जी शुक्रिया इतना टाइम निकालने के लिए, क्योंकि इसमें जो आपकी क्रिएटिविटी दिख रही है उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में जो थोड़ा सा भी वक्त हमारे लिए निकाला ना, उसके लिए शुक्रिया। जी लिखती है, मैम जी आप कैसी हैं? बिल्कुल हम ठीक हैं, आप शायद प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आप आई हैं। जी आप ये कह सकती हैं कि बहुत दिनों बाद आए हैं, आप गायब हो गई थी। जी हम कहीं गायब नहीं हुए थे क्योंकि हम मिसेस इंडिया बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर इंडिया तो नहीं कह सकते, हम खुद को मिसेस इंडिया ही कहेंगे। और लिखती है, तब से कितना इंतज़ार किया है, चलो कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए लेकिन आए तो सही। बस ये फीलिंग होनी चाहिए रोशनी रावत कि देर से आए दुरुस्त आए लेकिन आए तो सही। और साथ ही लिखते हैं, आते ही गजब की शुरुआत कर दी है, मत पूछे कितना अच्छा लग रहा है, एक शब्द में जवाब बोलूं तो कमाल धमाल लग रहा है, पॉप टाइम में एकदम गर्दा उड़ा दिया है, बबीता जी को नचाना है, कोई तड़कता भड़कता। अच्छा ठीक है, जो अगला गाना है ना वो भी थोड़ा सा ऐसे ही है, वो बबीता जी जरूर डांस करेंगी, इतना झूमेंगी खुद को रोकना नामुमकिन है। मेरा नाम रोशनी रावत है और सफीरपुर जिला उन्नाव से मेल किया, चंडीगढ़ से प्रोग्राम को सुन रही है। बबीता राव, नीलू शर्मा दीदी, गुलफशा सिद्दीकी दीदी जी को नमस्कार। तो भाई अगर आप सुन रही हैं, रोशनी रावत के नमस्कार को स्वीकार करें आप। मोहम्मद आसिफ जी ने बड़ा ही प्यारा सा मेल भेजा है और साथ में कुछ पिक्चर्स भेजी हैं जो क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, हैदराबाद तेलंगाना से प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश भी हो रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्या बात है मोहम्मद आसिफ जी, ये बारिश का मज़ा अकेले अकेले ले रहे हैं, क्यों नहीं थोड़ी सी इधर भी भेज रहे हैं। भैया मोनू सेठ का भी मेल आ गया है, कैसन है यहाँ? बिल्कुल उम्दा है हम और आहे बहुते नीक होएंगे बिल्कुल, और पॉप टाइम जबरदस्त चल रहा है, ईमा कोनो शक नहीं। जी बिल्कुल कोनो शक नहीं, ईमा आपको पसंद आ रहा है ना, तो बस हमको भी बड़ा ही पसंद आ रहा है ईमा, तो वो कोनो शक नहीं, ईमा भी कोनो शक नहीं है, हम यहाँ पे बैठ के सारी बोली सीख लेंगे कई दिनों बाद आपको सुन रहा हूँ, सुन रही, अच्छा माफी के अंदाज में पढ़ते हैं आपका, सुन रही ना है, जल्दी जल्दी आया करें मैम जी। बिल्कुल मोनू सेठ जी, आज हम लिख के जाएंगे कि हमको अगली बार जल्दी आना है। तालिब अंसारी जी ने फिर से मेल किया है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, के लिए आई है आज, देखना 2-3 दिनों में पानी ज़रूर बरसेगा। ओहो क्या बात लिखी है तालिब अंसारी जी ने, लिखा है कि नहीं मैम मेरे बाराबंकी में यहाँ कुछ भी बूंदाबांदी नहीं हुई है, आप प्रोग्राम में आई हैं, आज देखना 2-3 दिनों में पानी ज़रूर बरसेगा। हे भगवान बरसा देना तालिब अंसारी जी की बात सही हो जाए, वरना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और फीडबैक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के लिए सब लोग दें भाई, तालिब अंसारी जी ने कहा है कि हर कोई इसके फीडबैक दें, हमें अच्छा अच्छा दें और फीडबैक 101 मार्क्स सारे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आप शार भी बहुत गजब का लगा प्रोग्राम, लेकिन ये बात सच है हम लोग बहुत इंतजार करते हैं आपका, क्या ही बताएं हम वक्त, क्या बताएं हम बाकी चीज़ों के लिए, ज़रूर आया करेंगे। विजयपाल यादव जी ने लिखा है कि प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी आया करें और आवाज़ बहुत पसंद है। जी शुक्रिया, ये सब तो आप लोग के प्यार की वजह से है। गुलफ़सा सिद्दीकी जी लिखती है, हेलो प्रीति मैम आज बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे यहाँ आप का स्टेशन साफ नहीं पकड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं गुलफ़सा जी आपके उधर बारिश वारिश हुई हो या आंधी आई हो जिसकी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया, अदरवाइज तो ये कंप्लेन अब नहीं आती है क्योंकि काफ़ी वर्कआउट कर लिया गया इन चीज़ों पे जिससे कि ये सारी कंप्लेन हमारे प्यारे लिसनर्स को ना करनी

पड़े। विनीत कुमार जी ने फिर से लिखा है कि कुछ मेरे दोस्त हैं आजाद सिमरी से, ओमकर अतरौली सीतापुर, संतोष कुमार मौर्य हरदोई से, ममता हरदोई से, संजू संजय हरदोई से, और सीरा रावत रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, सुरभी सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से। आपने बड़े ही कोने कोने से सारे दोस्तों को नाम लिया है। इंद्रपाल मिश्रा का मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। आपकी मीठी बोली के कारण कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है, आपके आने वाले श्रोताओं में खुशी की लहर आने से। अच्छा जी, शुक्रिया। और ये मेल हमें किया है अमृता मोहली सीतापुर इंद्रपाल मिश्रा जी ने। तो देखिए म्यूजिक भी बंद हो गई क्योंकि कहा जा रहा है कि गाना प्ले कर दिया था। तो चलिए सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये खूबसूरत सा ट्रैक। तो

जी वक्त कह रहा है 9:46 हो गए हैं और स्टूडियो क्लॉक ने ये भी हमें बताया है कि अगर किसी ने अभी तक मेल ना किया हो तो उसको मैं यहाँ से बोल दूं कि भाई ईमेल क्यों नहीं कर रहे हैं, हम आपके ईमेल का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट मेल करिए। जिस तरीके से वारिस अली जी ने हमें मेल किया है, लिखते हैं कि प्रीति जी को प्यार भरा आदाब नमस्कार, अर्ज है उड़े फिरते हैं ये पंछी ना जाने क्यों फिजाओं में, क्यों इनको क्या इनको पेड़ के नाजुक सहारे बोझ लगते हैं, क्या बात है, आप शो बहुत अच्छा कर रही हैं, आपको हमारे गाने पसंद आ रहे हैं, अगर मुमकिन हो तो ओके चलिए ज़रूर कोशिश करेंगे प्ले करने की। और आज इन्होंने हमसे एक वादा किया है जो आप सबको बताएंगे कि इन्होंने लिखा है कि आज मैं रजनीगंधा ज़रूर सुनूंगा और रहूँगा आपके साथ। फिलहाल ये हमें मेल किया है संजय नगर ऐशबाग से और इसके साथ ही हम मेल पढ़ते हैं, बहुत सारी ईमेल गए हैं, वक्त कह रहा है कि लगता है हम ईमेल ही पढ़ते रह जाएंगे। जितेंद्र का भी मेल आया है, नामदेव बबलू, नामदेव अंजू, नामदेव खनक, नामदेव आरोही और सौम्या का है नाम इसमें, जिला शहडोल मध्य प्रदेश से मेल किया है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, गाने भी अच्छे लग रहे हैं और शुक्रिया भेजा है। गीता सेठ का भी मेल आया है, लिखती है मैम जी नमस्ते, आपको सुनकर खुशी हुई और उससे कहीं ज़्यादा खुशी हुई जो आपने अपना नाम लिखा हुआ, मिसेस गीता सेठ एफएम दीवानी। अनुराधा शुक्ला जी का भी मेल आ गया, हेलो मैम नमस्ते, कैसी हैं आप, मैं अनुराधा शुक्ला विलेज कतर गिलौला सरस्वती से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ, आपकी पूरी फैमिली के लिए मेरी तरफ से हेलो। और आंचल सेठ का भी मेल आया है, रायबरेली से शानदार प्रोग्राम चल रहा है, वो लिखती हैं। निर्मल गुप्ता जी का भी मेल आया है, लिखती हैं कि आरजे प्रीति जी आपको आपका शो सुनकर ऐसा लगता है जैसे चाय में एक्स्ट्रा चीनी पड़ गई हो, मज़ा ही आ जाता है। और निर्मल गुप्ता जी हम तो ये कहेंगे कि प्रोग्राम में मज़ा तब आ जाता है, चीनी एक्स्ट्रा तब हो जाती है जब हम आपके ईमेल को पढ़ लेते हैं, जब हमें इनबॉक्स में आप लोग का नाम दिख जाता है ना, है तब कलेजे को ठंडक पड़ती है कि चलो सारे के सारे हमारे लिसनर्स ने अटेंडेंस लगा दी है। और लिखते हैं सच बताऊँ आपकी आवाज़ अच्छा आवाज़ की तारीफ की है और अगर अलार्म में लगा दी जाए तो लोग स्नूज की जगह वंस मोर दबाएंगे, हाय बड़ी तारीफें लिखी हैं, दिल को खुशी मिल रही है। एक छोटा सा जोक है, टीचर इतनी देर से क्यों आए, स्टूडेंट रास्ते में एक बोर्ड दिखा आगे स्कूल है, धीरे चले बस फिर क्या धीरे धीरे आ गए, वाह क्या बात है, बड़ा ही अच्छा सा मेल लिखा है और जोक भी बड़ा क्यूट है। और दो लाइनें लिखी हैं, हंसी आपकी रेडियो की जान लगती है, आपकी बात है दिल की मुस्कान लगती है, यूं ही हंसाते रहिए सबको हर दिन, आरजे प्रीति आपकी आवाज़ बड़ी कमाल लगती है, शो में हमेशा ऐसे ही हंसी और खुशी खुशियों से बने रहिए। भाई निर्मल गुप्ता जी हम तो यही कहेंगे, आप भी यूं ही खुश रहिए क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हर किसी को हो रही है, तो ये हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए भाई, ब्लड पूरा होना चाहिए, खुश रहिए मस्त रहिए और अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रॉपर करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शिकायत हो जाती है लोगों को, तो खुश रहोगे ना तो ये अनेमिया टाइप की चीज़ें नहीं होंगी। और बीपी शुगर ये सब तो हाई फाई बीमारियाँ हैं, इनका तो नाम ही नहीं लेना है, है ना। और सोनू परवाना जी का भी मेल आया है, सराहनीय प्रस्तुतिकरण के लिए धन्यवाद जी, आपका भी शुक्रिया। आनंद तिवारी जी का भी मेल आया है, आनंद तिवारी जी लिखते हैं कि जिंदगी सभी के लिए वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है, कोई दिल रखने के लिए जी रहा है, कोई रंग नहीं होता बारिश में फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है। और राजस्थान भिवाड़ी से प्रोग्राम को सुन रहे हैं आनंद तिवारी और दारुकुइया मल्लावा हरदोई है, बड़ा प्यारा सा नाम है आपकी जगह का, इस पे गाने बनने चाहिए। मोनू सेठ का भी मेल आया है, प्रोग्राम बहुत पसंद किया है, खालिसपुर ऊंचा गांव से मेल किया है, अनुराधा शुक्ला जी का मेल हमने शामिल कर लिया, बाबू अंसारी का भी मेल हम शामिल करते हैं। गुड इवनिंग प्रीति मैम, कैसी हैं आप, बहुत हम अच्छे हैं, प्रोग्राम आपको पसंद आया, झमझम हुआ लग रहा है, और कुछ मेरे रेडियो दोस्त के नाम शामिल कर लीजिए जी, बिल्कुल कुलदीप गुप्ता, फैज अंसारी, महेंद्र दीपन। तो भाई आप तीनों जहाँ कहीं भी हों अपने दोस्त को शुक्रिया कहिए क्योंकि ऑन एयर उन्होंने आपके नाम को शामिल कराया है और साथ में आपने कुछ डांस मूव्स भेजे हैं, ये अगर रियल में आप ऐसा डांस करते तो भाई क्या बात है। कुमकुम शुक्ला जी का भी मेल है, प्रणाम दीदी मैं शिवम शुक्ला और गिलौला डिस्ट्रिक्ट सरस्वती से प्रोग्राम को सुन रहा हूँ, शायद ये मैंने मेल शामिल कर ली है, भाई दोस्तों एक ही बार मेल करो। प्रीति मैम आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छी हैं जी, शुक्रिया माशाल्लाह, नज़र ना लगे, सच में अगर इतनी तारीफ़ें करोगे तो कहीं ना कहीं नज़र ना लग जाए, लेकिन हम नज़र लगवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और गुलासा सिद्दीकी जी शुक्रिया इतने प्यार भरे मेल के लिए। विरजेश सिंह का भी मेल आया है, लिखते हैं कि इस समय हम खेत में बैठे सुन रहे हैं, गन्ना में सिंचाई कर रहा हूं और खाना खा रहा हूं, आ जाओ मैम जी खाना खा लो। अरे बाप रे, आपको डर नहीं लग रहा, आपने जो फ़ोटो भेजी है पीछे तो बिल्कुल काला सन्नाटा है कहीं, भाई जल्दी से खाना खा के घर जाइए। और बाबू अंसारी का भी मेल आया है, गुड इवनिंग प्रीति मैम, बाबू अंसारी जी अभी हमने आपके मेल को शामिल किया है। अमन नवाब जी का भी मेल आ गया है, हेलो डी

प्रीति दी, कैसी हो? बिल्कुल चकाचक। कहाँ थी दीदी भाई, हम तो आप ही के पास थी, आप कहाँ थी अमन जी? आप और आगे लिखती हैं, आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी आवाज़ सुनकर मुँह मीठा हो जाता है, मेरे रेडियो पर बज नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है, काश ये बात मेरी। अच्छा मैं आज ही, क्योंकि ये दूसरी मेल है जिसने कहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं ज़रूर ये इस बात को आगे तक पहुँचाऊँगी, बहुत आगे तक, उतनी आगे तक ना हो कि पीछे छूट जाए हमारे अधिकारी लोग। और मनोज विश्वकर्मा की भी मेल को शामिल करते हैं, प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली मीठी सी आवाज़ को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रोग्राम लाजवाब, 3-4 दिनों के बाद ईमेल कर रहा हूँ। क्यों क्यों क्यों ये 3-4 दिन की एबसेंट आपकी क्यों लगी है, क्यों आज आपकी अटेंडेंस में प्रेजेंस लगी? भाई डेली अटेंडेंस अपनी लगवाते रहा करिए। और दिलीप कुमार विश्वकर्मा, रमेश पटेल, महेत्रू पैकरा छत्तीसगढ़ से मेल किया है, जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव। नवनीत जी का भी मेल आ गया है, नमस्ते मैम, और ये चौक कोतवाली लखनऊ से हैं, आप कैसी? बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई भी गाना सुनवा दीजिए। ये क्या बात हुई, कुछ नाम ले लीजिए, जल्दी से ले लेते हैं, वक्त कह रहा है कि बस। नित्या, सीमा देवी, मंजय कुमार, कृति मैम, आप हमारी मम्मी की फेवरेट आज हैं, आई है मम्मी जी को मेरा नमस्कार, उनको हेलो बोल दीजिए, हेलो। और सालों से सुनती आ रही हैं, बस कॉल नहीं लगती है, कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन नित्या आपके गानों पर लोटपोट नाच रही है, तो चलिए उनको ध्यान रखिएगा, गिर ना जाए, ध्यान रखिएगा, चलिए। और दलेर मेहंदी की आवाज़ में ये खूबसूरत ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, वक्त हो गया 9:52 और कुछ सेकंड्स, अगर इस गाने के बाद भी आपसे बात हुई तो बड़ी ही अच्छी लगेगी, अदरवाइज इस गाने के बाद कोशिश करेंगे एक और गाना सुना दे, न्यूज़ न्यूज़ के उस पार रजनीगंधा कर रहेगा, आपका बेसब्री से इंतज़ार, रात 12 बजे तक रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिए।

नमस्कार, रात्रि के 10 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक और भारतीय वन सेवा परीक्षा प्रारंभिक 2026 में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी, वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया है। वाराणसी में आज से दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव

विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास और आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के गगोरा में संचालित एक क्रैशर प्लांट में भीषण और संदिग्ध विस्फोटक से हड़कंप मच गया। इस जोरदार धमाके में दो कमरे क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। उन्होंने शोला और शबनम, आंखें दिल, तेरा दीवाना, तलाश और रंगीला राजा जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया था। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की खामोशी।

रात के इस बेहद खामोश पहर में एक बार फिर आपका खैर मकदम। आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रीति। दोस्तों, आज रात ये सन्नाटा दिल पर एक भारी बोझ की तरह महसूस हो रहा है। आज शब्द कम पड़ रहे हैं, आंखें नम हैं और आवाज में एक अजब सा भारीपन है, क्योंकि आज हम सब मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक बेहद अजीम और दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज नीलानी जी को, जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे पहलाज जी ने अपनी पूरी जिंदगी सिनेमा के बड़े पर्दे को चमकाने में लगा दी, नए सितारों को तराशने में लगा दी। लेकिन अफसोस, आज वो जादुई पारस पत्थर खुद हमेशा के लिए खामोश हो गया है।

दोस्तों 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक की शुरुआत में, जब हिंदी सिनेमा रोमांटिक फिल्मों से हटकर एक्शन और ड्रामा की तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने बतौर स्वतंत्र निर्माता कदम रखा।

दोस्तों 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक की शुरुआत में, जब हिंदी सिनेमा रोमांटिक फिल्मों से हटकर एक्शन और ड्रामा की तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने बतौर स्वतंत्र निर्माता कदम रखा। उनका मकसद सिर्फ फिल्में बनाना नहीं था, बल्कि वो भारत के आम आदमी थे। उस फ्रंट रो दर्शक के जज्बात को पर्दे पर उतारना चाहते थे, जो अपनी तकलीफें भूलने सिनेमा घर आते थे। और साल 1982 में उन्होंने फिल्म हथकड़ी से अपने इस खूबसूरत सफर का आगाज किया। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसने उस दौर के आम दर्शकों की नब्ज को पकड़ लिया था। जबरदस्त एक्शन, कड़क डायलॉग्स और एक ऐसा तेज ड्रामा जिसने हर किसी को पर्दे से जोड़ दिया। इसके बाद साल 1985 में आई उनकी अगली फिल्म आंधी तूफान। ये फिल्म अपने नाम की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा तूफान लेकर आई थी। इसकी खासियत थी कि इसके जबरदस्त स्टार कास्ट और वो मसाला एंटरटेनमेंट जिसने फ्रंट रो दर्शकों को सिनेमा घरों में तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। प्रहलाद जी जानते थे कि बड़े स्टार्स के दौर में भी जनता को सीधे दिल से कैसे जोड़ना है। इन दोनों ही फिल्मों से उन्होंने जो सफर शुरू किया, वो कामयाबी की बुलंदियों तक गया।

दोस्तों, गोविंदा को इंडस्ट्री में लॉन्च करने वाले और उन्हें सुपरस्टार बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ पहलाज निहलानी जी ही थे। पहलाज निहलानी जी ने साल 1986 में फिल्म इल्जाम से गोविंदा को इंडस्ट्री में लॉन्च किया था। हालांकि पहलाज को गोविंदा जी पहले बहुत ज्यादा पसंद नहीं थे। गोविंदा को इसके बारे में पता भी था, उन्हें यह भी पता था कि वो इल्जाम फिल्म के लिए एक चेहरा तलाश रहे। फिर क्या था, गोविंदा ने अपनी एक्टिंग के कुछ कट्स, कुछ डांस मूव्स एक कैसेट में रिकॉर्ड करके उन तक पहुंचा दिया। उनके डांस मूव्स और एक्शन ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने गोविंदा को लीड एक्टर के तौर पर लॉन्च कर दिया। और इस तरह से फिल्म इल्जाम से गोविंदा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इस तरह गोविंदा रातों रात डांसिंग और एक्टिंग आइकॉन बन गए। उन्होंने गोविंदा के साथ साथ शोला और शबनम और आंखें जैसी सफल फिल्में दी।

दोस्तों, पहलाज नीलानी ने सिर्फ गोविंदा को ही स्टार नहीं बनाया, बल्कि चंकी पांडे को भी उन्होंने ही लॉन्च किया था। यही नहीं, 90 के दशक में बेहद कम समय में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली दिव्या भारती को भी पहलाज नीलानी ने ही सुपरस्टार बनाया था। उन्होंने 1987 में फिल्म आग ही आग से चंकी पांडे को फिल्म इंडस्ट्री में पहला बड़ा मौका दिया। इसके बाद 1993 में उन्होंने गोविंदा और चंकी पांडे को लेकर आंखें जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई थी, जो साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के अगर बात करें तो नाम आता है शोला और शबनम का। ये फिल्म दिव्या भारती की डेब्यू फिल्म होने वाली थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर पहलाज नीलानी ने विश्वात्मा फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय से बात की थी कि उनकी फिल्म शोला और शबनम को पहले रिलीज होने दें। और फिर क्या था, राजीव राय मान गए थे, लेकिन कुछ सेंसर प्रॉब्लम के चलते ये फिल्म डिले हो गई थी और विश्वात्मा फिल्म पहले रिलीज हो गई थी। और यही फिल्म ही दिव्या भारती की डेब्यू फिल्म बन गई थी। पहलाज जी, आज भले ही आप हम

सबसे बहुत दूर चले गए हों, लेकिन आपकी यादों का ये खूबसूरत सफर हमें हमेशा याद रहेगा। 100.7 FM रेनबो परिवार की तरफ से आपको श्रद्धांजलि।

दोस्तों वक्त हुआ है 10:34 और 34 सेकेंड्स। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ, आपकी हम सफर आरजे प्रीति। वक्त अपनी रवानी से गुजरता रहता है, लेकिन ये जो पुराने महकते हुए गीत होते हैं ना, ये गुजरे हुए दौर के उस हसीन जरोखे की तरह होते हैं जिसे जब भी खोलो रूह पुरानी यादों की खुशबू से सराबोर हो जाती है। रात का ये पहर ही ऐसा होता है जहां दिल बीते कल के उन खूबसूरत पन्नों को एक बार फिर से छूना चाहता है। तो चलिए रजनीगंधा के इस मखमली सफर को अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस शांत और खामोश शब में आपको ले चलते हैं पुराने गीतों के एक बेहद सुरीले और सदाबहार सफर पर, जहां हर एक सुर हर एक लफ्ज सीधे आपके रूह से गुफ्तगू करेगा। सुनते रहिए रजनीगंधा।

दोस्तों, शहर की वो बेतहाशा भागती दौड़ती भीड़ भी अब अपने अपने आशियानों में सिमट गई है। खिड़की के बाहर देखिए, जो गलियां कुछ घंटों पहले शोर से भरी थी, वो अब एक मखमली चादर ओढ़कर खामोश हो चली हैं। लेकिन जानते हैं, इस खामोशी का भी अपना एक शोर होता है। ये उन जज्बातों का शोर है जो दिन की रोशनी में शायद कहीं तप जाते हैं, और रात के इस अकेलेपन में जब हवाएं पर्दों से टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे किसी के आने की आहट हो रही हो। बार बार फोन का स्क्रीन को देखना कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, या किसी पुरानी तस्वीर को देखकर बस यूं ही मुस्कुरा देना। सच तो ये है कि असली मोहब्बत दिन के उजालों में नहीं होती, बल्कि रातों को जागकर बिताए गए इन्हीं छोटे छोटे इंतजारों और लम्हों में सांस लेती है। ये वो वक्त है जब हम खुद से और अपने अक्स से मिलते हैं।

कहते हैं कि मोहब्बत जब शुरू होती है तो सबसे पहले मन में एक ही सवाल होता है, वो कौन है। पुराने वक्त में किसी का नाम जानने के लिए दोस्तों की खुशामद करनी पड़ती थी, है ना, गलियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। पर आज का वक्त कुछ और ही है। आज हम सीधे सोशल मीडिया के सर्च बार में जाते हैं, हम उनकी पुरानी फोटोज को भी देख लेते हैं, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ खंगालते हैं। दोस्तों, पहले सस्पेंस होता था, एक रहस्य होता था जो धीरे धीरे खुलता था। आज हम मिलने से पहले ही सब कुछ जान लेते हैं। पर जानते हैं, वो जो जानने की बेकरारी पुराने वक्त में थी, वो आज भी रात रात भर जाकर उनकी प्रोफाइल स्क्रॉल करने में दिखती है। शायद आप भी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हो, बातें को सुन रहे हो। प्रोग्राम सुनते सुनते जब गानों में हम खो जाते हैं तो कई बार मन करता है कि उसकी प्रोफाइल ओपन कर ले, उसकी डीपी देख ले। उसकी डीपी को हम जूम करते हैं, उसको करीब लाते हैं, उसको महसूस करते हैं। शायद आप भी इस वक्त यही कर रहे हो। अगर नहीं देखी है डीपी आज, तो खोलिए उसकी डीपी को, देखिए फिर से उस मोहब्बत में डूब जाइए।

दोस्तों वक्त हो गया 10:57 और कुछ सेकंड्स। इस वक्त के साथ ही रजनीगंधा के पहले पड़ाव को यहीं तक, रात 12 बजे तक रहिएगा साथ। न्यूज़ के उस पार फिर से होगी आपसे मुलाकात।

नमस्कार, रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र में एनडीए सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कल से 21 जून तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जन भागीदारी आधारित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। जीरो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट अभियान के अंतर्गत अमरोहा में आज शाम सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा शहर क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 400 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अभियान के अंतर्गत सघन कार्यवाही की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल डब्ल्यू

nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत की शुरुआत हमेशा खामोशी से होती है। पहले वो खामोशी दुपट्टे के कोने को उंगलियों में लपेटने से दिखती थी, है ना? या किसी किताब के बीच दबे गुलाब में। आज वो खामोशी खामोश नहीं है, बस उसका रूप बदल गया है। आज वो खामोशी टाइपिंग स्टेटस में दिखती है। हम मैसेज लिखकर मिटा देते हैं, घंटों सोचते हैं कि एक हार्ट इमोजी भेजें या सिर्फ एक स्माइली भेज दें। वो जो बात कहने का डर और ना कह पाने की कश्मकश होती है ना, वो आज भी वैसी ही है जो पहले थी, बस उसका पता बदल गया है। पहले इशारे आंखों से होते थे, आज वो रिएक्शंस में बदल गए। रजनीगंधा की इस रात में पेश है अगला नगमा, उन तमाम दबी हुई आवाजों के नाम।

जैसे ही कॉल कनेक्ट होता और दूसरी तरफ से वो पहली हेलो सुनाई देती, मानो वक्त वहीं ठहर गया हो, है ना। धड़कनें इतनी तेज होती थी कि डर लगता था कि कहीं सामने वाला फोन पर ही उन धड़कनों को ना सुन ले। और आज का वक्त, आज का दौर जरा डिजिटल है। आज हम आधी रात को रजाई में दुबक कर हेडफोन लगाकर उनके भेजे हुए ऑडियो नोट्स को बार बार सुनते हैं। आवाज वही है, एहसास भी वही, बस जरिया बदल गया है। पहले उस आवाज में एक थरथराहट होती थी जैसे महसूस किया जा सकता था, लेकिन आज, आज मैसेज के उन शब्दों में, उन छोटे छोटे इमोजी और कॉमा फुल स्टॉप में वो नजाकत और वो छुपा हुआ प्यार तलाशा जाता है। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा आरजे प्रीति के साथ, सुनते रहिए। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म पराया धन। आज उनसे पहली मुलाकात होगी।

दोस्तों, वो जो पहली बार बात होती है ना, वो लम्हा किसी करिश्मे से कम नहीं होता, किसी रूहानी मोजिज़े से भी कम नहीं होता। एक अजीब सी बेचैनी होती है, ज़बान लड़खड़ाहट होती है और दिल में हजारों तितलियों का एक साथ उड़ना। याद कीजिए वो पुराना दौर, जब प्यार करने वालों के लिए मंदिर या मस्जिद से ज़्यादा मुकद्दर वो लाल रंग का पीसीओ बॉक्स होता था। लोग लाइनों में खड़े होते थे, मुट्ठी में चंद सिक्के दबे होते थे और उन सिक्कों की खनक के साथ दिल की धड़कनें भी तेज होती जाती थी।

अजीब जादू है ना इस पहली बातचीत का। ये वो जादुई लम्हा होता है जब दो अजनबी महज कुछ शब्दों के जरिए एक दूसरे की रूह में झांकने की कोशिश करते हैं। ये वो पहली लंबी गुफ्तगू है जो रात के 10 बजे एक छोटे से हेलो या एक नर्वस से मैसेज के साथ शुरू होती है, और फिर शुरू होता है यादों, किस्सों और हंसी का एक ऐसा सिलसिला जो वक्त को ही भुला देता है। बातों बातों में कब चांद अपनी चांदनी समेट कर ढलने लगता है, और कब आसमां की स्याही कम होने लगती है, और कब सूरज की पहली नर्म किरण आपकी खिड़की के पर्दों पर दस्तक देने लगती है। इसका रत्ती भर भी एहसास ही नहीं होता, क्योंकि ये वो वक्त होता है जहां लॉजिक खत्म हो जाता है और सिर्फ मैजिक शुरू होता है। वो अपनी नींद की कुर्बानी देना आंखों में जलन है, भारीपन है, पर दिल कह रहा है कि बस 5 मिनट और। क्यों होता है ना ऐसा? वो बैटरी का लाल निशान को देखकर होने वाली बेचैनी कि कहीं फोन स्विच ऑफ ना हो जाए, और ये खूबसूरत सिलसिला यूं ही बीच में टूट ना जाए। चार्जर ढूंढने की वो जद्दोजहद, अब फिर वही मासूम सी तकरार, तुम काटो फोन, नहीं पहले तुम कट करो फोन। न जाने कितने सारे लोग सुन रहे होंगे अभी, और बहुत सारे लिसनर्स अपने आप को हमारी इस बात से जरूर कनेक्ट कर पा रहे होंगे। किसी किसी के साथ शायद इस वक्त ये लम्हा बीत रहा हो, लेकिन कभी ना कभी जिंदगी में बीता जरूर होगा जब फोन नहीं होता होगा, मतलब ये मोबाइल फोन, जब सिर्फ लैंडलाइन होता था, उसके भी वायर बड़े होते थे, खींच के ले आते थे अपने बेड तक, है ना? उसका जो कीपैड होता था नंबर कीज, वो उसको भी लॉक करने का तरीका होता था। पेरेंट्स लॉक कर देते थे, मतलब हमारे बड़े लॉक कर देते थे, उसमें भी जुगाड़ निकाल लेते थे नंबर डायल करने का। एक बार नंबर डायल हो गया, बस एक छोटा सा बटन होता था आर, जिस पे लिखा होता था, जिसका मतलब होता था रीडायल। भले ही फोन को जो कीपैड होता था ना कीज, उसको लॉक कर दिया गया हो, लेकिन एक झरोखा वहां भी होता था। उस झरोखे से किसी एक पिन से उस आर वाले बटन को बस दबा दिया जाता था, और नंबर फिर से कनेक्ट हो जाता था, और फिर से वही बातों का सिलसिला शुरू होता था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मोहब्बत रात भर जो बातों का सिलसिला होता है ना, मोबाइल के टाइम ही है। पहले भी होता था, बस तरीका कुछ और था, और वही पुराना तरीके को आज के दौर में हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां किसी ना किसी दौर में खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें, चाहे हम लैंडलाइन फोन की बात करें, चाहे हम मोबाइल फोन की। सुनते रहिए रजनीगंधा।

दोस्तों, शायद दुनिया की नज़रों में ये बचपना हो, पर मोहब्बत आज भी इन्हीं छोटी छोटी मासूमियतों में सांस लेती हैं। ये जो घंटों की कॉल है ना, ये सिर्फ बातें नहीं होती, ये एक दूसरे को ये बताने का तरीका है कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त है। पुराने दौर में शायद ये बातें छत पर खड़े होकर इशारों में होती थी या दीवारों के आर पार फुसफुसाहटों में। आज ये हेडफोन के वायर में उलझी हुई हैं। जरिया बदला है, पर वो जो पहली बार किसी का होने का एहसास है ना, वो आज भी उतना ही पाक और उतना ही रूहानी है। मोहब्बत चाहे खतों वाली हो या चैट्स वाली, उसे सहेजने का अंदाज हमेशा ही बेहद खास और निजी होता है। याद कीजिए वो दौर जब तकिए के नीचे या स्कूल की भारी किताबों के बीच किसी की लिखी चिट्ठियां रूह की खुशबू बनकर बसी रहती थी। उन पन्नों पर स्याही भले ही धुंधली पड़ जाती थी, पर जज्बात हमेशा ताजा रहते थे। और आज हम अपनी उन हसीन यादों के फोन के गैलरी में एक अलग फोल्डर बनाकर सहेजते हैं। उन तस्वीरों को फेवरेट मार्क करना और उन खास चैट्स को स्टार करना, यह आज के दौर की वो डिजिटल डायरी है जिसका पासवर्ड सिर्फ हमारे दिल को पता होता है। तरीका बदल गया है, पर उस एक शख्स को संभाल कर रखने की चाहत आज भी उतनी ही शिद्दत वाली है। वक्त बदलता है, तकनीक बदलती है, पर किसी की याद को संजो

का सलीका नहीं बदलता। पहले हम सूखे हुए गुलाबों को डायरी के पन्नों में दबा कर रखते थे ताकि सालों बाद भी उन्हें छूने पर उस लम्हे की खुशबू में हम लौट जाएं। आज हम उनकी स्टोरीज को आर्काइव कर लेते हैं या पुराने चैट्स को एक्सपोर्ट करके संभाल लेते हैं। भले ही आज हमने अपनी यादों को डिजिटल लॉक के पीछे छुपा दिया हो, पर जब भी तन्हाई दस्तक देती है हम उसी डिजिटल संदूक को खोल कर बैठ जाते हैं। दिल का वो कोना आज भी वही है जहां सिर्फ एक ही नाम की हुकूमत है। रजनीगंधा में यादों के इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: दोस्तों, अब वक्त की सुइयां इशारा कर रही हैं कि रजनीगंधा की ये महकती महफिल अब रुखसत होने को है। रात के 12 बजने में कुछ ही वक्त बाकी है और इसके साथ ही आज और कल के बीच की वो लकीर भी धुंधली हो जाएगी। जाते जाते बस एक आखिरी ख्याल आपके सिरहाने छोड़ जाना चाहती हूँ। मोहब्बत चाहे खतों के ज़माने की हो या हाई स्पीड इंटरनेट के दौर की, ये कभी पुरानी नहीं होती। पर याद रखिएगा, जरिया कोई भी हो, जज्बात का सच्चा होना ये जरूरी है। अगर आज रात आपकी आंखों में किसी की याद का एक कतरा भी आया है तो समझ लीजिए कि आप बेहद लकी हैं, क्योंकि आज के इस मशीनी दौर में भी आपके पास एक धड़कता हुआ दिल है। तो माय डियर लिसनर्स, रिश्तों को अपडेट करते रहिए जी, पर अपनी सादगी को कभी भी डिलीट मत होने दीजिए। अब मैं आरजे प्रीति आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए, प्यार को बांटते रहिए और अपनी रातों को यादों से रोशन रखिए। शुभ रात्रि, शबक है, गुड नाइट।
1: तो हम चलते हैं। अच्छा।

नमस्कार, रात्रि के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आज प्रथम राष्ट्रीय टेराथॉन चैंपियनशिप 2026 का भव्य उद्घाटन हुआ। आज से 6 जून तक चलने वाली इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय आयोजन में देश के 12 राज्यों से आए सैकड़ों एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल पर्यावरण संरक्षण एवं हरित वाराणसी के संकल्प को साकार करने के लिए नगर निगम वाराणसी ने पूरी तैयारी की है। नगर निगम ने स्थानीय नागरिकों के सहयोग से हमारा शहर हमारा पर्यावरण अभियान के अंतर्गत वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य शहर में हरित आवरण को बढ़ाना, पर्यावरणीय संतुलन को सुदृढ़ करना और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक एवं सहभागी बनाना है। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा और यह सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:12 पर और सूर्यास्त 6:58 पर होगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 और कुछ सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है।